शुभ प्रभात। 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं एफएम शिमला। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की नवीं तिथि, तदनुसार 30 मई सन 2026। इस समय सुबह के 5:58 और 30 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की ये प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है। एफएम शिमला पर आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन।

0: आप सुन रहे हैं एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। 6 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के तरीकों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार सीमा सुरक्षा बल को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपने पर विचार कर रही है। श्री शाह ने कल गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर 2 नई सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद ये बात कही। श्री शाह ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरह से बदलने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने एक चतुर्भुजीय सुरक्षा ग्रिड की स्थापना की घोषणा की है।
2: बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
1: गृह मंत्री ने ड्रोन, रडार, निगरानी टावर, अत्याधुनिक तकनीक और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती से एक मजबूत सुरक्षा तंत्र के निर्माण का विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इसके स्थापना के बाद कोई भी देश की सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकेगा। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग लाइंग 5 दिन की भारत यात्रा पर आज सुबह बिहार के गया पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी होगा। राष्ट्रपति के रूप में यू मिन आंग लाइंग की यह पहली भारत यात्रा होगी। गया में म्यांमा के राष्ट्रपति महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। राष्ट्रपति यू मिन आंग आज शाम नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात करेंगे। म्यांमा के राष्ट्रपति की कल म्यांमा भारत व्यापार मंच में भाग लेने की संभावना है। म्यांमा के राष्ट्रपति सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के उत्साहवर्धक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि कल तिरुवनंतपुरम में सेमीकंडक्टर स्टार्टअप नेत्रा सेमी ने देश का पहला एजआई सिस्टम ऑन चिप नेत्रा A2000 विकसित किया है, जो उन्नत 12 नैनोमीटर नोड तकनीक पर आधारित है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत अनुदान जारी करने और उसके उपयोग के बारे में व्यापक समीक्षा बैठक की। बैठक में समग्र शिक्षा अभियान के तीसरे चरण को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और परिणामोन्मुख बनाने पर विशेष बल दिया गया। श्री प्रधान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस वर्ष से समग्र शिक्षा अभियान, पीएम पोषण, पीएम श्री और अन्य प्रमुख योजनाओं के समन्वय से एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे स्कूली शिक्षा प्रणाली में बेहतर समन्वय और प्रभाव सुनिश्चित होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायालय की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए यह पोर्टल शुरू किया जा रहा है।

है, इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। और खेलों में आईपीएल क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में खेले गए दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। फाइनल में गुजरात टाइटंस का मुकाबला कल अहमदाबाद में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हर क्रिया में भगवान का आभार माने, फिर भगवान आपकी राह आसान कर देंगे। आप सुन रहे हैं FM शिमला 103.7 MHz पर और आनंद ले रहे हैं भक्ति संगीत से सराबोर कार्यक्रम हिमांजलि का। सुनते रहिए।

आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो, प्रभु कृपा सभी पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ भक्ति संगीत के कार्यक्रम हिमांजलि में आज बस इतना ही। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में 6:40 हो गए हैं। FM शिमला पर लीजिए अब सुनिए एक और भक्तिमय प्रस्तुति, मानस गान। गायक स्वर लता मंगेशकर, पंडित जसराज वसाथी, संगीतकार सतीश भाटिया।

रामचरितमानस के प्रारंभिक मंगलाचरण के पश्चात तुलसीदास ने सर्वप्रथम गणपति की वंदना की है। ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश के पश्चात गुरु की वंदना की गई है, जो नर रूप में हरि के प्रतिरूप हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे मानस गान 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। आप सुन रहे हैं एफएम शिमला। एफएम शिमला पर लीजिए सुनिए देश गान।
1: भारत माँ पर जब जब भी संकट आया, ऋषियों मुनियों विद्वानों और वीरों ने एक ही सपना देखा और उसे साकार किया।

0: अभी आप सुन रहे थे देशकान 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप सुन रहे हैं एफएम शिमला। एफएम शिमला पर लीजिए अब खुद को अपडेट कीजिए एफएम न्यूज़ हेडलाइंस के साथ।
1: नमस्कार, एफएम न्यूज़ हेडलाइंस के साथ मैं स्वाति अग्निहोत्री। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार डॉक्टर वाईएस परमार विद्यार्थी ऋण योजना के तहत विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए 20 लाख रुपए तक का ऋण 1% ब्याज दर पर उपलब्ध करवा रही है। मुख्यमंत्री ने शिमला में उनसे मिलने आए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना से लाभान्वित अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र के 21 विद्यार्थियों से बातचीत के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश के 156 से अधिक स्कूलों में CBSE पाठ्यक्रम शुरू किया है। प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण की गणना 16 जून से 15 जुलाई 2026 तक आयोजित की जाएगी। हिमाचल प्रदेश जनगणना कार्य निदेशालय की निदेशक दीपशिखा शर्मा ने शिमला में बताया कि इस बार जनगणना पूरी तरह डिजिटल तकनीक, मोबाइल ऐप और स्व गणना की सुविधा से लैस होगी। उन्होंने कहा कि पहला चरण मकान सूचीकरण व आवास गणना का होगा, जो 16 जून से 15 जुलाई तक चलेगा, जबकि इस बार नागरिकों को स्व गणना की सुविधा भी दी जाएगी। प्रदेश में आज पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के तीसरे व अंतिम चरण के लिए मतदान होगा। मतदान अब से कुछ ही देर में सुबह 7 बजे से शुरू होगा, जो दोपहर बाद 3 बजे तक चलेगा। मतदान के तुरंत बाद पंचायतों के प्रधान, उप प्रधान, सरपंचों के लिए पड़े वोटों की गिनती होगी, जबकि जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए हुए मतदान की गिनती कल 31 मई को होगी। 31 मई को ही प्रदेश के 4 नगर निगमों सोलन, मंडी, पालमपुर और धर्मशाला के लिए

0: हुए चुनाव की मतगणना भी होगी। हिमाचल प्रदेश उद्यमिता विकास केंद्र को केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा पीएम विकास योजना के क्रियान्वयन के लिए प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के रूप में चुना गया है। इस योजना के तहत प्रदेश के कुल 2420 युवाओं को और महिलाओं को कौशल विकास व उद्यमिता से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। न्यूज हेडलाइंस में अभी इतना ही। नमस्कार।
1: सूचना, मनोरंजन, शिक्षा और विविध रंगों से परिपूर्ण पिटारा आकाशवाणी शिमला।

0: मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज और डीटीएच पर आकाशवाणी शिमला एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर एफएम शिमला जन जन की वाणी ये है आकाशवाणी।
1: एक सौ 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं एफएम शिमला। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 7 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के तरीकों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार सीमा सुरक्षा बल को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपने पर विचार कर रही है। श्री शाह ने कल गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर दो नई सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद ये बात कही। श्री शाह ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरह से बदलने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने एक चतुर्भुजीय सुरक्षा ग्रिड की स्थापना की घोषणा की।
1: बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी ही रहे। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान एक सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे।
0: गृहमंत्री ने ड्रोन, रडार, निगरानी टावर, अत्याधुनिक तकनीक और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती से एक मजबूत सुरक्षा तंत्र के निर्माण का विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इसके स्थापना के बाद कोई भी देश की सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकेगा। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग 5 दिन की भारत यात्रा पर आज सुबह बिहार के गया पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। राष्ट्रपति के रूप में यू मिन आंग हलाइंग की ये पहली भारत यात्रा होगी। गया में म्यांमा के राष्ट्रपति महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। वे आज शाम नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। म्यांमा के राष्ट्रपति की कल म्यांमा भारत व्यापार मंच में भाग लेने की संभावना है। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है। उन्होंने बताया कि किसी भी एलपीजी वितरण केंद्र पर आपूर्ति की कमी की कोई सूचना नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा

0: है कि डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के उत्साहवर्धक परिणाम मिल रहे हैं। श्री वैष्णव ने कल कहा कि तिरुवनंतपुरम में सेमीकंडक्टर स्टार्टअप नेत्रा सेमी ने देश का पहला एज एआई सिस्टम ऑन चिप नेत्रा A2000 विकसित किया है, जो उन्नत 12 नैनोमीटर नोड तकनीक पर आधारित है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत अनुदान जारी करने और उसके उपयोग के बारे में व्यापक समीक्षा बैठक की। बैठक में समग्र शिक्षा अभियान के तीसरे चरण को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और परिणामोन्मुख बनाने पर विशेष बल दिया गया। श्री प्रधान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस वर्ष से समग्र शिक्षा अभियान, पीएम पोषण, पीएम श्री और अन्य प्रमुख योजनाओं के समन्वय से एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायालय की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। IPL क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में खेले गए दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। फाइनल में गुजरात टाइटंस का मुकाबला कल अहमदाबाद में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से होगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: एक 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। 7:05 हुए हैं, लीजिए सुनिए चिंतन।

राघवेंद्र श्री रामचंद्र की राज्यसभा इंद्र, यम और वरुण की सभा के समकक्ष थी। उनके राज्य में किसी को आधि व्याधि या किसी प्रकार की भी बाधा थी ही नहीं। तथापि एक दिन श्री लक्ष्मण को प्रभु ने आज्ञा दी कि देखो, बाहर कोई व्यवहारी या प्रार्थी तो उपस्थित नहीं, कोई हो तो उसे बुलाओ, उसकी बात सुनी जाए। एक बार देखकर लक्ष्मण जी लौट आए और कहा, दरवाजे पर कोई भी उपस्थित नहीं है। प्रभु ने कहा, तुम ध्यान से देखो, वहां जो कोई भी हो उसे तत्परतापूर्वक बुला लाओ। इस बार जब लक्ष्मण जी ने देखा तो मनुष्य तो कोई दरवाजे पर था ही नहीं, पर एक श्वान वहां अवश्य खड़ा था जो बार बार दुखित होकर रो रहा था। जब लक्ष्मण जी ने उसे भीतर चलने को कहा तो उसने बताया कि हम लोग अधम योनि में उत्पन्न हुए हैं और राजा साक्षात धर्म का विग्रह होता है, मैं राजदरबार में प्रवेश कैसे करूं। अंत में लक्ष्मण जी ने भगवान से पुनः आज्ञा लेकर उसकी प्रभु के पास पेशी कराई। भगवान ने देखा तो उसके मस्तक में चोट लगी हुई थी। भगवान ने उसे अभयदान देकर पूछा, बताओ तुम्हें क्या कष्ट है, निडर होकर बताओ, मैं तुम्हारा कार्य तत्काल संपन्न कर देता हूं। कुत्ता बोला, नाथ मैंने किसी प्रकार का अपराध नहीं किया, तो भी सर्वार्थ सिद्धि नामक भिक्षु ने मेरे मस्तक पर प्रहार किया, मैं इसी का न्याय पाने श्रीमान के द्वार पर आया हूं। भगवान श्री राम ने उस भिक्षु को बुलाकर पूछा, तुमने किस अपराध के कारण इसके मस्तक पर लाठी का प्रहार कर इसका सिर फाड़ दिया। भिक्षु ने कहा, प्रभु मैं क्षुधातुर होकर भिक्षाटन के लिए जा रहा था और ये श्वान विषम ढंग से मार्ग में आ गया, भूख से व्याकुल होने के कारण मुझे क्रोध आ गया। इस पर भगवान श्री राम ने अपने सभासदों से न्याय व्यवस्थानुसार दंड बताने को कहा। ब्राह्मण अदंडीय होता है, अतः सभासदों ने कुत्ते को ही प्रमाण माना। कुत्ते ने भगवान से कहा कि यदि प्रभु आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मेरी सम्मति चाहते हैं तो मेरी प्रार्थना है कि इस भिक्षु को कालंजर मठ के कुलपति पद पर अभिषिक्त कर दिया जाए। कुत्ते की इच्छा अनुसार भिक्षु को मान दान पूर्वक हाथी पर चढ़ाकर वहां भेज दिया गया। तदनंतर सभासदों ने बड़े आश्चर्यपूर्वक श्वान से पूछा, ये तो तुमने उस भिक्षु को वर ही दे डाला, शाप नहीं,

श्वान बोला, आप लोगों को इसका रहस्य विदित नहीं है। मैं भी पूर्व जन्म में वहीं का कुलपति था। यद्यपि मैं बड़ा सावधान था और बड़ा विनीत, शील संपन्न, देवद्विज की पूजा करने वाला, सभी प्राणियों का हित चिंतक तथा देव द्रव्य का रक्षक था, तथापि कुलपतित्व के दोष से मैं इस दुर्योनि को प्राप्त हुआ। फिर ये भिक्षु तो अत्यंत क्रोधी, असंयमी, नृशंस, मूर्ख तथा अधार्मिक है। ऐसी दशा में वहां का कुलपतित्व इसके लिए वरदान नहीं अपितु घोर अभिशाप है। किसी भी कल्याणकामी व्यक्ति को मठाधिपतित्व को भूलकर भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। मठाधिपत्य 7 पीढ़ियों तक को नरक में डाल देता है। जिसे नरक में गिराना चाहे उसे देव मंदिरों का आधिपत्य दे दें। जो ब्रह्मस्व, देवांश, स्त्रीधन, बालधन अथवा अपने दिए हुए धन का अपहरण करता है, वो सभी इष्ट मित्रों के साथ विनाश को प्राप्त होता है। जो मन से भी इन द्रव्यों पर बुरी दृष्टि रखता है, वो घोर अविचिमान नामक नरक में गिरता है। और फिर जो सक्रिय इनका अपहरण करता है, उसका तो एक से दूसरे नरकों में बराबर पतन ही होता चलता है। अतएव भूल कर भी मनुष्य ऐसा अधिपत्य ना ले। श्वान की बात सुनकर सभी लोग आश्चर्य में डूब गए और वो श्वान जिधर से आया था उधर ही चला गया। फिर काशी आकर प्रायोपवेशन में बैठ गया।

103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं एफएम शिमला। एक खूबसूरत सुबह का आगाज़ एफएम शिमला पर आपकी और हमारी प्यार भरी मुलाकात। आज के इस हसीन और खूबसूरत सफ़र में हम और आप हैं साथ साथ, जहां पर अब हम आपको बताने वाले हैं कौन कौन से वो खास कार्यक्रम हैं जो आज आप सुन पाएंगे हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। खुद को अपडेट कीजिए एफएम न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। सुबह 7:57, 8:30 और 9:57 पर देश और दुनिया में क्या कुछ खास हो रहा है ये जानने के लिए आपको हम लिए चलेंगे आकाशवाणी के दिल्ली स्टूडियो। सुबह 8:00 समाचार प्रभात, 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज, हिंदी में समाचार दिन में 12:00, 1:00, 2:15 और रात 11:00। अंग्रेजी में समाचार दिन में 12:05, 1:05, शाम 7:05 और रात 11:05 पर। 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या और न्यूज एट 9 सुनिए रात 9:00। प्रादेशिक समाचार सुनिए सुबह 9:20, 11:00, दिन में 3:00, शाम 6:00 और 7:45 पर। जानकारी और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम गुड मॉर्निंग शिमला आपके लिए हम लेकर आते हैं हर रोज सुबह 7:15 पर। हिमाचल की हसीन और खूबसूरत वादियों का मीठा सा संगीत हम पहुंचाएंगे आप तक पहाड़ी लोकगीतों के माध्यम से। सुबह 8:32 पर लोक संगीत, पहाड़ी संगीत 11:30 पर, शिखरों के स्वर कार्यक्रम दिन में 2:30 पर। गीतों के अनमोल खजाने से कुछ चुनिंदा फिल्मी गीत हम लेकर आएंगे आपके लिए सुबह 8:45 पर। सुबह 10:00, दिन में 12:10, 3:10, शाम 4:00 और रात्रि 8:30 पर।

0: हिमाचल की हसीन और खूबसूरत वादियों की सैर अगर आप भी करना चाहते हैं तो तैयार रहिएगा 9:30 पर कुदरत के रंग कार्यक्रम में हम और आप चलेंगे एक बहुत ही हसीन और खूबसूरत सफर पर। पुरानी फिल्मी गीत आपके लिए 11:05 पर कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से, 12:20 पर महिलाएं सुनती हैं अपना खास कार्यक्रम महिला सम्मेलन। 1:10 पर म्यूजिक मस्ती कार्यक्रम में और 2 का समय रहेगा सबरंग कार्यक्रम का। पर युवा साथी सुनेंगे अपना युववाणी कार्यक्रम। वहीं हिमाचली बोलियों के कार्यक्रमों का सिलसिला शुरू होता है 4:20 से, जिसमें सबसे पहले आप सुनेंगे चंबियाली कार्यक्रम। 4:50 पर मंडियाली कार्यक्रम, 5:20 पर पंगवाली कार्यक्रम, 6:06 पर कांगड़ी कार्यक्रम और 6:35 पर पेश किया जाएगा महास्वी कार्यक्रम। किसान बागवान कृषि जगत कार्यक्रम सुनते हैं 7:10 पर। शाम की सभा का आगाज होता है एफएम शिमला पर 8 से, जहां पर सबसे पहले आपके लिए हम लेकर आते हैं भूले बिसरे गीत। एक फिल्म से ये कार्यक्रम सुनिएगा 9:15 पर और 9:30 पर दिल की आवाज भी सुन। गजलों की हसीन और खूबसूरत महफिल सजेगी एफएम शिमला पर 10:00 और 10:30 पर आनंद लीजिए सदाबहार फिल्मी नगमों का। जी हाँ, तो ये है वो कुछ खास कार्यक्रम जो आज आप सुन पाएंगे हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर।
1: सुरीला सफर संगीत का साथ हो मनमीत का, घर आंगन में महके जो क्या कहना उस प्रीत।

सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज एफएम शिमला। मस्त चुनो, मस्त सुनो, जानकारी और मनोरंजन के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

आप सुन रहे हैं एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। जी हाँ, वही आपका अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन जहाँ आज की सुबह आपके लिए लेकर आई है बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी और खुशियों भरे पल। देखिए, सुबह का समय है एक नई शुरुआत का। ये वो पल है जब आप अपने दिन को, अपनी सोच को ऊर्जा से रंग सकते हैं। तो मुस्कुराइए और महसूस कीजिए इस प्यारी सी हसीन और खुशनुमा सुबह की ताजगी को, जहां पर हम लेकर आए हैं आपके लिए आपका अपना गुड मॉर्निंग शिमला कार्यक्रम। जी बिल्कुल, यहां आपको मिलेंगे आपके पसंदीदा गाने, बहुत सारी बातें और आपके दिल से जुड़ी हर वो बात जो आपकी सुबह को बना दे और भी खास। आज की ये सुहानी सुबह में मैं हूं आपके साथ, आपकी अपनी रेडियो हम सफर बबीता शर्मा।

देखिए लिसनर्स, हर दिन हमें कुछ ना कुछ खास सबक ज़िंदगी के सिखाता है, किसी न किसी उलझन का रास्ता भी दिखाता है। ज़िंदगी में कितनी भी उलझनें क्यों ना हो, उनसे लड़कर आगे बढ़ने का हौसला भी दे जाता है। ना जाने कितनी ही यादें हर दिन समेटे होता है, और ऐसी यादें जो एक दिन इतिहास कहलाता है। तो इतिहास के पन्ने एक बार फिर पलटने की कोशिश करते हैं हम FM शिमला पर गुड मॉर्निंग शिमला में, और बनाएंगे आपकी सुबह को और भी खास। आप यूं ही बने रहिए हमारे साथ FM शिमला पर, सुनते रहिए और बस यूं ही मुस्कुराते रहिए।

0: हिमाचल प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण हेतु वचनबद्ध है। आइए सुनते हैं माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का संदेश।
1: नमस्कार। विश्व पर्यावरण दिवस हमें प्रकृति के संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास करवाने का महत्वपूर्ण अवसर है। हिमाचल प्रदेश को प्रकृति ने सुंदर पहाड़, साफ पानी और शुद्ध हवा का अनमोल उपहार दिया है। आइए हम सब मिलकर अपने पर्यावरण को स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित बनाने का संकल्प ले, पेड़ लगाएं, पानी बचाएं और प्रकृति की रक्षा में अपना योगदान दे। स्वस्थ पर्यावरण ही आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। आइए प्रकृति से प्रेम करें और हिमाचल को हरियाली और स्वच्छता का आदर्श बनाएं। जय हिंद, जय हिमाचल।
2: हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जनहित में जारी।

एफएम शिमला पर अब बात करते हैं आज के इतिहास के। जी हाँ, आज है 30 मई सन 2026। आपको बताएं, प्रसिद्ध खोजकर्ता क्रिस्टोफर कोलंबस ने 6 जहाज़ों के साथ अपनी तीसरी अमेरिकी यात्रा शुरू की थी आज ही के दिन सन 1498 में। पहली इंडियन पॉलिस 500 रेस दुनिया की सबसे प्रसिद्ध कार रेसों में से एक थी, जिसका पहला आयोजन आज ही के दिन 30 मई को हुआ था सन 1911 में। चांद पर अमेरिका की बड़ी छलांग। जी हाँ, अमेरिकी स्पेसक्राफ्ट सर्वेयर ने चांद की सतह पर सफल लैंडिंग की और यही मिशन आगे चलकर इंसान को चांद तक ले जाने का रास्ता बना। साल 1966 में आज ही के दिन सर्वेयर चांद पर सफलतापूर्वक उतरा था। गोवा बना भारत का राज्य। जी बिल्कुल, सन 1987 में आज ही के दिन गोवा को भारत का 25वां राज्य घोषित किया गया था। उसी दिन से गोवा भारत के नक्शे पर एक नए राज्य के रूप में चमक उठा था।

वहीं 2012 की हम बात करें तो दिग्गज भारतीय शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद ने पांचवी बार विश्व शतरंज चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया आज ही के दिन। एलिस्टर कुक इंग्लैंड के लिए टेस्ट क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बने सन 2015 में।

वेल गुड मॉर्निंग शिमला कार्यक्रम आप सुन रहे हैं एफएम शिमला के साथ, जहां पर अब आपसे बात होगी आज के खास दिन के। आज है 30 मई और 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। बात है साल 1826 की, जब भारत में अंग्रेजों का दौर था और हिंदी भाषा को अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। तभी 30 मई 1826 को कोलकाता से शुरू हुआ हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड। जी हाँ, इस अखबार को शुरू किया पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने और बस यहीं से शुरू हुआ हिंदी पत्रकारिता का सफर। आज पत्रकारिता सिर्फ अखबार तक सीमित नहीं है, अब रेडियो, टीवी और सोशल मीडिया भी इसका हिस्सा बन चुके हैं। तो डियर लिसनर्स, 30 मई सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि हिंदी भाषा अभिव्यक्ति की आज़ादी और सच्चाई की आवाज़ का जश्न भी है।

वेल गुड मॉर्निंग शिमला कार्यक्रम में आज बस इतना ही। एक सौ 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं एफएम शिमला। एफएम शिमला पर चलिए एक बार फिर से आपको बता दें, हमारे आकाशवाणी के एफएम शिमला से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के कुछ मुख्य आकर्षण। जी बिल्कुल, 11:05 पर आप सुन सकते हैं पुरानी फिल्मों से कार्यक्रम। महिलाएं अपना पसंदीदा कार्यक्रम सुनती हैं 12:20 पर महिला सम्मेलन। 1:10 पर लेकर आएंगे आपके लिए म्यूजिक मस्ती कार्यक्रम और 2 बजे सुनना ना भूलिए सबरंग कार्यक्रम। पहाड़ी लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम शिखरों के स्वर दिन में 2:30 पर। युवा साथी सुनेंगे अपना मनपसंद कार्यक्रम युववाणी दिन में 3:30 पर। जी हाँ, ये है कुछ खास कार्यक्रम हमारे दिन की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के।

0: आप सुन रहे हैं एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर और एफएम शिमला पर। आप जानते हैं ये समय रहता है एफएम न्यूज हेडलाइंस का।
1: नमस्कार, एफएम न्यूज हेडलाइंस के साथ मैं स्वाति अग्निहोत्री। प्रदेश में आज पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के तीसरे व अंतिम चरण के लिए मतदान जारी, जो दोपहर बाद 3 बजे तक चलेगा। मतदान के तुरंत बाद पंचायतों के प्रधान, उप प्रधान और सरपंचों के लिए पड़े वोटों की गिनती होगी, जबकि जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए हुए मतदान की गिनती कल 31 मई को होगी। 31 मई को ही प्रदेश के 4 नगर निगमों सोलन, मंडी, पालमपुर और धर्मशाला के लिए हुए चुनावों की मतगणना भी होगी। एशियन कुराश कप सीनियर वर्ग के कांस्य पदक विजेता सौरभ सुमन ने शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की। सौरभ सुमन ने 22 से 25 मई तक उज्बेकिस्तान के नुकूस में आयोजित एशियन कुराश कप प्रतियोगिता में कांस्य पदक हासिल किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी ये उपलब्धि प्रदेश के युवाओं को खेलों और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करेंगी। अकादमिक अनुसंधान और कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय और महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी बिहार के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सतप्रकाश बंसल ने कहा कि इस MOU के तहत दोनों विश्वविद्यालय संयुक्त रूप से कई अकादमिक और शोध गतिविधियों को आगे बढ़ाएंगे। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी के चलते वनों में आग की घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। प्रदेश भर में वनों में आग लगने की अब तक 263 घटनाएं दर्ज की जा चुकी हैं, जिसमें 3,328 हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग केंद्र शिमला के अनुसार आज ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, शिमला और चंबा सहित प्रदेश के 10 जिलों में तेज हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। कल से 4 जून तक मौसम में सुधार होगा और केवल कुछ स्थानों पर ही हल्की बारिश की संभावना दर्ज की गई है।

0: मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज और डीटीएच पर आकाशवाणी शिमला एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर एफएम शिमला जन जन की वाणी ये है आकाशवाणी।
1: एक सौ 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं एफएम शिमला। 8 बजने को हैं। समाचारों के लिए अब आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली स्टूडियोज। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: और लाइट बिल के?
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए तेल कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण सुधार दर्शाए गए हैं। अस्पतालों में प्रसव बढ़कर 90.6% हो गए हैं। म्यांमा के राष्ट्रपति मिन आंग हलाइंग 5 दिवसीय यात्रा पर आज भारत आएंगे। मौसम विभाग ने आज देश के कई राज्यों में तेज बारिश और गरज के साथ तूफान आने का पूर्वानुमान लगाया। हांगकांग में आयोजित 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरे दिन 4 स्वर्ण सहित 7 पदक जीते। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
3: Regarding the efforts of the government to keep the price stable, is Bharat Sarkar ne excise duty kam ki. So these all efforts have been done to keep the price stable. We are working on the strategic reserves also. Oil marketing companies ko work out karne ke liye kaha hai ki LPG ka jo reserve hai, that should be minimum 30 days with them. And they are working on it. And similarly for crude also we are working.
2: संयुक्त सचिव ने कहा कि सरकार रणनीतिक भंडारों के माध्यम से ईंधन सुरक्षा मजबूत करने और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने बताया कि किसी भी एलपीजी वितरण केंद्र पर आपूर्ति की कमी की कोई सूचना नहीं है।
4: सरकार सभी घरों तक एलपीजी सिलेंडर्स की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके साथ सरकार सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न करें। बल्क और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स से अपील है कि वो ऑथराइज प्रोक्योरमेंट चैनल से ही डीजल की खरीद करें।
2: विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास भारतीय नागरिकों को समय पर सहायता प्रदान कर रहे हैं। श्री महाजन ने कहा कि प्रभावित क्षेत्र से भारत के विभिन्न क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त उड़ानें संचालित की जा रही हैं। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने कहा कि कच्चे तेल का टैंकर व्यापारिक पोत निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल चुका है। इसके 3 जून को विशाखापट्टनम पहुंचने की संभावना है। उन्होंने कहा कि इस पोत पर लगभग 2,70,000 मीट्रिक टन

0: कच्चा तेल भारत आ रहा है। श्री शर्मा ने कहा कि क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के छठे चरण के आंकड़े कल जारी कर दिए। इसके अनुसार मातृ और शिशु स्वास्थ्य, पोषण तथा वित्तीय सुरक्षा में भारत ने तीव्र प्रगति की है। सर्वेक्षण के अनुसार संस्थागत प्रसव 88.6% से बढ़कर 90.6% हो गए हैं। सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारत की कुल प्रजनन दर 2 पर बनी हुई है। सर्वेक्षण के अनुसार 12 से 23 महीने के बच्चों के टीकाकरण का आंकड़ा लगातार 96% से अधिक बना हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि ये सुधार मिशन परिवार विकास सहित राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रमों के निरंतर प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। सर्वेक्षण के अनुसार महिलाओं के डिजिटल समावेशन और वित्तीय सशक्तिकरण में निरंतर प्रगति हुई है। इसमें कहा गया है कि इंटरनेट का उपयोग करने वाली महिलाओं की संख्या लगभग दोगुनी होकर 64.3% पर पहुंच गई है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि आयुष्मान भारत और विस्तारित स्वास्थ्य सुरक्षा पहलों ने स्वास्थ्य सेवा में वित्तीय सुरक्षा मजबूत की है। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग 5 दिन की भारत यात्रा पर आज पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। राष्ट्रपति के रूप में यू मिन आंग हलाइंग की ये पहली भारत यात्रा होगी। गया में म्यांमा के राष्ट्रपति महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। वे आज बाद में नई दिल्ली पहुंचेंगे। वे आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। म्यांमा के राष्ट्रपति की कल म्यांमा भारत व्यापार मंच में भाग लेने की संभावना है। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। कल नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच बैठक के दौरान म्यांमा और भारत के बीच आपसी संबंधों से जुड़े सभी पहलुओं पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि भारत म्यांमा के राष्ट्रपति का स्वागत करने के लिए उत्सुक है।
1: म्यांमा के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता इन संबंधों को और मजबूत करने के बारे में चर्चा करेंगे। इस यात्रा का एक व्यापारिक पहलू भी है, जिसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। ये एक आधिकारिक यात्रा है।
0: इस यात्रा के अंतर्गत म्यांमा के राष्ट्रपति व्यापार और उद्योग जगत से संबंधित वार्ताओं और शहर के विभिन्न स्थलों पर भ्रमण के लिए 2 जून को मुंबई भी जाएंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के तरीकों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार सीमा सुरक्षा बल को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपने पर विचार कर रही है। श्री शाह ने कल गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर 2 नई सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरह से बदलने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने एक चतुर्भुजीय सुरक्षा ग्रिड की स्थापना की घोषणा की।
2: बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी ही रहे। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई के 2 सप्ताह में होगी। महाधिवक्ता तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि सरकार युवाओं के लिए चिंतित है और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि आगे

0: ऐसी कोई चूक न हो। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। पंजाब नगर निकाय चुनावों में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने 8 नगर निगमों, 75 नगर परिषदों और 19 नगर पंचायतों के 1977 वार्ड में से 958 वार्ड जीत लिए हैं। कांग्रेस को 397, शिरोमणि अकाली दल SAD को 192 और भाजपा को 172 वार्ड में जीत हासिल हुई है। बहुजन समाज पार्टी को केवल 7 वार्ड मिले। निर्दलीय उम्मीदवारों ने 251 वार्ड जीतकर तीसरा स्थान हासिल किया। गोवा आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। 1987 में इसी दिन गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था और वो भारतीय संघ का 25वां राज्य बना था। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज पणजी स्थित कला अकादमी में आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह में भाग लेंगे।
1: गोवा में आज आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह राज्य की पिछले 4 दशकों की उल्लेखनीय प्रगति और विकास यात्रा को रेखांकित करेगा। 1961 में पुर्तगाली शासन से मुक्ति के बाद गोवा दमन और दीव के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश बना था। इसके बाद 1967 में हुए ऐतिहासिक जनपद संग्रह ने गोवा की अलग पहचान को बनाए रखने का मार्ग प्रशस्त किया। वर्ष 1987 में कोंकणी को राजभाषा का दर्जा मिलने के बाद राज्य गठन का रास्ता साफ हुआ और 30 मई 1987 को गोवा भारत का 25वां राज्य बना। आज के समारोह में कार्टूनिस्ट मारियो मिरांडा पर स्मारक डाक टिकट जारी किया जाएगा। इसके साथ ही एक कॉफी टेबल बुक का लोकार्पण, पुरस्कार वितरण और नागरिक कल्याण से जुड़ी विभिन्न पहलों की शुरुआत भी की जाएगी। इसके बाद उपराष्ट्रपति गोवा स्थित CSIR राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का दौरा करेंगे। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारेक्काल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज बहुत तेज बारिश की आशंका जताई है। विभाग ने हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में ओलावृष्टि की भी आशंका व्यक्त की है। IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस की टीम प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच गई है। न्यू चंडीगढ़ में कल दूसरे क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु के बीच फाइनल कल अहमदाबाद में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। हांगकांग में चल रही एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए अब तक कुल 8 पदक अपने नाम किए। इनमें 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत तालिका में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। कल प्रतियोगिता के दूसरे दिन भारतीय एथलीटों ने 4 स्वर्ण सहित 7 पदक जीते। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो रहा है। 1 महीने तक चलने वाले निर्वाचन आयोग की यह प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
2: धन्यवाद कनक। नीट UG पेपर लीक मामले में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी आज के अनेक अखबारों की पहली सुर्खी है। अमर उजाला ने सर्वोच्च न्यायालय का बयान दिया है, जवाबदेही तय होने तक नहीं रुकेंगे पेपर लीक मामले। देशबंधु और नवभारत टाइम्स ने CBSE की 12वीं की आंसर शीट भी डिजी लॉकर में भेजे जाने की जानकारी दी है। पत्र लिखता है, यहीं से करा सकेंगे रिवैल्यूएशन। शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पास करने की अनिवार्यता से छूट देने का सर्वोच्च न्यायालय का इंकार भी अनेक अखबारों में है। अमर उजाला लिखता है, समय सीमा 1 साल बढ़ी। दैनिक जागरण ने भी इस खबर को प्रकाशित किया है। पत्र ने न्यायालय के हवाले से लिखा है, सरकारी शिक्षकों को सेवा में बने रहने के लिए TET पास करना ही होगा। जनसत्ता ने कर्नाटक में कांग्रेस की बैठक आज होने का समाचार देते हुए लिखा है, DK शिव कुमार को चुना जाएगा नेता। पंजाब केसरी ने सिद्धारमैया की सिद्धि शीर्षक से अपने संपादकीय में लिखा है, कर्नाटक में जितनी शालीनता और शांति के साथ कांग्रेस पार्टी के भीतर नेतृत्व परिवर्तन हुआ है, उसे भारतीय लोकतंत्र की जीवंत ताकत कहा जा सकता है। दैनिक जागरण ने घरेलू उड़ानों में कटौती से हवाई किराया 30% तक बढ़ने का समाचार दिया है। मौसम विभाग की चेतावनी भी कई अखबारों में है।

0: 8%. Myanmar President Min Aung Hlaing to arrive in India this morning on a five-day visit. IMD forecasts heavy rainfall and thunderstorms across several states in the country today. Indian athletes shine at Asian Under-20 Athletics Championships in Hong Kong, clinch 7 medals, including 4 gold on day 2. And in IPL cricket, Gujarat Titans beat Rajasthan Royals by 7 wickets to set up title clash with Royal Challengers Bengaluru. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: एक सौ तीन दशमलव सात मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं एफएम शिमला। एफएम शिमला पर लीजिए अब सुनिए एफएम न्यूज हेडलाइंस।
2: नमस्कार, एफएम न्यूज हेडलाइंस के साथ मैं स्वाति अग्निहोत्री। प्रदेश में आज पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के तीसरे और अंतिम चरण के लिए मतदान जारी, जो दोपहर बाद 3 बजे तक चलेगा। मतदान के तुरंत बाद पंचायतों के प्रधान, उप प्रधान और सरपंचों के लिए पड़े वोटों की गिनती होगी, जबकि जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए हुए मतदानों की गिनती कल होगी। 31 मई को ही प्रदेश के 4 नगर निगमों सोलन, मंडी, पालमपुर और धर्मशाला के लिए हुए चुनावों की मतगणना भी होगी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के विभिन्न यूजी, पीजी और प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षाओं में एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। विश्वविद्यालय की ओर से जारी विस्तृत कार्यक्रम के अनुसार इस वर्ष कुल 37 पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षाओं में 21,328 अभ्यर्थी शामिल होंगे। प्रदेश के सरकारी और निजी स्कूलों में स्कूल प्रबंधन समितियों की कार्यप्रणाली में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी एसएमसी गाइडलाइन 2026 को हिमाचल प्रदेश में बिना किसी बदलाव के लागू करने की तैयारी शुरू हो गई है। नई व्यवस्था में अब प्रत्येक स्कूल में केवल एक ही एसएमसी गठित होगी। इसकी बैठक हर महीने अनिवार्य रहेगी। राजधानी के प्रमुख सरकारी कॉलेजों में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश परीक्षा 1 जून से शुरू होने जा रही है। इस बार भी दाखिले पूरी तरह मेरिट के आधार पर होंगे और पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से संचालित होगी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला आईपीएल के बाद एक बार फिर क्रिकेट के रोमांच से गूंजने को तैयार। 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में भारत और अफगानिस्तान के बीच वनडे सीरीज का पहला मुकाबला खेला जाएगा। इसमें भारतीय टीम के वनडे में युवा चेहरों के डेब्यू करने का मौका मिल सकता है। अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव 2026 के तहत युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने और समाज में सकारात्मक परिवर्तन का संदेश देने के उद्देश्य से बैक टू लाइफ विषय पर फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। शिमला के उपायुक्त अनुपम कश्यप ने बताया कि 8 से 12 जून तक आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्म उत्सव के दौरान ये फिल्म फेस्टिवल महत्वपूर्ण आकर्षण रहेगा। उन्होंने बताया कि युवाओं को नशीले पदार्थों के सेवन, विशेष रूप से चिट्टा जैसे घातक नशे से दूर रखने के लिए कला व सिनेमा के माध्यम से जागरूकता फैलाना अत्यंत आवश्यक है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार आज ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, शिमला और चंबा सहित प्रदेश के 10 जिलों में तेज हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। कल से 4 जून तक मौसम में सुधार होगा और केवल छिटपुट स्थानों पर ही हल्की बारिश की संभावना है। न्यूज़ हेडलाइंस में अभी इतना ही। नमस्कार।

103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं एफएम शिमला। एफएम शिमला पर अब समय है पहाड़ी लोक गीतों के कार्यक्रम लोक संगीत का। जी हाँ, कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं अंकुश भारद्वाज के गाए इस लोक गीत के साथ।

चेतराम कलसी की आवाज में अभी आपने सुना ये लोकगीत, और कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए ज्योत्सना को।

इसी लोकगीत के साथ पहाड़ी लोकगीतों के कार्यक्रम लोक संगीत में आज बस इतना है। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं FM शिमला।

आप सुन रहे हैं एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। एफएम शिमला पर आइए अब आप और हम आनंद लेते हैं फिल्म संगीत का। राजपूत फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज में।

0: जरा कोई मॉडल पूरा ना लगता है।
1: ये लड़की जरा सी दीवानी लगती है, मुझे तो ये गुड़िया जापानी।
2: आशा भोसले और

अमित कुमार की आवाज़ों में अभी आपने सुना लव स्टोरी मूवी का सॉन्ग। आप सुन रहे हैं एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर और आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का। आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में जमीन आसमान फिल्म का ये प्यारा सा गीत।

103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं एफएम शिमला। एफएम शिमला पर चलिए अब आपको बता दें हमारी आकाशवाणी की प्राइमरी चैनल से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के कुछ मुख्य आकर्षण। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 9:31 पर आप सुनेंगे सुरबेला कार्यक्रम। 10 बजे का समय रहेगा रिमझिम का। ग्यारह बजकर 5 मिनट पर सुनिए लोक संगीत और 11:30 पर आनंद लीजिएगा फिल्म संगीत का। 12:20 पर महिलाएं सुनेंगी अपना पसंदीदा कार्यक्रम महिला सम्मेलन। 1:10 पर और 2 बजे किसान बागवान सुनेंगे अपना सुनहरी किरणें कार्यक्रम। दो बजकर 30 मिनट पर लेकर आएंगे हिमगुंजन कार्यक्रम और 2:45 पर फिल्म संगीत। शाम 7:10 पर किसान बागवान सुनेंगे कृषि जगत कार्यक्रम। 7:56 पर सुनिएगा रोजगार समाचार। 8:00 का आगाज होगा 8 बजे से, जहां पर सबसे पहले आपके लिए लेकर आएंगे धारावाहिक गीत। 8:15 पर फिल्म संगीत और 8:30 पर लुत्फ लीजिए सुगम संगीत का। हिम दर्शन कार्यक्रम आप सुन पाएंगे 9:15 पर। पर पेश किया जाएगा राष्ट्रीय युवा पत्रिका कार्यक्रम, जिसे प्रसारित किया जाएगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

रात 10 बजे आप सुन सकते हैं संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम, प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। जी हाँ डियर लिसनर्स, ये है हमारे आकाशवाणी के प्राइमरी चैनल से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के कुछ मुख्य आकर्षण। आप सुन रहे हैं एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। आप सुन रहे हैं एफएम शिमला। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्स और एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। अब आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों पर भी प्रसारित किया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार प्रसार भारती की रेडियो डीटीएस सेवा और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध है।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप हेमंत शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के तीसरे व अंतिम चरण के चुनावों के लिए 1189 पंचायतों में मतदान जारी। जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्यों तथा 4 नगर निगमों के लिए मतगणना की तैयारियां पूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 31 मई को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों के साथ साझा करेंगे विचार। और केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के ज्ञान भारतम मिशन के अंतर्गत ऊना जिले में पांडुलिपियों के दस्तावेजीकरण को दी जा रही गति। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में आज तीसरे व अंतिम चरण के लिए मतदान जारी है। मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ, जो दोपहर 3 बजे तक चलेगा। मतदान के तुरंत बाद पंचायतों में प्रधान, उप प्रधान और सरपंचों के लिए पड़े वोटों की गिनती होगी, जबकि जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए हुए मतदान की गिनती कल 31 मई को होगी। इसी दिन प्रदेश के 4 नगर निगमों सोलन, मंडी, पालमपुर और धर्मशाला के लिए हुए चुनाव की मतगणना भी की जाएगी। आज प्रदेश की 1187 पंचायतों में वोट डाले जा रहे हैं। इस चरण में करीब 16 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। मतदान को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न करवाने के लिए प्रशासन और पुलिस द्वारा सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं।
1: ये आज हमारा 7 बजे से प्रातः से तीसरे चरण का मतदान जो है वो शुरू हो गया है। आज टोटल हमारी 1199 पंचायतें जो है पूर्ण हो रहा है, और इस पूर्ण को कंडक्ट करने के लिए हमारी 6615 पोलिंग पार्टीज गई हैं। और इस चरण में हमारे 15,40,324 मतदाता जो है वो अपने पंचायती राज संस्थाओं के पदाधिकारियों को चुनेंगे। इससे पूर्व जो हमारे फर्स्ट और सेकंड फेज में निर्वाचन हुए थे, तो पहले चरण में हमारे 1293 पंचायतों में चुनाव हुआ था, और उसके बाद सेकंड फेज में हमारी 1276 पंचायतों में चुनाव हुआ। थर्ड फेज में आज लोगों में काफी उत्साह है, तो उम्मीद है कि आज 2021 में हमारा 78% रहा था। दो चरणों में शांतिप्रिय चुनाव हुए हैं, और तीन चरण में हमें पूरी आशा है कि हिमाचल प्रदेश वैसे भी शांतिप्रिय स्टेट है, और चुनाव जो है वो यहाँ पे पूरी उम्मीद है कि शांतिप्रिय ही रहेगा। पंचायतों के नतीजे हैं वो शाम तक आ जाएंगे।
0: इस बीच शिमला के रामपुर में नैन पंचायत के वार्ड नंबर 1 में नोटा स्टाम्प के साथ स्वास्तिक चिन्ह स्टाम्प इस्तेमाल होने से चुनाव स्थगित हुआ था। इस पंचायत में भी आज ही मतदान संपन्न करवाया जा रहा है। सिरमौर जिला में 89 पंचायतों में मतदान जारी है। मतदान सुबह ठीक 7 बजे शुरू हुआ, जो सायं 3 बजे तक चलेगा। जिले में 515 बूथों पर वोट डाले जा रहे हैं। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे सिरमौर जिला संवाददाता।
2: पंचायती राज चुनाव के अंतिम चरण में सिरमौर जिला में आज 89 पंचायतों में मतदान किया जा रहा है। सुबह ठीक 7 बजे ये मतदान प्रक्रिया शुरू हुई है, जो दोपहर बाद 3 बजे तक चलेगी। सिरमौर जिला में 515 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां तमाम पुख्ता इंतजाम प्रशासन द्वारा किए गए हैं, ताकि यहां निष्पक्ष तरीके से चुनाव संपन्न करवाया जा सके। मतदान को लेकर मैदानी इलाकों में बढ़ती गर्मी को देखते हुए लोग सुबह के समय मतदान के लिए अधिक संख्या में आगे आ रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए सिरमौर से सतीश शर्मा।
0: इधर सोलन जिला में आज तीसरे व अंतिम चरण के लिए जिला की 82 ग्राम पंचायतों में मतदान जारी है। जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने बताया कि इन ग्राम पंचायतों में कुल 1,08,156 मतदाता हैं। इनमें 55,123 पुरुष तथा 53,033 महिला मतदाता हैं। निर्वाचन के लिए कुल 490 मतदान केंद्र स्थापित किए।

0: गए हैं। जनजातीय जिला किन्नौर में तीनों विकासखंडों की 26 पंचायतों में मतदान जारी है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारी किन्नौर जिला संवाददाता।
1: जिले के तीनों विकास खंडों की 26 पंचायतों में मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। मतदान शुरू होते ही विभिन्न मतदान केंद्रों पर लोगों की लंबी कतारें देखने को मिली। महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों में मतदान को लेकर विशेष उत्साह देखा जा रहा है। कल्पा विकास खंड की रोगी, तेलिंगी, शुदारंग, रुबनी, मेबर, चांसू, थेमघारंग और बड़सेरी पंचायतों में मतदान जारी है। वहीं पूर्व विकास खंड की चांगो, लियो, डुबलिंग, नेसंग, सुन्नम, ठंगी, आसरंग, रारंग और चारंग पंचायतों में भी मतदाता अपने प्रतिनिधियों का चयन कर रहे हैं। इसके अलावा निचार विकास खंड की चौरा, तरांडा, बरी, यांगपाटू, शांगो, उर्नी, पूनंग, पानवी और पौंडा पंचायतों में भी मतदान शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। आकाशवाणी के लिए किन्नौर से मैं सुमेश नेगी।
0: उधर कुल्लू जिला के 76 ग्राम पंचायतों में मतदान के लिए 426 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जिले में 99,607 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्ण व निष्पक्ष ढंग से संपन्न करवाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा व्यापक प्रबंध किए गए हैं। चंबा जिला में भी आज 86 ग्राम पंचायतों में मतदान प्रक्रिया जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस चरण के लिए विकासखंड चंबा की 15, तीसा की 17, महला की 17, सलूणी की 14 और भटियात की 23 पंचायतों में वोट डाले जा रहे हैं। चंबा के उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने मतदाताओं से लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़ कर भाग लेने का आह्वान किया है।
2: जो हमारा तीसरा फेज है उसमें जिले के 5 ब्लॉक्स पांगी और भरमौर को छोड़ के बाकी सब जगहों पे 86 ग्राम पंचायत हैं जो तीसरे चरण में कवर की जाएंगी। मैं पुनः जिला चंबा के सभी मतदाताओं से निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार उत्साहपूर्वक आपने पहले और दूसरे चरण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करी है, उसी प्रकार से अपना सहयोग हमें दें और अपने मत का प्रयोग करके चुनाव को फ्री एंड फेयर और सक्सेसफुल बनाने में हमारी मदद करें। तो ये सुनिश्चित करें कि हमारे प्रधान, उप प्रधान, वार्ड मेंबर, BDC मेंबर, जिला परिषद मेंबर ऐसे लोग हों जो आपके मुद्दों को, आपके इश्यूज को और जिला के और पंचायत के विकास को अपनी प्राथमिकता बना के कार्य करें।
0: ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्सहैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR Shimla News को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश के जिला परिषद, पंचायत समिति सदस्यों तथा नगर निगमों के लिए मतों की गणना कल 31 मई को की जाएगी। प्रदेश के 91 विकास खंडों में ये मतगणना सुबह 9 बजे शुरू होगी। जिला परिषद वार्डों की मतगणना के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। प्रत्येक जिला परिषद वार्ड में मतगणना के लिए 15 से 20 टेबल लगाए जाएंगे, जबकि एक वार्ड की मतगणना में करीब 35 कर्मचारी और अधिकारी तैनात होंगे। प्रदेश के 4 नगर निगमों सोलन, मंडी, धर्मशाला और पालमपुर के चुनावों की मतगणना भी कल ही की जाएगी। कुल्लू जिला के बंजार जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्यों की मतगणना प्रक्रिया में इस वर्ष पहली बार महिला अधिकारियों व कर्मचारियों को स्वतंत्र रूप से मतगणना कार्य के लिए नियुक्त किया गया है। महिला सशक्तिकरण व प्रशासनिक कार्यों में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करने की दिशा में ये महत्वपूर्ण पहल है। मतगणना कार्य को त्रुटि रहित व सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न करवाने के उद्देश्य से इन महिला अधिकारियों व कर्मचारियों का पृथक रूप से विशेष पूर्वाभ्यास भी करवाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी 31 मई को सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR News, DD News, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। आकाशवाणी के द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण किया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के ज्ञान भारतम मिशन के अंतर्गत ज्ञान भारतम राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण के माध्यम से देश की प्राचीन, दुर्लभ और हस्तलिखित पांडुलिपियों को सहेजने, उनका दस्तावेजीकरण करने और उन्हें डिजिटल रूप से संरक्षित किया जा रहा है। विभिन्न परिवारों, मंदिरों, मठों, शैक्षणिक संस्थानों और संग्रहालयों में शताब्दियों से रखी पांडुलिपियों को आधुनिक तकनीक से ज्ञान भारतम मोबाइल ऐप द्वारा आम नागरिक, मंदिर या निजी संग्रहकर्ता अपनी पांडुलिपियों की जानकारी और तस्वीरें अपलोड कर सकते हैं। प्रदेश के ऊना जिले में भी इस सर्वेक्षण को गति दी जा रही है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे ऊना जिला संवाददाता।
3: केंद्र सरकार का ज्ञान भारतम राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण

0: जिला में प्रदेश कला भाषा एवं संस्कृति विभाग द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। सर्वेक्षण में 75 वर्ष से या उससे अधिक पुरानी पांडुलिपियां जो ताड़पत्र भोजपत्र कपड़ा अथवा कागज पर लिखित हों उनको सूचीबद्ध करना और भावी पीढ़ियों के लिए संरक्षित करने हेतु विशेष प्राथमिकता दी जा रही। आम नागरिकों धार्मिक एवं शैक्षणिक संस्थाओं के संचालकों को ज्ञान भारतम मोबाइल ऐप द्वारा दुर्लभ पांडुलिपियों के चित्रों को अपलोड करने हेतु प्रेरित किया जा रहा है ताकि न केवल आने वाली पीढ़ियां इनसे ज्ञान अर्जित कर सके बल्कि हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत संबंधी ज्ञान में इजाफा हो सके। आकाशवाणी के लिए ऊना से राजेश शर्मा।
1: अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज अधिकांश समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अमर उजाला व पंजाब केसरी की एक जैसी सुर्खी है, अंतिम चरण का मतदान आज, 1189 पंचायतों में 17 लाख वोटर चुनेंगे प्रतिनिधि। जबकि दैनिक जागरण का शीर्षक है, 1189 पंचायतों में मतदान आज, आयोग का निर्देश, लापरवाही पर होगी कार्रवाई। हिमाचल दस्तक की सुर्खी है, आचार संहिता खत्म होने के बाद 6 जून को होगी कैबिनेट बैठक। पंजाब केसरी लिखता है, सुक्खू ने 6 जून को बुलाई मंत्रिमंडल बैठक। दैनिक जागरण का कहना है, चतुर्थ श्रेणी पेंशनरों को मिलेगा एरियर। अमर उजाला की एक अन्य सुर्खी है।

0: लाख वोटर चुनेंगे प्रतिनिधि, जबकि दैनिक जागरण का शीर्षक है 1189 पंचायतों में मतदान आज, आयोग का निर्देश, लापरवाही पर होगी कार्रवाई। हिमाचल दस्तक की सुर्खी है, आचार संहिता खत्म होने के बाद 6 जून को होगी कैबिनेट बैठक। पंजाब केसरी लिखता है, सुक्खू ने 6 जून को बुलाई मंत्रिमंडल बैठक। दैनिक जागरण का कहना है, चतुर्थ श्रेणी पेंशनरों को मिलेगा एरियर। अमर उजाला की एक अन्य सुर्खी है, चेस्टर हिल्स मामले में हाईकोर्ट सख्त, राज्य और केंद्र से जवाब तलब। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के तीसरे व अंतिम चरण के चुनावों के लिए 1189 पंचायतों में मतदान जारी। जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्यों तथा 4 नगर निगमों की मतगणना के लिए तैयारियां पूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 31 मई को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों से साझा करेंगे विचार। और केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के ज्ञान भारत मिशन के अंतर्गत ऊना जिला में पांडुलिपियों के दस्तावेजीकरण को दी जा रही गति। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।
1: प्रादेशिक समाचार अभी आपने सुने, इसे FM शिमला 103.7 MHz के साथ साथ आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों पर भी प्रसारित किया गया। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।
2: आप सुन रहे हैं FM शिमला 103.7 MHz पर।

103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं एफएम शिमला। एफएम शिमला पर हम लेकर हाजिर हैं आपके लिए आपका अपना जाना पहचाना कार्यक्रम, नाम है जिसका कुदरत के रंग। जी बिल्कुल, आज इस कार्यक्रम में हम आपको लिए चलेंगे हिमाचल की उन हसीन और खूबसूरत वादियों में जहां हवाओं में संगीत है, फूलों में रंग है, आसमान की नीलिमा हो या धरती की हरियाली, पहाड़ों की ऊंचाइयां हो या फिर नदियों की गहराइयां, यहां प्रकृति अपनी हर छटा में अद्भुत है। कैसे? जी हाँ, कभी नाचती हवा के साथ, कभी मुस्कुराते फूलों के साथ, तो कभी बादलों की बरसात के साथ। तो चलिए तैयार हो जाइए आंखों को सुकून देने वाले दृश्यों के लिए और उस एहसास के लिए जो आपको फिर से प्रकृति के करीब ले आएगा। तो स्वागत है आपका इस कुदरत के रंग में जहां प्रकृति बोलती है और हम सुनते हैं।

आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम कुदरत के रंग, और आज इस कार्यक्रम में हम निकल पड़े हैं हिमाचल प्रदेश की उन वादियों में जहां बादल पहाड़ों को गले लगाते हैं, जहां नदियां गुनगुनाती हैं और जहां हर मोड़ पर प्रकृति अपना नया जादू दिखाती है। जी हां, आज का हमारा डेस्टिनेशन है बहुत ही खूबसूरत चंबा। देखिए लिसनर्स, अगर आप चंबा आए और आपने खजियार नहीं देखा तो मानो आपने हिमाचल की खूबसूरती अधूरी देखी। हरे भरे मैदान, ऊंचे देवदार के पेड़ और बीच में शांत झील, ऐसा लगता है जैसे धरती ने हरी मखमली चादर ओढ़ ली हो। आपको बताएं कि इसे मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। यहाँ आप घुड़सवारी कर सकते हैं, पैराग्लाइडिंग का मजा ले सकते हैं या फिर बस घास पर बैठकर ठंडी हवा को महसूस कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं चंबा के दिल में बसे बेहद प्राचीन और पवित्र लक्ष्मी नारायण टेम्पल की ओर। करीब 10वीं शताब्दी में बना ये मंदिर सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं बल्कि अद्भुत वास्तुकला का शानदार नमूना भी कहा जाता है। पत्थरों पर की गई नक्काशी, मंदिर की शांति और पहाड़ों के बीच गूंजती घंटियों की आवाज़ मन को सुकून से भर देती है। तो और भी बहुत सारी खूबसूरत जगह हैं चंबा में घूमने के लिए, आपको हम बताएंगे इसी कार्यक्रम में। आप यूं ही बने रहिए हमारे साथ FM शिमला पर, सुनते रहिए और बस यूं ही मुस्कुराते रहिए।

0: हिमाचल प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण हेतु वचनबद्ध है। आइए सुनते हैं माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का संदेश।
1: नमस्कार। विश्व पर्यावरण दिवस हमें प्रकृति के संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास करवाने का महत्वपूर्ण अवसर है। हिमाचल प्रदेश को प्रकृति ने सुंदर पहाड़, साफ पानी और शुद्ध हवा का अनमोल उपहार दिया है। आइए हम सब मिलकर अपने पर्यावरण को स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित बनाने का संकल्प लें। पेड़ लगाएं, पानी बचाएं और प्रकृति की रक्षा में अपना योगदान दे। स्वस्थ पर्यावरण ही आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। आइए प्रकृति से प्रेम करें और हिमाचल को हरियाली और स्वच्छता का आदर्श बनाएं। जय हिंद, जय हिमाचल।
2: हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जनहित में जारी।

आप सुन रहे हैं एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर और आनंद ले रहे हैं कुदरत की रंग कार्यक्रम का, जहां आज हम सैर कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश की हसीन और खूबसूरत वादियों में बसे चंबा की। और बात हो रही है चंबा के प्रमुख पर्यटन स्थलों की, तो चलिए अब तैयार हो जाइए नीले पानी की दुनिया में खो जाने के लिए। जी बिल्कुल, हम पहुंच चुके हैं खूबसूरत चमेरा झील पर। चमेरा झील डलहौजी के पास चंबा जिले में सबसे खूबसूरत और प्राकृतिक झील है। चमेरा झील डलहौजी से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो कि अपने आकर्षण से पर्यटकों को बेहद आकर्षित करती है। आपको हम बताएं कि चमेरा बांध द्वारा निर्मित एक जलाशय है और 1700 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है। हिमाचल प्रदेश का ये लोकप्रिय पर्यटन स्थल यहाँ की यात्रा करने वाले सभी पर्यटकों को बेहद पसंद आता है। यहाँ की खूबसूरती की बात हम करें तो चारों तरफ पहाड़, बीच में चमकता पानी और शांत वातावरण। यहाँ बोटिंग का मजा ही कुछ अलग है, सुबह का समय हो या फिर शाम का। चमेरा झील हर वक्त किसी पोस्टकार्ड जैसी खूबसूरत लगती है। आप चंबा आए और डलहौजी न जाए, भाई ऐसा कैसे हो सकता है। ब्रिटिश दौर की खूबसूरत इमारतें, ठंडी हवा और बादलों से बातें करती सड़कें, डलहौजी हर ट्रैवलर का सपना रहता है। यहाँ का गांधी चौक, माल रोड और पंचपुला लोगों को बेहद पसंद आता है। तो अगर आप भी सुकून ढूंढ रहे हैं ना, तो डलहौजी आपको दिल से प्यार करवा देगा इस खूबसूरत जगह से। और अब बात करते हैं एडवेंचर और नेचर लवर्स की फेवरेट जगह कालाटोप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। घने जंगल, ठंडी हवा और पक्षियों की मीठी आवाज़ें, अगर किस्मत अच्छी हुई तो हिरन और हिमालयी जानवर भी आप देख सकते हैं। ट्रैकिंग पसंद करने वालों के लिए ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं है। जी बिल्कुल, हमने बात की कालाटोप वन्य जीव अभ्यारण्य की। अब बात कर लेते हैं चामुंडा देवी मंदिर की। चामुंडा देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश राज्य के चंबा जिले में स्थित एक प्राचीन मंदिर और एक बहुत ही प्रमुख आकर्षण स्थल है। चामुंडा देवी मंदिर का निर्माण वर्ष 1762 में उमेर सिंह ने करवाया था और 300 साल पुराना ये चंबा का एकमात्र लकड़ी का मंदिर है। चंबा में घूमने के दौरान इस मंदिर को भी आप अपनी लिस्ट में ज़रूर शामिल करें। और आपको बताएं कि सुबह 6 बजे से रात के 12 बजे तक आप इस मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। बात करते हैं अखंड चंडी पैलेस की। देखिए दोस्तों, 18वीं शताब्दी के मध्य में निर्मित चंबा पैलेस से अखंड चंडी पैलेस चंबा में स्थित सफ़ेद रंग की एक बहुत ही खूबसूरत इमारत है। और इस शाही महल को मूल रूप से एक आवासीय भवन के रूप में राजा उमेर सिंह के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। ये खूबसूरत महल पूरे शहर और कई पर्यटन स्थलों जैसे चामुंडा देवी मंदिर, रंग महल के मनोरम दृश्य को भी पेश करता है।

और देखिए ना, घूमने के साथ साथ अगर खाने की बात ना हो तो सफ़र कुछ अधूरा सा लगता है ना। जब आप चंबा आएँ तो यहाँ का पारंपरिक हिमाचली धाम ज़रूर ट्राई करें। राजमा, मदरा चना और देसी स्वाद, उफ, दिल खुश हो जाता है। देखिए लिसनर्स, चंबा सिर्फ खूबसूरत जगह के लिए ही नहीं बल्कि अपनी संस्कृति और मेलों के लिए भी मशहूर है। यहाँ का प्रसिद्ध मिंजर फेयर दूर दूर से लोगों को आकर्षित करता है। रंग बिरंगे कपड़े, लोक नृत्य, हिमाचली संगीत और लोगों की मुस्कान, यही तो है असली हिमाचल। तो डियर लिसनर्स, ये था हमारा खूबसूरत सफ़र आज का चंबा की हसीन और खूबसूरत वादियों में। तो अगर आप भी शहर की भागदौड़ से दूर सुकून, प्रकृति और प्यार भरे पल तलाश रहे हैं तो एक बार आप चंबा ज़रूर आइए और चंबा आकर यहाँ की जो खूबसूरती है उसको करीब से निहारिए। और बस यूं ही हमारे साथ बने रहिए, FM शिमला के साथ सुनते रहिए और बस यूं ही मुस्कुराते रहिए।

0: rock and roll to the beat of the dough. Come on, shake your body, rock and roll. Rock and roll to the beat of the dough.
1: वेल कुदरत के रंग कार्यक्रम में आज बस इतना ही। और आज हमने इस कार्यक्रम में आपके साथ सैर की हिमाचल प्रदेश की हसीन और खूबसूरत वादियों में बसे चंबा के। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं एफएम शिमला। और अब एफएम शिमला पर समय है एफएम न्यूज़ हेडलाइंस का।
2: नमस्कार, एफएम न्यूज़ हेडलाइंस के साथ मैं स्वाति अग्निहोत्री। प्रदेश में आज तीसरे और अंतिम चरण के लिए मतदान जारी है। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हुआ जो दोपहर बाद 3 बजे तक चलेगा। आज प्रदेश की 1189 पंचायतों में वोट डाले जा रहे हैं। इस चरण में करीब 16 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। मतदान को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से सम्पन्न करवाने के लिए प्रशासन और पुलिस द्वारा सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। शिमला के रामपुर में नैन पंचायत के वार्ड 1 में नोटा स्टाम्प के साथ वास्तविक चिन्ह स्टाम्प इस्तेमाल होने से चुनाव स्थगित हुआ था। इस पंचायत में भी आज ही मतदान संपन्न करवाया जा रहा है। सिरमौर जिला में 89 पंचायतों में मतदान जारी है। मतदान सुबह ठीक 7 बजे शुरू हुआ जो 3:30 बजे तक चलेगा, जिसे जिले में 515 बूथ पर वोट डाले जा रहे हैं। जनजातीय जिला किन्नौर में तीनों विकास खंडों की 26 पंचायतों में मतदान आज सुबह से जारी है। कुल्लू जिला में 76 ग्राम पंचायतों में मतदान के लिए 426 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जिलों में 99,607 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। चंबा जिला में भी आज 86 ग्राम पंचायतों में मतदान प्रक्रिया जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस चरण के लिए विकासखंड चंबा की 15, तीसा की 17, महिला की 17, सलूनी की 14 और भटियात की 23 पंचायतों में वोट डाले जा रहे हैं। चंबा के उपायुक्त मुकेश रिपसवाल ने मतदाताओं से लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़ कर भाग लेने का आह्वान किया है। प्रदेश की जिला परिषद, पंचायत समिति सदस्यों तथा नगर निगमों में मतदानों की गणना के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रदेश के 91 विकास खंडों में कल 31 मई को सुबह 9 बजे से मतगणना शुरू होगी। कुल्लू जिला के बंजार उपमंडल जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्यों की मतगणना प्रक्रिया में इस वर्ष पहली बार महिला अधिकारियों व कर्मचारियों को स्वतंत्र रूप से मतगणना कार्य हेतु नियुक्त किया गया है। महिला सशक्तिकरण व प्रशासनिक कार्यों में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण पहल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी 31 मई को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज़, DD न्यूज़, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना व प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होगा। आकाशवाणी के द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण किया जाएगा। राजधानी के प्रमुख सरकारी कॉलेजों में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रक्रिया 1 जून से शुरू होने जा रही है। इस बार भी दाखिले पूरी तरह से

0: के आधार पर होंगे और पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से संचालित की जाएगी। न्यूज हेडलाइंस में अभी बस इतना ही। नमस्कार।
1: सुरीला सफर संगीत का साथ हो मनमीत का, घर आंगन में महके जो क्या कहना उस प्रीत का।

सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज एफएम शिमला। मस्त चुनो, मस्त सुनो, जानकारी और मनोरंजन के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। आज के इस हसीन और खुशनुमा सफ़र में हम और आप हैं साथ साथ, जहां पर अब हम लेकर आ गए हैं आपके लिए फिल्म संगीत। जी बिल्कुल, एक से बढ़कर एक कुछ खूबसूरत फिल्मी तराने हम आपके लिए लेकर आए हैं। आप यूं ही बने रहिए हमारे साथ FM शिमला पर, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

बप्पी लहरी और आशा भोसले की आवाज़ों में अभी आपने सुना प्रेम प्रतिज्ञा फिल्म का गीत। आपके साथ इस फिल्म का गीत आपकी नज़र कर रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में।

0: हिमाचल प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण हेतु वचनबद्ध है। आइए सुनते हैं माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का संदेश।
1: नमस्कार। विश्व पर्यावरण दिवस हमें प्रकृति के संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास करवाने का महत्वपूर्ण अवसर है। हिमाचल प्रदेश को प्रकृति ने सुंदर पहाड़, साफ पानी और शुद्ध हवा का अनमोल उपहार दिया है। आइए हम सब मिलकर अपने पर्यावरण को स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित बनाने का संकल्प लें। पेड़ लगाएं, पानी बचाएं और प्रकृति की रक्षा में अपना योगदान दें। स्वस्थ पर्यावरण ही आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। आइए प्रकृति से प्रेम करें और हिमाचल को हरियाली और स्वच्छता का आदर्श बनाएं। जय हिंद, जय हिमाचल।
2: हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जनहित में जारी।

सोनी माहिवाल फिल्म का गीत अभी आपने सुना आशा भोसले और शबीर कुमार की आवाज़ों में। आप सुन रहे हैं एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर और आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का। आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में स्वीकार किया मैंने फिल्म का ये प्यारा सा गीत।

मनहर उदास और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में आपको सुनवा रहे हैं अमृत फिल्म का ये गीत।

अनुराधा पौडवाल और नितिन मुकेश के गाए जीना तेरी गली में फिल्म के इसी गीत के साथ फिल्म संगीत में आज बस इतना ही। आप अपनी रेडियो हमसफर बबीता शर्मा को दीजिए इजाज़त इसी उम्मीद के साथ बहुत जल्द होगी आपसे मुलाकात। आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बस यूं ही सुनते रहिए FM शिमला।

हम आकाशवाणी शिमला से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ एफएम शिमला पर भी रिले किया जाएगा।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप हेमंत शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश में आज तीसरे और अंतिम चरण के लिए मतदान जारी है। मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ, जो दोपहर 3 बजे तक चलेगा। मतदान के तुरंत बाद प्रधान उपप्रधान

0: तथा वार्ड सदस्यों के लिए पड़े वोटों की गिनती होगी। जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए हुए मतदान की गिनती कल 31 मई को होगी। इसी दिन प्रदेश के 4 नगर निगमों सोलन, मंडी, पालमपुर और धर्मशाला के लिए हुए चुनावों की मतगणना भी की जाएगी। आज प्रदेश की 1189 पंचायतों में वोट डाले जा रहे हैं। इस चरण में करीब 16 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। मतदान को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न करवाने के लिए प्रशासन और पुलिस द्वारा सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। शिमला के रामपुर में नैन पंचायत के वार्ड 1 में स्थगित हुए चुनाव के लिए भी आज ही वोट डाले जा रहे हैं। निर्वाचन अधिकारी संजीव महाजन ने बताया कि चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी, स्वतंत्र व निष्पक्ष ढंग से जारी है।
1: देखिए, आज हमारा 7 बजे से प्रातः से तीसरे चरण का मतदान जो है वो शुरू हो गया है। आज टोटल हमारी 1199 पंचायतें जो है पूर्ण हो रहा है और पूर्व कंडक्ट करने के लिए हमारी 6615 पोलिंग पार्टीज गई हैं और इस चरण में हमारे 15,40,324 मतदाता जो है वो अपने पंचायती राज संस्थाओं के पदाधिकारियों को चुनेंगे। इससे पूर्व जो हमारे फर्स्ट और सेकंड फेज में निर्वाचन हुए थे तो पहले चरण में हमारे 1293 पंचायतों में चुनाव हुआ था और उसके बाद सेकंड फेज में हमारी 1276 पंचायतों में चुनाव हुआ। थर्ड फेज में आज लोगों में काफी उत्साह है तो उम्मीद है कि आज 2021 में हमारा 78% रहा था। दो चरणों में शांतिप्रिय चुनाव हुए हैं और चरण में हमें पूरी आशा की हिमाचल प्रदेश वैसे भी शांतिप्रिय स्टेट है और चुनाव जो है वो यहाँ पे पूरी उम्मीद है कि शांतिप्रिय ही रहेगा। पंचायतों के नतीजे हैं वो शाम तक आ जाएंगे।
0: सिरमौर जिला में 89 पंचायतों में मतदान जारी है। मतदान सुबह ठीक 7 बजे शुरू हुआ जो सायं 3 बजे तक चलेगा। जिले में 515 बूथों में वोट डाले जा रहे हैं। जिले की ग्राम पंचायत खड़ाहन में 101 वर्षीय पदमदास ने वोट डाला। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे सिरमौर जिला संवाददाता।
2: पंचायती राज चुनाव के अंतिम चरण में सिरमौर जिला में आज 89 पंचायतों में मतदान किया जा रहा है। सुबह ठीक 7 बजे ये मतदान प्रक्रिया शुरू हुई है जो दोपहर बाद 3 बजे तक चलेगी। सिरमौर जिला में 515 मतदान केंद्र बनाए गए हैं जहां तमाम पुख्ता इंतजाम प्रशासन द्वारा किए गए हैं ताकि यहां निष्पक्ष तरीके से चुनाव संपन्न करवाया जा सके। मतदान को लेकर मैदानी इलाकों में बढ़ती गर्मी को देखते हुए लोग सुबह के समय मतदान के लिए अधिक संख्या में आगे आ रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए सिरमौर से सतीश शर्मा।
0: इधर सोलन जिला में आज तीसरे व अंतिम चरण के लिए जिला की 82 ग्राम पंचायतों में मतदान जारी है। जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने बताया कि इन ग्राम पंचायतों में कुल 1,08,156 मतदाता हैं। इनमें 55,123 पुरुष तथा 53,033 महिला मतदाता हैं। निर्वाचन के लिए कुल 490 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। चंबा जिला में आज 86 ग्राम पंचायतों में मतदान प्रक्रिया जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस चरण के लिए विकासखंड चंबा की 15, तीसा की 17, महला की 17, सलूणी की 14 और भटियात की 23 पंचायतों में वोट डाले जा रहे हैं। चंबा के उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने बताया कि लोकतंत्र में मतदाताओं ने इस महापर्व में बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। उधर कुल्लू जिला की 76 ग्राम पंचायतों में मतदान के लिए 426 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जिले में 99,607 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्ण व निष्पक्ष ढंग से संपन्न करवाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा किए गए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। जिला की जरड़ पंचायत में 85 वर्षीय देवी सिंह ठाकुर ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। प्रदेश में जिला परिषद, पंचायत समिति सदस्यों तथा 4 नगर निगमों के मतों की गणना के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। प्रदेश के 91 विकास खंडों में कल 31 मई को सुबह 9 बजे से मतगणना शुरू होगी। जिला परिषद वार्डों की मतगणना के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। प्रत्येक जिला परिषद वार्ड में मतगणना के लिए 15 से 20 टेबल लगाए जाएंगे जबकि एक वार्ड की मतगणना में करीब 35 कर्मचारी और अधिकारी तैनात होंगे। प्रदेश के 4 नगर निगमों सोलन, मंडी, धर्मशाला और पालमपुर के चुनाव परिणामों को लेकर प्रशासन ने तैयारियाँ पूरी कर ली है। कुल्लू जिला के बंजार जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्यों की मतगणना प्रक्रिया में इस वर्ष पहली बार महिला अधिकारियों व कर्मचारियों को स्वतंत्र रूप से मतगणना कार्य के लिए नियुक्त किया गया है। महिला सशक्तिकरण व प्रशासनिक कार्यों में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करने की दिशा में ये महत्वपूर्ण पहल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी 31 मई को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाश

0: आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर किया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के ज्ञान भारतम मिशन के अंतर्गत ज्ञान भारतम राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण के माध्यम से देश की प्राचीन दुर्लभ और हस्तलिखित पांडुलिपियों को सहेजने, उनका दस्तावेजीकरण करने और उन्हें डिजिटल रूप से संरक्षित किया जा रहा है। विभिन्न परिवारों, मंदिरों, मठों, शैक्षणिक संस्थानों और संग्रहालयों में शताब्दियों से रखी पांडुलिपियों को आधुनिक तकनीक से ज्ञान भारतम मोबाइल ऐप द्वारा आम नागरिक, मंदिर या निजी संग्रहकर्ता अपनी पांडुलिपियों की जानकारी और तस्वीरें अपलोड कर सकते हैं। प्रदेश के ऊना जिले में इस सर्वेक्षण को गति दी जा रही है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 3:00 PM। नमस्कार।
1: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए गए, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ FM शिमला पर भी रिले किया गया। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

आप ट्यून इन हैं 103.7 मेगाहर्ट्ज एफएम शिमला पर, और आइए अब आपको सुनवाते हैं पुरानी फिल्मों से। आज का ये सुहाना सफर विवेक शर्मा के साथ। पुराने गीत हिंदी सिनेमा के वे सुनहरे और सदाबहार और क्लासिक गाने हैं जिन्हें अक्सर भुला दिया जाता है, लेकिन जब हम इन्हें सुनते हैं तो आनंद ही कुछ और आता है। कार्यक्रम का पहला गीत आपकी नजर फिल्म है मेरे सनम। आवाज आशा भोसले की है, बोल है मजरूह के और संगीत ओपी नैयर का। सुनते रहे, मुस्कुराते रहे, बने रहे 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला के संग।

आप ट्यून इन हैं 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला पर और प्रोग्राम चल रहा है पुरानी फिल्मों से। जी, पुराने गीतों को सुनने से पुरानी यादें और पुराना संगीत फिर से जीवंत हो उठता है। आइए सुनते हैं, फिल्म है जब जब फूल खिले, आवाज है मोहम्मद रफी की, आनंद बख्शी के बोल हैं और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: हिमाचल प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण हेतु वचनबद्ध है। आइए सुनते हैं माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का संदेश।
1: नमस्कार। विश्व पर्यावरण दिवस हमें प्रकृति के संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास करवाने का महत्वपूर्ण अवसर है। हिमाचल प्रदेश को प्रकृति ने सुंदर पहाड़, साफ पानी और शुद्ध हवा का अनमोल उपहार दिया है। आइए हम सब मिलकर अपने पर्यावरण को स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित बनाने का संकल्प लें। पेड़ लगाएं, पानी बचाएं और प्रकृति की रक्षा में अपना योगदान दें। स्वस्थ पर्यावरण ही आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। आइए प्रकृति से प्रेम करें और हिमाचल को हरियाली और स्वच्छता का आदर्श बनाएं। जय हिंद, जय हिमाचल।
2: हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जनहित में जारी।

आप ट्यून इन है 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला पर और प्रोग्राम चल रहा है पुरानी फिल्मों से। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं, फिल्म है तीसरी मंजिल, आवाज आशा भोंसले की है, मजरूह के बोल हैं और राहुल देव बर्मन का संगीत।

पुराने गीत एक युग की यादें हैं, जो आज की तेज दौड़ भाग वाली जिंदगी में ये गीत हमें सुकून पहुंचाते हैं। अगला गीत फिल्म है मेरा साया, आवाज लता मंगेशकर की है, बोल राजा मेहंदी अली खां के और संगीत मदन मोहन का।

पुराने गीत कई पीढ़ियों से लोकप्रिय हैं और जो आज भी लोगों द्वारा पसंद किए जाते हैं। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म में अनुपमा। आवाज लता मंगेशकर की है, कैफ आजमी के बोल और संगीत हेमंत कुमार का।

एफएम शिमला पर आप सुन रहे पहाड़ी संगीत। अभी आपने सुना बाबूराम बनौली और साथियों को। पहाड़ी संगीत की स्वर लहरियां जब इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों, कल कल बहते झरनों और टेढ़े मेढ़े रास्तों के संग मिलती है तो पहाड़ी संगीत का अंदाज खिल जाता है। जी आइए सुनते हैं राम स्वरूप शांडिल को।

0: महत्वपूर्ण अवसर है। हिमाचल प्रदेश को प्रकृति ने सुंदर पहाड़, साफ पानी और शुद्ध हवा का अनमोल उपहार दिया है। आइए हम सब मिलकर अपने पर्यावरण को स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित बनाने का संकल्प लें। पेड़ लगाएं, पानी बचाएं और प्रकृति की रक्षा में अपना योगदान दें। स्वस्थ पर्यावरण ही आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। आइए प्रकृति से प्रेम करें और हिमाचल को हरियाली और स्वच्छता का आदर्श बनाएं। जय हिंद, जय हिमाचल।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जनहित में जारी।
2: FM शिमला पर आप सुन रहे हैं पहाड़ी संगीत। आइए सुनते हैं मंजू भारद्वाज और गीता की आवाज में ये लोकगीत।

0: आप ट्यून इन है 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला पर।
1: हिमाचल प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण हेतु वचनबद्ध है। आइए सुनते हैं माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का संदेश।
2: नमस्कार। विश्व पर्यावरण दिवस हमें प्रकृति के संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास करवाने

आप ट्यून इन हैं 103.7 मेगाहर्ट्स एफएम शिमला पर। आइए सुनते हैं हिंदी में समाचार 12 बजे और 12 बजकर 5 मिनट पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कीजिए कुछ ही पलों का इंतजार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर आज सुबह बिहार के गया पहुंचे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राष्ट्रपति के रूप में उनकी ये पहली भारत यात्रा है। म्यांमार के राष्ट्रपति ने गया में महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद वे नई दिल्ली पहुंचेंगे। उनका आज शाम विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात का कार्यक्रम है। म्यांमार के राष्ट्रपति कल म्यांमार भारत व्यापार मंच में भाग लेंगे। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। कल नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस संबंध में जानकारी दी।
1: म्यांमार के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता इन संबंधों को और मजबूत करने के बारे में चर्चा करेंगे। इस यात्रा का एक व्यापारिक पहलू भी है जिसमें दोनों देशों के बीच

0: बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। ये एक आधिकारिक यात्रा है।
1: दिस इज ऑफिशियल विजिट।
2: सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा के बीच सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में कहा कि देश में एलपीजी की कमी की कोई सूचना नहीं है। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास भारतीय नागरिकों को समय पर सहायता प्रदान कर रहे हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने आज शाम विधायक दल की बैठक करेंगे। इसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सिद्धरमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। उन्हें नए नेता के चुने जाने तक कार्यभार मुख्यमंत्री के रूप में बने रहने के निर्देश दिए हैं। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान शुरू हो रहा है। 1 महीने तक चलने वाली निर्वाचन आयोग की यह प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। स्वास्थ्य शिशु कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जारी किया है। मंत्रालय द्वारा यह सर्वेक्षण 2023-24 में किया गया था। इसमें 715 जिलों के 6,79,000 परिवारों को शामिल किया गया। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवाओं से विदाई ली। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात है।
3: मेरे लिए ये बहुत सम्मान की बात है कि मुझे तीनों सेनाओं से गार्ड ऑफ ऑनर लेने का अवसर मिला। इसके लिए मैं तीनों सेनाओं और सेना मुख्यालय को धन्यवाद देता हूँ। गार्ड ऑफ ऑनर के समापन के साथ मैं वर्दी में अपने साथियों से विदाई लेता हूँ। मैंने वर्दी में अंतिम बार समर स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किया। ये उन वीर सैनिकों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया।
2: लेफ्टिनेंट जनरल NS राजासुब्रमणी उनका स्थान लेंगे। गुजरात टाइटंस IPL क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गया है। गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल कल अहमदाबाद में खेला जाएगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि गोवा न केवल अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और शानदार आतिथ्य सत्कार के लिए प्रसिद्ध है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह अवसर उन सभी को याद करने का है जिन्होंने राज्य की प्रगति और पहचान के लिए अथक परिश्रम किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने पत्रकारों, लेखकों और हिंदी भाषा के समर्पित प्रबुद्ध व्यक्तियों को हिंदी पत्रकारिता दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। जम्मू कश्मीर में सीमावर्ती इलाकों के निवासियों ने केंद्र सरकार के उस फैसले का स्वागत किया है जिसमें कहा गया है कि सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में अवैध ढांचों और अनधिकृत गतिविधियों को हटाया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: The news read by Shagun Chopra. Myanmar President U Min Aung Hlaing arrived in Bodh Gaya today as part of his 5-day visit to India. During the visit, he offered prayers at the world-renowned Mahabodhi Temple and the historic Sujata Temple. The president will also visit various Myanmar Buddhist monasteries in Bodh Gaya. Earlier, Bihar Agriculture Minister Vinay Kumar Sinha accorded a warm welcome to President U Min Aung Hlaing at Gaya Airport. The Karnataka Congress Legislature Party is scheduled to meet in Bangalore at 4 p.m. today to elect its new leader to succeed the outgoing Chief Minister, Mr. Siddaramaiah. Governor Thavarchand Gehlot has already accepted the resignation of Mr. Siddaramaiah, asking him to act as a caretaker until a new incumbent is chosen. Our correspondent reports that Mr. D.K. Shivkumar is likely to be formally elected as the new leader of the Congress Legislature Party. The 136 Congress MLAs have been asked to attend the CLP meeting. AICC General Secretary and Karnataka in charge,

आप ट्यून इन हैं 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला पर। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं, फिल्म है कुछ कुछ होता है। आवाजें हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की, समीर के बोल हैं और संगीत जतिन ललित का।

0: आप ट्यून इन हैं 103.7 मेगाहर्ट्ज एफएम शिमला पर।
1: हिमाचल प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण हेतु वचनबद्ध है। आइए सुनते हैं माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का संदेश।
2: नमस्कार। विश्व पर्यावरण दिवस हमें प्रकृति के संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास करवाने का महत्वपूर्ण अवसर है। हिमाचल प्रदेश को प्रकृति ने सुंदर पहाड़, साफ पानी और शुद्ध हवा का अनमोल उपहार दिया है। आइए हम सब मिलकर अपने पर्यावरण को स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित बनाने का संकल्प लें। पेड़ लगाएं, पानी बचाएं और प्रकृति की रक्षा में

0: अपना योगदान दे। स्वस्थ पर्यावरण ही आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। आइए प्रकृति से प्रेम करें और हिमाचल को हरियाली और स्वच्छता का आदर्श बनाएं। जय हिंद, जय हिमाचल।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जनहित में जारी।
2: वन जीरो थ्री पॉइंट सेवन मेगाहर्ट्स एफएम शिमला पर आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। आइए सुनते हैं फिल्म है दिल से। आवाजें हैं एआर रहमान अनुराधा और अनुपमा की, गुलजार के बोल हैं और एआर रहमान का संगीत।

आप ट्यून इन है 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला के संग। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

हम आकाशवाणी शिमला से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं महिला सम्मेलन। ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी शिमला के साथ साथ FM शिमला पर भी सुन सकते हैं।

0: हर अनुभव और हर पल हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। जो समय से सीख लेता है वही जीवन में समझदार बनता है और आगे बढ़ता है। इसीलिए धैर्य रखें और सीखते रहें। तो बहनों, स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है आपका आज के इस महिला सम्मेलन कार्यक्रम में। आज मैं आपके साथ हूँ, आपकी दोस्त दीपिका,
1: और मैं हूँ आपकी दोस्त ब्रिजबाला। आप सभी को हमारा
0: नमस्कार।
1: तो देखिए दीपिका, आज के जो भागदौड़ भरी ज़िंदगी है उसमें हर कोई खुशियाँ ढूंढता रहता है।
0: बिल्कुल।
1: और हर कोई चाहता है कि उसके पास जो है खुशियाँ हो, लेकिन क्या हमारे पास आज के समय में खुशियाँ है? शायद हम कहें या सभी यही सोच रहे हैं कि नहीं हो सकती, क्योंकि हर कोई

0: सफलता के पीछे, पैसे के पीछे और नाम कमाने के पीछे भागा हुआ है।
1: बिल्कुल। और देखिए ना, हम अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बैंक में पैसा जमा करते हैं, बीमा करवाते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं और साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिन पर हम निवेश भी करते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो क्या कभी हमने सोचा है कि सबसे ज़रूरी निवेश कौन सा होता है? तो बहनों, इसका जवाब है अपनी खुशियों में निवेश करना, है ना?
0: बिल्कुल सही कहा दीपिका आपने। बहनों, खुशी एक ऐसी पूंजी है जो जितनी बढ़ती है उतनी ही जीवन में सुंदर और सफल जो जीवन है उनका सफल बनता जाता है। अक्सर हम सोचते हैं कि जब हमारे पास बहुत सारा पैसा होगा, बड़ा घर होगा या मनचाही नौकरी होगी तब हम खुश होंगे, लेकिन सच्चाई दीपिका ये है कि खुशी किसी मंजिल का नाम नहीं बल्कि एक यात्रा है। अगर आज हम खुश रहना नहीं सीखेंगे तो कल भी हमारा जो है खुशियों से भरा नहीं होगा।
1: बिल्कुल। देखिए, खुशियाँ यानी कि हमारे अपने ऊपर ही निर्भर करती है। और बहनों, अपनी खुशियों में निवेश करने का मतलब है अपने मन, शरीर और आत्मा को समय देना।
0: जी,
1: अब जैसे हम पैसे बढ़ाने के लिए सही जगह निवेश करते हैं, वैसे ही खुशियों को बढ़ाने के लिए भी सही जगह पर और समय और ऊर्जा लगानी पड़ेगी, है ना?
0: बिल्कुल,
1: तभी तो हम
0: लगानी
1: खुश
0: पड़ती
1: होंगे।
0: है।
1: यानी कि वो समय और वो जगह हमें ढूंढनी होगी जिससे खुशियां भी हमें मिले, है ना?
0: जी, तो बहनों, खुशियां पाने के लिए या उन्हें बढ़ाने के लिए आप कहाँ कहाँ निवेश कर सकती हैं इसके बारे में भी हम आपको बता दें। देखिए, सबसे पहले तो आप अपने स्वास्थ्य पर निवेश कर सकती है क्योंकि आज का जो जीवन है उसमें सबकी हर किसी की यही शिकायत रहती है कि उनका जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं है, क्योंकि कहते भी हैं अगर स्वस्थ शरीर में ही जो है स्वस्थ मन निवास करता है। और अगर हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ नहीं होगा तो हमें चाहे लाख सुविधाएं हो तब भी हमारे पास जो है खुशी नहीं होगी और हम खुशी को महसूस नहीं कर पाएंगे।
1: बिल्कुल। तो इसीलिए रोज़ थोड़ा व्यायाम करना, संतुलित भोजन करना और पर्याप्त नींद लेना हमारी खुशियों का सबसे बड़ा निवेश है।
0: बिल्कुल
1: बहनों, आप रिश्तों में निवेश कर सकती हैं। आज वो समय है जिसमें हम तकनीक की मदद से दुनिया से जुड़े हैं लेकिन अपनों से दूर हो रहे हैं। कई बार हम मोबाइल और सोशल मीडिया में इतने ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं ना कि परिवार और दोस्तों के लिए समय ही नहीं निकाल पाते हैं, जबकि सच्ची खुशी अपने दोस्तों के साथ बिताए हुए पल ही तो होते हैं, है ना? और
0: बिल्कुल
1: परिवार के साथ बैठकर बातें करना, दोस्तों से मिलना, किसी अपने का हाल पूछना और यही छोटे छोटे जो निवेश हैं हमें जीवन भर खुशियों का लाभ देते हैं।
0: और आज के समय में तो दीपिका आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे लोग व्यस्त हैं। अगर एक कमरे में चार लोग बैठे हैं तो सभी के सभी अपने फोन पे बिजी
1: बिल्कुल,
0: हैं, है ना?
1: फोन पे
0: एक
1: बिजी
0: दूसरे
1: रहते
0: के
1: हैं।
0: लिए उनके पास समय नहीं है तो
1: जी,
0: कहाँ फिर वो एक दूसरे के साथ अपनी खुशियां या गम बांटेंगे, है
1: तभी तो
0: ना?
1: वो खुशी कहीं ऐसे हो रहा
0: जी
1: है ना कि कहीं ना अजाने अनजाने में कहीं गायब हो रही है,
0: बिल्कुल
1: क्योंकि हम बातें नहीं करते हैं, एक दूसरे के साथ मजे नहीं लेते हैं, गप्पे नहीं मारते हैं। जब हम थोड़ा समय एक दूसरे के लिए देंगे तभी तो हम मजे ले पाएंगे, है ना?
0: और इसका असर कहीं ना कहीं हमारे दिमाग पर भी पड़ता जा रहा है ना?
1: जी,
0: और ये जो छोटे छोटे निवेश होते हैं ना, जैसे हम लोग अपनी फैमिली को देते हैं, अपने स्वास्थ्य को देते हैं और जिसकी वजह से हम खुश रह सकते हैं, तो बहनों इसके लिए हमें थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी क्योंकि आज के समय में कहीं हम खोते चले जा रहे हैं।
1: बिल्कुल। तो बहनों, इसी के साथ ही हमें अपने शौक पूरे करने में भी निवेश करना चाहिए, और ये करना चाहिए नहीं, बहुत ज़रूरी है।
0: जी,
1: जब हम अपने शौक पूरे करेंगे तभी तो हम खुश रह पाएंगे,
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि अंदर की खुशी क्या होती है, अपने शौक होते हैं जो हमारे, जब वो पूरे होते हैं तभी तो हम खुश होते हैं।
0: बिल्कुल, और
1: तो
0: तभी हमें जो है सच्ची खुशी मिलती है।
1: बिल्कुल। तो
0: और
1: बहनों,
0: देखिए दीपिका, हर इंसान के भीतर जो है कोई ना कोई प्रतिभा भी छिपी होती है ना? किसी को गाना पसंद है, किसी को लिखना पसंद है, किसी को पेंटिंग करना या बागवानी करना, लेकिन अक्सर हम जिम्मेदारियों के बोझ तले अपने शौकों को भी भूल जाते हैं। और आज तो हम ये कहें कि जिम्मेदारियां शायद कम हो गई हैं लेकिन सोशल मीडिया पे हम ज्यादा
1: ज्यादा
0: रहते
1: हैं।
0: हैं।
1: और इसी तरह बहनों, अगर हम अपने पसंदीदा कामों के लिए समय निकालते हैं तो इससे हमें दोगुनी खुशी मिलती है, सुकून मिलता है, साथ ही जो हमारी आत्मा है वो भी प्रसन्न होती है।
0: बिल्कुल।
1: तो कुछ नया सीखना या खुद को बेहतर बनाना, इस पर भी आप निवेश कर सकती हैं।
0: जी
1: बहनों, नई चीजें सीखने से क्या होता है, एक तो आत्मविश्वास बढ़ता है और जीवन को जो नई दिशा देता है। जैसे आप किताबें पढ़ सकती हैं, कोई नई कला सीख सकती हैं, नई जगहों की जो जानकारी है वो हासिल कर सकती है। तो इन सबसे हमारा मानसिक विकास होगा और जब हम खुद को बेहतर बनाते हैं तो खुशी अपने आप बढ़ती है, है
0: बिल्कुल
1: ना?
0: दीपिका, आपने बहुत ही सही कहा। और सबसे ज़रूरी जो निवेश है वो है सकारात्मक सोच में निवेश करना। देखिए, जीवन में कठिनाइयाँ सबके सामने आती रहती हैं लेकिन सकारात्मक सोच अगर आपकी है तो कोई भी चुनौती हो तो उससे लड़ने की ताकत हमें मिलती है।

0: हर परिस्थिति में अच्छाई ढूंढना, कृतज्ञ रहना और छोटी छोटी बातों में खुशी तलाशना हमें भीतर से ये जो है ना समृद्ध बनाता है, यानी कि बहुत अमीर बनाता है।
1: और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी भी है बहनों। हम छोटी छोटी बातों पर जैसे नाराज़ हो जाते हैं, एक दूसरे से एक दूसरे की बुराई करने लग जाते हैं, अगर हम इसके विपरीत छोटी छोटी बातों में वहीं खुशियाँ ढूंढने लग जाए ना, तो हम अंदर से स्वस्थ भी रहेंगे और हम खुश भी रहेंगे। तो हमेशा हमें याद रखना है कि खुशियाँ कभी भी खरीदी नहीं जाती है, उन्हें बनाया जाता है, उन्हें ढूंढना होता है। और इन्हें बनाने के लिए थोड़ा थोड़ा निवेश करना पड़ता है। जैसे एक छोटा सा पौधा रोज़ पानी देने से बड़ा होता है, वैसे ही छोटी छोटी खुशियां जीवन को आनंद से भर देती हैं।
0: बिल्कुल। और ये दीपिका जो खुशियां है ना, ये हमारे अंदर ही हैं।
1: जी
0: तो बहनों, आज से तय कर लेना है कि आप केवल बैंक बैलेंस बढ़ाने में नहीं, बल्कि अपनी खुशियों के बैलेंस को बढ़ाने में भी निवेश करेंगी।
1: जी
0: क्योंकि जीवन की असली सफलता वही है जब आपके चेहरे पर मुस्कान हो, मन में संतोष हो और दिल में सुकून हो।
1: जी और हमारी बहनों को सुकून गाना जब बजता है ना
0: जी
1: हमारा,
0: जी
1: और गीत संगीत होता है, शुरू होता है, तो भी उन्हें आनंद आता है और हमें भी बहुत आनंद आता है। तो
0: बिल्कुल,
1: चलिए
0: दिल को
1: आनंद लिया जाए
0: जी
1: गीत
0: दिल
1: का
0: को सुकून भी मिलेगा
1: और
0: सुन के।
1: खुशी भी मिलेगी।
0: जी
1: जी

0: बहनों, जिस तरह जीवन को सुंदर बनाने के लिए खुशी जरूरी है, उस पर कुछ इन्वेस्टमेंट होना जरूरी है, वैसे ही भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए हमें बिजली और पानी की बचत करना बहुत जरूरी है। और ये बचत कैसे की जाए ये हम सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ पहलुओं पर ध्यान दिया जाए ना तो हम सभी के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। जैसे अब इंडक्शन की ही बात कर ली जाए तो आजकल जब हमें गैस की बचत करने की ज़रूरत है तो ऐसे में इंडक्शन और भी ज़्यादा बेहतर विकल्प है आप हम सभी की रसोई के लिए।
1: बिल्कुल सही कहा दीपिका आपने। देखिए, गैस लेना तो थोड़ा मुश्किल हो रहा है और साथ में गैस जलने से जो है गर्मी भी बहुत हो जाती है आपके रसोई में, तो ऐसे में अगर आप इंडक्शन चूल्हा इस्तेमाल करती हैं तो उससे ऊर्जा बचाने में तो आपको जो है सहायता मिलेगी ही, साथ ही साथ ये एक आधुनिक और प्रभावी उपकरण भी माना जाता है। जो पारिवारिक गैस चूल्हों की तुलना में ये न केवल सुरक्षित है बल्कि बिजली की खपत को भी बेहतर तरीके से ये नियंत्रित करता है। और बहनों, ऊर्जा की बचत के हिसाब से भी जो इंडक्शन है उसका जो इस्तेमाल है ये बहुत ही फायदेमंद है।
0: जी बिल्कुल, देखिए ना, आजकल हर किसी के घर में इंडक्शन मौजूद है ही है, हर कोई चाहता है कि गैस की बचत हो, इसलिए वो इंडक्शन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये एनर्जी सेविंग में भी इसके बहुत फायदे हैं बहनों। सबसे पहला फायदा है कि इंडक्शन चूल्हा सीधे बर्तन को गर्म करता है, ना कि उसके आसपास की हवा को। तो इसमें विद्युत चुंबकीय तकनीक का उपयोग होता है जिससे ऊर्जा का नुकसान बहुत कम होता है। अब अगर गैस चूल्हों की बात की जाए तो गैस चूल्हों में काफ़ी ऊर्जा गर्मी के रूप में वातावरण में फैल जाती है, जबकि इंडक्शन में लगभग 80-90% ऊर्जा जो होती है वो सीधा खाना पकाने में उपयोग होती है। यानी कि जो इसमें बिजली की खपत होती है वो पूरी की पूरी इस्तेमाल होती है। अब गैस की बचत, गैस की अगर हम बात कर ले तो गैस इधर उधर हवा से चली भी जाती है ना?
1: जी, और साथ में जो वहाँ आसपास का जो वातावरण है वो गर्म होता है गैस की वजह से, लेकिन इंडक्शन में ऐसा नहीं होता। इंडक्शन में जो आपके जो आसपास का वातावरण है वो गर्म नहीं होता क्योंकि उसकी हवा जो है बर्तन के नीचे आती है, इधर उधर बिल्कुल नहीं जाती। तो इसका जो दूसरा बड़ा फायदा है बहनों वो है तेज हीटिंग। इंडक्शन चूल्हा बहुत ही जल्दी जो है गर्म हो जाता है जिससे खाना जल्दी बनता है और समय के साथ साथ बिजली की भी बचत होती है। अब अगर पानी की ही बात की जाए तो पानी उबालने में इंडक्शन गैस से जो है इंडक्शन गैस है वो गैस से कम समय लेता है जिससे ऊर्जा की जो खपत है वो घटती है।
0: बिल्कुल। और बहनों, अब बात करते हैं तीसरे फायदे की। तो इसका तीसरा फायदा है तापमान नियंत्रण। इंडक्शन चूल्हे में तापमान को सटीक रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। इससे ज़रूरत के अनुसार ही बिजली खर्च होती है और अतिरिक्त ऊर्जा बर्बाद नहीं होती। गैस चूल्हे में ये नियंत्रण उतना सटीक नहीं होता है।
1: जी बिल्कुल। और इसके अलावा इसका जो एक महत्वपूर्ण पहलू है वो है सुरक्षा और ऑटोमेटिक फीचर्स। इंडक्शन चूल्हे में ऑटो कट ऑफ टाइमर और ओवरहीटिंग का जो प्रोटेक्शन है, जैसे ऐसे जो फीचर्स होते हैं वो लगे होते हैं। जब बर्तन हटा दिया जाता है तो ये ऑटोमेटिकली यानी कि अपने आप जो है बंद हो जाता है जिससे अनावश्यक ऊर्जा की भी खपत नहीं होती। और साथ ही साथ जो है अगर आपके घर पे बच्चे हैं छोटे तो इसकी वजह से डर, मतलब जो डर होता है उसका भी कोई खतरा नहीं रहता, मतलब इसका जो
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और बहनों, इसी के साथ ही इंडक्शन चूल्हा जो है वो समतल सतह वाला होता है तो जिससे इसे साफ करना आसान हो जाता है। ये सबसे बड़ी हमारे लिए महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है क्योंकि हमें सबसे बड़ी समस्या यही रहती है कि कुछ भी चीज़ अगर गिर गई तो हमें देखा नहीं जाता है कि वो गंदा रहे, एकदम से हमें साफ करने की आदत होती है और इसे साफ करना बहुत ही आसान होता है। तो साफ सफाई में कम समय और मेहनत लगती है जिससे ऊर्जा और समय दोनों की ही बचत होती है।
1: बिल्कुल दीपिका, यानी ये जो

0: है ये पर्यावरण के लिए भी बेहतर है, क्योंकि इसमें धुआं या गैस का जो उत्सर्जन है वो नहीं होता। ये घर के अंदर वायु को स्वच्छ बनाए रखता है और प्रदूषण को भी कम करता है। इसके उपयोग से ना केवल बिजली की बचत होती है, बल्कि ये पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है।
1: जी, तो ऐसी वो हर चीज़ जो हमारे पर्यावरण के लिए सहायक है और हमारे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है, हमें उनका इस्तेमाल करना चाहिए। और बहनों, गैस की बचत को ध्यान में रखते हुए इंडक्शन का इस्तेमाल करना एक बेहतर विकल्प हो सकता है। तो अगर आप भी चाहती हैं कि आपकी गैस की बचत हो, ऊर्जा की बचत हो, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकती
0: और
1: हैं।
0: आज के समय में ये बहुत ज़रूरी भी है, तो आप इस विकल्प को चुन सकती
1: जी
0: हैं।

0: तो बहनों, अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और खोलते हैं अपनी जानकारी का एक और पिटारा। यानी आज शनिवार का दिन है और हमारी बहनें ये जानती हैं, उन्हें मालूम है कि आज के दिन करियर से जुड़ी कोई ना कोई बात हम जरूर करते हैं
1: जी।
0: और आज के समय में महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी जो पहचान है वो भी बना रही है। तो ऐसे में हस्तशिल्प की अगर बात की जाए ना, तो ये महिलाओं के लिए रोजगार का और आत्मनिर्भरता का एक बहुत ही अच्छा माध्यम बन सकता है।
1: बिल्कुल ब्रिजबाला, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हस्तशिल्प एक ऐसा क्षेत्र है जहां महिलाएं अपनी कला, मेहनत और रचनात्मकता के बल पर न केवल अपनी प्रतिभा दिखा सकती है बल्कि एक अच्छा करियर भी बना सकती है।
0: जी,
1: घर बैठे किए जाने वाले कई हस्तशिल्प कार्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने में मदद करते हैं।
0: बिल्कुल। और तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हस्तशिल्प है क्या।
1: जी,
0: हाथों से बनाई जाने वाली सजावटी और उपयोगी वस्तुएं, जैसे कढ़ाई, बुनाई, मिट्टी के बर्तन, पेंटिंग, ज्वेलरी, ये सारी जो चीजें हैं ये हस्तशिल्प के अंतर्गत आती हैं।
1: जी, तो बहनों अब बात करते हैं कि ये महिलाओं के लिए एक अच्छा करियर क्यों है। तो हम आपको बता दें कि एक तो इसमें घर से ही काम किया जा सकता है,
0: जी,
1: यानी हमें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, और दूसरा इसे कम लागत में शुरू किया जा सकता है। इससे अपनी कला को पहचान मिलती है, आप इसे ऑनलाइन बेचकर अच्छी कमाई कर सकती हैं, और साथ ही इससे आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास भी बढ़ता है।
0: बिल्कुल दीपिका। और आज जो है डिजिटल तकनीक ने हस्तशिल्प के व्यवसाय को और भी ज़्यादा आसान बना दिया है। महिलाएं सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से अपने उत्पादों का प्रचार प्रसार कर रही हैं। वे अपने बनाए हुए सामान की तस्वीरें और वीडियो डालकर ग्राहकों तक जो है वो आसानी से पहुंचा सकती है। इसके अलावा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए देश विदेश में भी अपने उत्पाद बेच सकती है। इससे उनकी जो आय है वो भी बढ़ती है और उन्हें पहचान भी मिलती है।
1: यानी कहीं ना कहीं में आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि आज के टाइम में ये जो सारी चीजें हैं सोशल मीडिया वगैरह, इसके माध्यम से, और बहुत सारी महिलाएं हैं ब्रिजबाला जिन्हें हम जानते भी हैं जो घर पर ही कढ़ाई से जुड़ी ऐसी बहुत सारी चीजें बना रही है, कि रिंग की बात कर ले हम, टॉयज बना रही है, बॉल बना रही है, और वो सोशल मीडिया पे उन्होंने फेसबुक पे डाले होते हैं और वहां से लोग खरीद रहे हैं।
0: बिल्कुल। पहले जहां हमारी बहनें बनाती थी ये सब चीजें, तो उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था और घर की चीजें जो बनी होती थी वो घर पे ही रह जाती थी, लेकिन आज उन्हें ये सब चीजों का फायदा मिल रहा है और उनकी चीजें बाहर भी बिक रही हैं, उनका नाम भी हो रहा
1: जी,
0: है।
1: जी देखिए, आय के से जी और आय के साधन भी बन रहे हैं, आप घर बैठे बैठे काम भी कर रही हैं, यानी कि एक पंथ दो काज वाली बात हो रही है।
0: बिल्कुल।
1: तो बहनों इसके अलावा महिलाएं क्या कर सकती हैं कि वो मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेकर अपने उत्पादों को प्रदर्शित कर सकती हैं। इससे नए ग्राहक मिलते हैं और बाजार की जो जानकारी है वो भी मिलती है। तो अगर महिलाएं अपने काम में मेहनत, रचनात्मकता और गुणवत्ता बनाए रखें तो वे इस क्षेत्र में एक सफल उद्यमी बन सकती हैं।
0: बिल्कुल। तो बहनों हम कह सकते हैं कि हस्तशिल्प का क्षेत्र महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ये केवल रोजगार का साधन ही नहीं बल्कि उनकी कला और प्रतिभा को पहचान दिलाने का भी माध्यम है। सही प्रशिक्षण, आत्मविश्वास और आधुनिक तकनीक के उपयोग से महिलाएं हस्तशिल्प के क्षेत्र में उज्ज्वल भविष्य बना सकती हैं।
1: जी, तो हमारी वो बहनें जो हस्त शिल्प के क्षेत्र में निपुण हैं, उन्हें कोई ना कोई काम आता है, सिलाई बुनाई कढ़ाई से जुड़ा कोई भी अगर उन्हें काम आता है और वो करती नहीं है, अपने आगे अपने करियर को बनाने के लिए वो कोई काम नहीं कर रही हैं, तो हमारी वो बहनें जिनके हाथ में कारीगरी है, कला है, वो अपनी कला का बेहतर इस्तेमाल कर सकती हैं। क्योंकि देखिए ना, अब बहुत चीज़ें आसान हो गई हैं, अब इतना मुश्किल नहीं है, हमें थोड़ी सी अगर जानकारी मिल जाए किसी भी चीज़ की तो हम किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। तो हमारी वो महिलाएं जो इस क्षेत्र में अपना हाथ आजमाना चाहती है वो जरूर आगे बढ़े, है ना।
0: बिल्कुल दीपिका। और इसमें क्या होगा कि अगर उन्हें इस चीज का शौक है ना, तो आय के साथ साथ उनका जो शौक है वो भी पूरा हो जाएगा।
1: जी जी जी। तो आप अपना शौक पूरा कीजिए और अपने आय के साधन भी बढ़ाइए।

0: बहनों, कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हैं और चलते चलते चलिए आपको बताते हैं खीरे के फायदे के बारे में। देखिए ना, आजकल गर्मियों का मौसम है और अगर तो हम शिमला की बात करें, हिमाचल की बात करें, तो खैर यहाँ पर तो मौसम में उतार चढ़ाव चलता ही रहता है ना।
1: बिल्कुल
0: अब कल तक अच्छा खासा मौसम था, अब शाम को बारिश हो गई और अब लग रहा है थोड़ा ठंड हो गई है ना।
1: थोड़ी नहीं दीपिका, बहुत ज़्यादा।

0: ठंड हो
1: जी
0: गई है
1: जी
0: शिमला
1: जी
0: में,
1: जी
0: एकदम से बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है, और गर्मी में थोड़ा सा जो टेम्परेचर है वो
1: राहत
0: बढ़
1: हो जाती
0: हाँ
1: है और
0: बढ़ गया
1: टेम्परेचर
0: था
1: जी अब कम हो
0: जी।
1: गया है, लेकिन फिर भी देखिए मौसम तो गर्मी का ही है
0: हाँ, जो
1: और
0: मैदानी इलाके हैं वहाँ पे गर्मी तो रहती ही है और लू का भी खतरा बना रहता है
1: रहता
0: ना।
1: है जी। तो ऐसे में क्या होता है कि ठंडी चीज़ें और पानी वाली चीज़ें खाने का मन करता है और खाना भी चाहिए। तो जैसे तरबूज, खरबूजा, खीरा, आम, यानी ऐसे फल सब्जियां जिनमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो। कई बार क्या होता है कि हमें प्यास कम लगती है और हम पानी कम पीते हैं,
0: जी
1: तो ऐसे में गर्मियों के मौसम में डिहाइड्रेशन होने का डर रहता है।
0: बिल्कुल, होता क्या है दीपिका कि जो हमारी बहनें हैं वो काम में व्यस्त रहती हैं और इसके चलते वो पानी पीना जो है कहीं ना कहीं भूल भी जाती हैं, और इसके साथ साथ अगर वो खीरे को अपने सलाद में या किसी कोई रायता बना रही है, कोई उसका मतलब पानी वाले जो फल है या सब्जियां हैं इस तरह की इस्तेमाल कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो डिहाइड्रेशन होती है उस समस्या से वो बच सकती हैं।
1: जी, और ये बहुत ज़रूरी है ऐसी समस्या से बचना, क्योंकि हमें कई बार हमें पता ही नहीं लगता कि हमारे साथ हो क्या रहा होता है, लेकिन शरीर में कहीं ना कहीं पर पानी का लेवल कम हो रहा होता है, पानी कम हो रहा होता है और डिहाइड्रेशन हो जाती है। तो बहनों आज हम आपसे साझा करेंगे खीरे के फ़ायदे। जी हाँ, खीरा सेहत के लिए बेहद फ़ायदेमंद है और आजकल बाज़ार में उपलब्ध भी है, भरपूर मात्रा
0: बिल्कुल
1: में है। इसमें लगभग 95% पानी, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। ये शरीर को हाइड्रेट रखने और वजन घटाने में मदद करता है। इसके अलावा ये पाचन क्रिया को दुरुस्त कर कब्ज से राहत देता है और त्वचा में प्राकृतिक चमक भी लाता है।
0: बिल्कुल, और इसमें कैलोरी बहुत कम और फाइबर जो है ज़्यादा होता है जिससे पेट भरा हुआ महसूस होता है और वजन घटाने में भी मदद मिलती है जैसे आपने कहा। अब देखिए, खीरे में पानी की भरपूर मात्रा होने से जो है गर्मियों में अगर इसको हम इस्तेमाल करते हैं यानी इसको खाते हैं तो शरीर में जो पानी की कमी होती है उसको ये पूरा करता है और साथ ही साथ जो थकान होती है उसको भी ये मिटाता है।
1: यानी जो खीरा है वो पाचन को बेहतर बनाता है और कब्ज की समस्या में भी मदद करता है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती है जो हमारे घर पर ही मौजूद होती है, और हम क्या करते हैं, हमें कब्ज की समस्या है तो हम दवाई ले लेते हैं, पता नहीं क्या
0: बिल्कुल
1: क्या इलाज उपचार करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो ऐसी चीज़ें हमारे पास ही मौजूद है जिनका हम सेवन करते हैं तो इन समस्याओं से हम बच सकते हैं।
0: बिल्कुल दीपिका, बहुत सारी समस्याओं का इलाज तो हमारी रसोई घर में ही होता
1: बिल्कुल है
0: है ना,
1: ना,
0: लेकिन हम क्या करते हैं कि जल्दी से राहत पाने के लिए दवाई ले लेते हैं और त्वचा को ठंडक और निखार भी देता है खीरा, है ना। शरीर की गर्मी कम करने में भी मदद करता है, खास करके हीट वेव में। जैसे आजकल आपने सुना ही होगा कि थोड़े दिनों में हीट वेव का जो प्रकोप था वो ज़्यादा बढ़ गया था, लेकिन
1: जी
0: हमारे शिमला का मौसम ठंडा हुआ है लेकिन आसपास के
1: अभी भी
0: जो
1: गर्मी
0: जी
1: बरकरार है। बिल्कुल बिल्कुल। और बहनों इसमें विटामिन के सी और पोटेशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं, आंखों की सूजन और थकान कम करने के लिए भी ये बहुत उपयोगी है। ब्लड प्रेशर को संतुलित रखने में भी ये सहायक हो सकता है।
0: तो बहनों, गर्मी के मौसम में आप खीरे को सलाद, रायता या जूस के रूप में इस्तेमाल कर सकती हैं और जिससे ये आपके लिए जो है बहुत ही लाभदायक होगा।
1: जी, तो देखिए ये तो बात हुई खीरे की कि खीरा हमारी सेहत के लिए कितना फायदेमंद है। और अब बहनों को सुनवा देते हैं ये गीत,
0: जी
1: तो हम भी सुनते हैं बहनों के साथ।
0: बिल्कुल।

0: अभी आप सुन रहे थे महिला सम्मेलन। हम आकाशवाणी शिमला से बोल रहे हैं। 1 बजने को हैं। समाचारों के लिए आइए अब आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली स्टूडियो।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन ऑनलाइन 5 दिन के भारत यात्रा पर आज सुबह बिहार के गया पहुंचे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राष्ट्रपति के रूप में उनकी ये पहली भारत यात्रा है। म्यांमार के राष्ट्रपति ने गया में महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद वे नई दिल्ली पहुंचेंगे। उनका आज शाम विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात का कार्यक्रम है। म्यांमार के राष्ट्रपति कल म्यांमार भारत व्यापार मंच में भाग लेंगे। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। कल नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस संबंध में जानकारी दी।
2: म्यांमार के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता इन संबंधों को और मजबूत करने के बारे में चर्चा करेंगे। इस यात्रा का एक व्यापारिक पहलू भी है, जिसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। ये एक आधिकारिक यात्रा है।
1: कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया आज शाम विधायक दल की बैठक करेंगे। इसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सिद्धरमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। उन्हें नए नेता के चुने जाने तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में बने रहने

0: का निर्देश दिया है। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान शुरू हो गया है। एक महीने तक चलने वाली निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों के उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। स्वास्थ्य शिशु कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जारी किया है। मंत्रालय द्वारा ये सर्वेक्षण 2023-24 में किया गया था। इसमें 715 जिलों के 6,79,000 परिवारों को शामिल किया गया है। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवाओं से विदाई ली। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात है।
1: मेरे लिए ये बहुत सम्मान की बात है कि मुझे तीनों सेनाओं से गार्ड ऑफ ऑनर लेने का अवसर मिला। इसके लिए मैं तीनों सेनाओं और सेना मुख्यालय को धन्यवाद देता हूँ। गार्ड ऑफ ऑनर के समापन के साथ मैं वर्दी में अपने साथियों से विदाई लेता हूँ। मैंने वर्दी में अंतिम बार समर स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किया। ये उन वीर सैनिकों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया।
0: लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि उनका स्थान लेंगे। सिंगापुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान के शांग्रीला संवाद के दौरान रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने नीदरलैंड की रक्षा मंत्री डिलेन येसिलगो जेगेरियस के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वार्ता में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग बढ़ाने, सैन्य संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। ये भारत और नीदरलैंड के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी को दर्शाता है। जम्मू कश्मीर में सीमावर्ती इलाकों में निवासियों ने केंद्र सरकार के उस फैसले का स्वागत किया है जिसमें कहा गया है कि सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में अवैध ढांचों और अनधिकृत गतिविधियों को हटाया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। पश्चिमी मध्य प्रदेश और तेलंगाना में आज लू चल सकती है। उधर बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत की खबर है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मृतकों के प्रति दुख व्यक्त किया है और परिजनों को 4,00,000 रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की है। गुजरात टाइटंस IPL क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गया है। गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच कल अहमदाबाद में फाइनल मैच 7:30 से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Chief of Army Staff General Upendra Dwivedi today said that Indian Armed Forces remain on high operational alert and are prepared for Operation Sindoor 2.0 if the situation warrants further military action. Addressing the passing out parade of the 150th course at the National Defence Academy in Kharagwasla, Pune, General Dwivedi said that Operation Sindoor demonstrated India's ability to respond to provocation with precision and resolve, setting a benchmark for the country's response to emerging security challenges.
3: As far as Operation Sindoor is concerned, firstly, it is still continuing. There is temporary cessation of hostilities. So the Indian Army or all the three services are preparing well for Operation Sindoor 2.0. If it takes place. Presently, we are looking at enhancing our synergy within the three services. We are looking at equipping ourselves for the next warfare. As I have told you, the next warfare will not be limited to the land, maritime and air alone. The new entries, that is the space, cyber and cognitive warfare, will play a very important role.
2: Myanmar President U Min Aung Hlaing arrived in Bodh Gaya today as part of his 5-day visit to India. During the visit, he offered prayers at the world-renowned Mahabodhi Temple and the historic Sujata Temple. The president is also scheduled to visit various Myanmar Buddhist monasteries in Bodh Gaya. Earlier, Bihar Agriculture Minister Vijay Kumar Sinha accorded a warm welcome to President U Min Aung Hlaing.

आप ट्यून इन है 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला पर और समय हो गया है म्यूजिक मस्ती का। ये प्रोग्राम खास है आपके लिए क्योंकि इस प्रोग्राम में मीठे मीठे गीतों के संग म्यूजिक के साथ मस्ती का आनंद भी आप ले सकते हैं। तो इस प्रोग्राम का पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं, फिल्म है मौसम, आवाज है शाहिद माल्या की, बोल हैं इरशाद कामिल के और संगीत प्रीतम का। सुनते रहें, मुस्कुराते रहें, बने रहें 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला के संग।

आप ट्यून इन है 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला पर और प्रोग्राम चल रहा है म्यूजिक मस्ती। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं, फिल्म है तन्नु वेड्स मन्नू, आवाज है कृष्णा की, बोल हैं राजशेखर के और संगीत भी कृष्णा का। सुनते रहें, मुस्कुराते रहें, बने रहें 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला के संग।

म्यूजिक मस्ती का खास मसाला लेकर हम आपके लिए लाए हैं 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला पर। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म है कहानी, आवाज है सुखविंदर सिंह की, बोल हैं अवनीता दत्त के और संगीत क्लिंटन का।

0: आप ट्यून इन है 103.7 मेगाहर्ट्ज एफएम शिमला पर।
1: हिमाचल प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण हेतु वचनबद्ध है, आइए सुनते हैं माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह।

0: रुखों का संदेश।
1: नमस्कार। विश्व पर्यावरण दिवस हमें प्रकृति के संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास करवाने का महत्वपूर्ण अवसर है। हिमाचल प्रदेश को प्रकृति ने सुंदर पहाड़, साफ पानी और शुद्ध हवा का अनमोल उपहार दिया है। आइए हम सब मिलकर अपने पर्यावरण को स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित बनाने का संकल्प लें। पेड़ लगाएं, पानी बचाएं और प्रकृति की रक्षा में अपना योगदान दें। स्वस्थ पर्यावरण ही आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। आइए प्रकृति से प्रेम करें और हिमाचल को हरियाली और स्वच्छता का आदर्श बनाएं। जय हिंद, जय हिमाचल।
2: हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जनहित में जारी।

आप सुन रहे हैं 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला, म्यूजिक मस्ती प्रोग्राम चल रहा है। आइए सुनते हैं फिल्म दबंग से, आवाज़ है राहत फतेह अली खां की, बोल हैं फैज़ अनवर के और संगीत साजिद वाजिद का।

आप सुन रहे हैं म्यूजिक मस्ती, आइए आप सुनते हैं फिल्म है नो प्रॉब्लम, आवाजें हैं मास्टर सलीम, कल्पना और हर्द कुमार की, बोल हैं कुमार के और संगीत प्रीतम का।

अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं, फिल्म है अजब प्रेम की गजब कहानी। आवाजें आतिफ असलीम और अलीशा चुनाई की, बोल हैं आशीष पंडित की और संगीत प्रीतम का।

आप सुन रहे हैं म्यूजिक मस्ती एफएम शिमला पर। आइए सुनते हैं, फिल्म है चांस पे डांस, आवाजें हैं नीरज श्रीधर और सलीम की, बोल हैं कुमार के और संगीत अदनान सामी का।

आप ट्यूनिंग है 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला पर और म्यूजिक मस्ती का लास्ट सॉन्ग आपको सुनवा रहे हैं। फिल्म है रेडियो, आवाज़ हिमेश रेशमिया की, बोल हैं सुब्रत सिन्हा के और संगीत हिमेश रेशमिया का।

आप सुन रहे हैं 103.7 मेगाहर्ट्ज एफएम शिमला। आइए सुनते हैं सबरंग। सबरंग में मिलन है गीतों का, गजलों का, सूफी कलाम का, कवाली का, कई रंगों को समेटे हुए है सबरंग। आइए सुनते हैं चंदन दास की आवाज में कार्यक्रम की पहली गजल।

आप सुन रहे हैं 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला पर सबरंग। अभी आपने सुना चंदन दास को, आइए सुनते हैं सूफी कलाम कैलाश खेर की आवाज में।

0: हिमाचल प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण हेतु वचनबद्ध है। आइए सुनते हैं माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का संदेश।
1: नमस्कार। विश्व पर्यावरण दिवस हमें प्रकृति के संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास करवाने का महत्वपूर्ण अवसर है। हिमाचल प्रदेश को प्रकृति ने सुंदर पहाड़, साफ पानी और शुद्ध हवा का अनमोल उपहार दिया है। आइए हम सब मिलकर अपने पर्यावरण को स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित बनाने का संकल्प लें। पेड़ लगाएं, पानी बचाएं और प्रकृति की रक्षा में अपना योगदान दें। स्वस्थ पर्यावरण ही आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। आइए प्रकृति से प्रेम करें और हिमाचल को हरियाली और स्वच्छता का आदर्श बनाएं। जय हिंद, जय हिमाचल।
2: हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जनहित में जारी

0: आप सुन रहे हैं 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला। लीजिए सुनिए दोपहर हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, आवश्यकता पड़ने पर भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार। म्यांमार के राष्ट्रपति ओमिन आउल लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे, महाबोधि मंदिर में की पूजा अर्चना। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज दोपहर बाद बेंगलुरु में, नए नेता का होगा चुनाव। बिहार में आंधी बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ ने कहा, अगर समझौते के प्रयास विफल होते हैं तो अमेरिका ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करेगा। और महिला क्रिकेट में आज ब्रिस्टल में 3 मैचों की T20 श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर है और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार है। पुणे के खड़गवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के 150वें बैच की पासिंग आउट परेड को संबोधित करते हुए जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि ये अभियान अब भी जारी है।
2: जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, ये अभियान अभी जारी है। इसमें फिलहाल केवल अस्थायी रूप से संघर्ष विराम है, इसलिए भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर है, साथ ही हम भविष्य के युद्धों के लिए खुद को और अधिक सक्षम बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आने वाले समय के युद्ध केवल जमीन, समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहेंगे।
1: जनरल द्विवेदी ने पास आउट होने वाले कैडेटों से व्यावसायिकता, नेतृत्व और राष्ट्र सेवक के उच्चतम मानकों को बनाए रखने का आग्रह किया। सेना प्रमुख ने इस पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण होने वाली महिला कैडेटों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि साहस, दृढ़ संकल्प और सैन्य

0: उत्कृष्टता लिंग भेद रहित गुण है। अकादमी से कुल 353 कैडेटों ने स्नातक की उपाधि प्राप्त की। मित्र विदेशी देशों के 21 कैडेटों को भी डिग्री प्रदान की गई। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवाओं से विदाई ली। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात है।
1: मेरे लिए ये बहुत सम्मान की बात है कि मुझे तीनों सेनाओं से गार्ड ऑफ ऑनर लेने का अवसर मिला। इसके लिए मैं तीनों सेनाओं और सेना मुख्यालय को धन्यवाद देता हूँ। गार्ड ऑफ ऑनर के समापन के साथ मैं वर्दी में अपने साथियों से विदाई लेता हूँ। मैंने वर्दी में अंतिम बार समर स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किया। ये उन वीर सैनिकों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया।
0: लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि जनरल चौहान का स्थान लेंगे। सिंगापुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान के शांगिला संवाद के दौरान रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने नीदरलैंड्स की रक्षा मंत्री डिलेन एसेलगो जिगेरियस के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। यह भारत और नीदरलैंड्स के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी को दर्शाता है। जम्मू कश्मीर में सीमावर्ती इलाकों के निवासियों ने केंद्र सरकार के उस फैसले का स्वागत किया है जिसमें कहा गया है कि सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में अवैध ढांचों और अनधिकृत गतिविधियों को हटाया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन ऑं आज भारत के 5 दिन के दौरे पर बिहार के गया पहुंचे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमा के राष्ट्रपति के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया है।
2: म्यांमा के राष्ट्रपति आज सुबह 9 बजे विशेष विमान से गया जी एयरपोर्ट पहुंचे। गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने पर बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और अन्य अधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। पदभार संभालने के बाद यह उनकी पहली विदेश यात्रा है। राष्ट्रपति यू मिन ऑंग हलाइंग विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर और बकरौर स्थित ऐतिहासिक सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना किया। साथ ही वे म्यांमार के विभिन्न बौद्ध मठों का भी दौरा किया। राष्ट्रपति के साथ उच्च स्तरीय अधिकारियों और बौद्ध प्रतिनिधियों का एक शिष्टमंडल भी मौजूद था। म्यांमार के राष्ट्रपति के आगमन को देखते हुए महाबोधि मंदिर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। आकाशवाणी समाचार के लिए गया जी से धर्मवीर भारती।
0: राष्ट्रपति ऊ मिन ऑं आज शाम नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर से भी वो मुलाकात करेंगे। म्यांमा के राष्ट्रपति कल म्यांमा भारत व्यापार मंच में शामिल हो सकते हैं। राष्ट्रपति ऊ सोमवार को दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यगत संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चर्चा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzonair.gov.in और हमारे न्यूज़ एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने आज शाम बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की बैठक करेंगे। इसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री डीके शिवकुमार को कांग्रेस विधानसभा पार्टी के नए नेता के रूप में औपचारिक रूप से निर्वाचित किए जाने की संभावना है।
3: आज डीके शिवकुमार राज्यपाल थावरचंद गहलोत से मिले। स्वेयरिंग इन सेरेमनी के दिनांक और जगह के बारे में चर्चा करने वे लोक भवन गए थे। इस बार युवा विधायकों को अवसर मिलने की संभावना है। अगले महीने राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव होने के कारण जल्दी से जल्दी सरकार बनाने का प्रक्रिया समाप्त करने पर गौर किया जा रहा है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: कांग्रेस के 136 विधायकों को विधानसभा बैठक में उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। एआईसीसी महासचिव और कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह गुर्जेवाला कार्यवाही का अवलोकन करेंगे। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष ज्ञान पुनरीक्षण SIR अभियान शुरू हो गया है। 1 महीने तक चलने वाली निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि भारत में चुनाव संविधान, चुनावी कानून और निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पारदर्शी दिशा निर्देशों के अनुसार ही कराए जाते हैं। नई दिल्ली स्थित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन में श्री कुमार ने बताया कि लोकसभा चुनावों के दौरान पारदर्शिता

0: जवाबदेही और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए लगभग 1,08,00,000 कर्मियों को तैनात किया जाता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की परीक्षा पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि उसके साझेदार TCS की तकनीकी खराबी के कारण आज कुछ परीक्षा केंद्रों पर संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET UG 2026 की शुरुआत देरी से हुई। NTA ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि समस्या का समाधान हो गया है और ये सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी छात्र को असुविधा न हो, परीक्षा पूर्ण समय सीमा के साथ आयोजित की जा रही है। एजेंसी ने बताया कि दोपहर के सत्र का समय संशोधित किया गया है। विद्यार्थियों को दोपहर 2:30 बजे से प्रवेश दिया जाएगा, जबकि परीक्षा निर्धारित समय 3 बजे के बजाय 4 बजे से शुरू होगी। केंद्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2023 के परिणामों के संबंध में भ्रामक विज्ञापन देने के लिए एक निजी कोचिंग सेंटर पर 7,00,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण ने अब तक कोचिंग संस्थानों को 60 से अधिक नोटिस जारी किए हैं और 1,40,00,000 रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया है। स्वास्थ्य शिशु कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जारी किया है। ये सर्वेक्षण 2023-24 में किया गया था। इसमें 715 जिलों के 6,79,000 परिवारों को शामिल किया गया। गोवा ने आज पणजी स्थित कला अकादमी में 40वां राज्य स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर सभा में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने गोवा को एक आदर्श राज्य बताया जिसने विकास और अपनी समृद्ध संस्कृति को संरक्षित रखा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज कहा कि गोवा इस बात का प्रेरणादायी उदाहरण है कि पहचान और प्रगति साथ साथ कैसे आगे बढ़ सकती हैं। पणजी के कला अकादमी में गोवा के 40वें राज्य स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि गोवा ने आधुनिक विकास को अपनाते हुए अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सफलतापूर्वक संरक्षित रखा है। गोवा केवल एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान, सामाजिक सद्भाव और बौद्धिक खुलेपन से निर्मित एक जीवंत सभ्यता है। इससे पहले उपराष्ट्रपति ने प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट मारियो मिरांडा पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, स्मारक डाक टिकट और विशेष आवरण जारी किए, पुरस्कार और नियुक्ति पत्र वितरित किए तथा दीनदयाल स्वास्थ्य सेवा योजना के अंतर्गत बढ़ी हुई सहायता का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विकसित गोवा आवश्यक है। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ ने कहा है कि अगर समझौते के प्रयास विफल होते हैं तो अमेरिका के सेना ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। एशिया के प्रमुख सुरक्षा मंच शांग्रीला संवाद में श्री हेक्सेथ ने कहा कि जरूरत पड़ने पर ऐसे अभियान संचालित करने के लिए अमेरिका के पास क्षेत्र और दुनिया भर में पर्याप्त सैन्य भंडार मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि देश किसी भी आपात स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। श्री हेक्सेथ ने कहा कि ईरान के साथ संघर्ष में शामिल होने के बावजूद अमेरिका एशिया प्रशांत क्षेत्र के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता बनाए हुए है। इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में अपने शीर्ष सलाहकारों के साथ 2 घंटे की बैठक की। इसमें ईरान के साथ युद्ध विराम बढ़ाने के उद्देश्य से समझौते की संभावना पर चर्चा की गई। सिचुएशन रूम में हुई बैठक को स्पष्ट निर्णय लिए बिना समाप्त हो गई। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड और तटीय कर्नाटक में भी वर्षा की संभावना है। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में ओले पड़ने का अनुमान है। पश्चिमी मध्य प्रदेश और तेलंगाना में आज लू चल सकती है। उधर बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत की खबर है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मृतकों के प्रति दुख व्यक्त किया है और परिजनों को 4,00,000 रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की है। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है। वर्ष 1826 में आज ही के दिन हिंदी भाषा का पहला समाचार

0: उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था। एक रिपोर्ट।
1: उदंत मार्तंड समाचार पत्र के संपादक और संस्थापक पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे। उन्होंने हिंदुस्तानियों के हित के हेत जैसे अमर संकल्प और भारतीय पत्रकारिता की नींव रखने वाले ध्येय वाक्य के साथ उदंत मार्तंड समाचार पत्र की कोलकाता के बड़ा बाजार इलाके से नींव रखी। उस दौर में जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, तब हिंदी में समाचार पत्र निकालना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था। उदंत मार्तंड से शुरू हुआ यह सफर आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे बड़ा औजार बना। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी समाचार पत्रों और पत्रिकाओं ने जनमानस के भीतर स्वाधीनता का भाव जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 4 दिसंबर 1827 को उदंत मार्तंड का अंतिम अंक प्रकाशित हुआ, जिसमें श्री शुक्ल ने लिखा कि आज दिवस लो उग्यो मार्तंड उदंत, अस्ताचल को जात है दिनकर दिन अब अंत। समाचार पत्रों से शुरू हुआ ये सफर आज रेडियो, टेलीविजन, डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया तक पहुंच चुका है। हालांकि इस बदलाव के साथ पत्रकारिता की जिम्मेदारियां भी बड़ी हैं। हिंदी पत्रकारिता दिवस अवसर है उन पत्रकारों और संपादकों को याद करने का जिन्होंने अपने लेखन और साहस से समाज को नई दिशा दी। साहस की कलम से किसी ने क्या खूब लिखा है, खींचो ना कमानों को ना तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो।
0: भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज ब्रिस्टल में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, आवश्यकता पड़ने पर भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार। म्यांमार के राष्ट्रपति ओमिनाउलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे, महाबोधि मंदिर में की पूजा अर्चना। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज दोपहर बाद बेंगलुरु में, नए नेता का होगा चुनाव। बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत। और महिला क्रिकेट में आज ब्रिस्टल में 3 मैचों की T20 श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आप ट्यून इन है 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला पर। समय हो गया है शिखरों के स्वर का। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं पहाड़ी लोकगीत। हिमाचल प्रदेश के अलग अलग बोलियों के लोकगीतों को सुनते हैं आप शिखरों के स्वर में। आइए सुनते हैं टिंकू को।

आप सुन रहे हैं FM शिमला पर शिखरों के स्वर, लोक संगीत की स्वर लहरियां जब इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों, कलकल बहते झरनों के संग, टेढ़े मेढ़े रास्तों के संग मिलती है तो शिखरों के स्वर का अंदाज ही खिल जाता है। आइए सुनते हैं सूरज मेहता को।

हम आकाशवाणी शिमला से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ एफएम शिमला पर भी रिले किया जाएगा।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के तीसरे व अंतिम चरण के लिए मतदान आज शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। तीसरे चरण के तहत प्रदेश की 1189 पंचायतों में वोट डाले गए। राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक तीसरे चरण में कुल 6615 वार्डों में मतदान हुआ। पंचायती राज चुनाव के अंतिम चरण में सिरमौर जिला की 89 पंचायतों के लिए आज वोट डाले गए। मतदान प्रक्रिया को लेकर सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग मतदान करने पहुंचे। युवा मतदाता जहां मतदान को लेकर उत्साहित नजर आए, वहीं बुजुर्ग मतदाता भी वोट डालने पहुंचे और सभी लोगों से वोट डालने की अपील की।
1: मेरा नाम भव्या है और मैं गांव सैनवाला की रहने वाली हूँ। आज मेरा फर्स्ट वोट था, काफी मतलब अच्छा लगा। आई थिंक सब यूथ को आगे आना चाहिए वोट देने के लिए और एक अच्छे लीडर को चूज करना चाहिए जिसमें सारी लीडरशिप क्वालिटीज हों।
2: मेरा नाम हेमंत कुमारी है, मेरी 72 साल उम्र है। मैं वोट डालने आई हूँ, खुशी से वोट डालने आई हूँ। अपना अच्छा मेंबर चुनना चाहिए जो कि अच्छे काम करे।
3: मेरा नाम मोहन सिंह है, मेरी उम्र 82 साल है और मैं यहाँ पे वोट डालने आया हूँ। और मैंने सभी से ये निवेदन है कि पहले तो निर्विरोध चुनने की कोशिश करो, आपस में मेल मिलाप हो जाए, लेकिन अगर फिर भी लेकिन टकराव की स्थिति ना रखो कर। और सभी से ये निवेदन है कि 18 साल से ऊपर सभी को अपना मत उसका प्रयोग करना चाहिए कर।
0: उधर सोलन जिला की 82 ग्राम पंचायतों में भी आज अंतिम चरण का मतदान हुआ। बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों तक पहुंचे। मतदाताओं का कहना है कि पंचायत के सर्वांगीण विकास के लिए मतदान किया है ताकि उनकी पंचायत का चहुंमुखी विकास सुनिश्चित हो सके।
4: मेरा नाम पारुल शर्मा है और मैं आंजी पंचायत की रहने वाली हूँ। आज हमारे यहाँ पे मतदान था और मैं स्पेशली चंडीगढ़ से यहाँ आई हूँ वोट डालने। और रीजन बिहाइंड कि मैंने आज वोट दिया है बिकॉज इन फ्यूचर जो हम एज न्यू जनरेशन देखते हैं, हमें एक ऐसा नेता चाहिए, हमें एक ऐसा उम्मीदवार चाहिए जो छोटी छोटी चीजों का ना ध्यान रखे।
5: पर मैं कुलदीप मेहता वार्ड नंबर 2 से, यहाँ चौमुखी विकास के लिए हम अपने चुनने आए हैं सस्ते को, तो हम चाहते हैं कि अच्छा विकास हो पंचायत का।
0: वहीं धर्मशाला से भाजपा विधायक व पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा ने धर्मशाला की रक्कड़ पंचायत में मतदान किया। मतदान के बाद पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए सुधीर शर्मा ने कहा कि पंचायती राज संस्थाएं लोकतंत्र की बुनियाद हैं और स्थानीय विकास में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है।

0: उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव आपसी भाईचारे और सामाजिक सहभागिता का प्रतीक होते हैं।
1: आज पंचायती चुनाव का तीसरा चरण है और पंचायतें, जैसा कि आप जानते हैं, प्रजातंत्र की नींव है। पंचायती राज में ज्यादातर देखने को मिला आपसी भाईचारे का चुनाव है और परिणाम जो भी हो, सबको अपने अपने गांव में पंचायत में भाईचारे के साथ रह करके अपने पंचायत को, गांव को, प्रदेश को कैसे आगे ले जाना, उसके लिए कार्य करना है, भावना यही है सब।
0: पंचायत प्रधान, उप प्रधान व वार्ड सदस्यों के लिए आज डाले गए वोटों की गिनती मतदान के तुरंत बाद शुरू हो जाएगी और आज रात तक सभी नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे, जबकि जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों सहित चार नगर निगमों सोलन, मंडी, पालमपुर और धर्मशाला के लिए डाले गए वोटों की गिनती कल 31 मई को होगी। इस बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने तीन चरणों में हुए जिला परिषद, पंचायत समिति सदस्यों, जबकि 17 मई को चार नगर निगमों धर्मशाला, पालमपुर, मंडी और सोलन में हुए चुनाव के मतों की गणना के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। प्रदेश के 91 विकास खंडों में कल 31 मई को सुबह 9 बजे से मतगणना शुरू होगी। जिला परिषद वार्डों की मतगणना के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं और पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए कुछ स्थानों पर मतगणना की वेबकास्टिंग भी की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में सुबह से रुक रुक कर हल्की वर्षा व तेज हवाएं चलने से तापमान में गिरावट आई है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। राज्य के कई स्थानों पर ओलावृष्टि का भी समाचार है, जिससे सेब सहित अन्य फसलों को नुकसान हुआ है। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश व बर्फबारी की संभावना जताई है। विभाग ने कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि व 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।
2: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे थे। 3:05 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं लाहौल स्पीति जिले की चिट्ठी। लेखक हैं सुरेंद्र कुमार और वाचन स्वर है राजकुमारी चंदेल का।
3: लाहौल स्पीति जिला की स्पीति घाटी स्थित प्रसिद्ध की गोम्पा में 1 मई को भगवान गौतम बुद्ध की जयंती को बड़े ही हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ मनाया गया। इस पावन अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन नवांग छेरिंग के सानिध्य में किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान गेशे केसंग ने भगवान बुद्ध की जीवनी और उनके उपदेशों पर प्रकाश डालते हुए लोगों को राग, द्वेष और क्रोध त्याग कर प्रेम व सद्भाव से जीवन जीने का संदेश दिया। की गोम्पा में आयोजित ये समारोह शांति, करुणा और मानवता के संदेश को जन जन तक पहुंचाने में सफल रहा। लाहौल स्पीति के होनहार युवा आइस हॉकी खिलाड़ी तंजिन टशी ने एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन करते हुए देश का नाम रोशन किया है। आइस हॉकी एशिया कप में भारत और चीन के मकाऊ के बीच खेले गए एक अहम मुकाबले में तंजिन टशी ने अपना दूसरा अंतर्राष्ट्रीय गोल कर प्रतियोगिता में अपनी एक खास पहचान बनाई है। उनके इस बेहतरीन प्रदर्शन ने मैच का रुख पूरी तरह से भारत की ओर मोड़ दिया। पूरे मुकाबले में उनकी तेज रफ्तार, स्टिक नियंत्रण और आक्रामक खेल शैली देखने लायक रही। इस दौरान एशिया कप में शानदार प्रदर्शन कर हिमाचल प्रदेश और देश का नाम रोशन करने वाले स्पीति घाटी के लोसर गांव के युवा खिलाड़ी तंजिन टशी को प्रदेश के मुख्यमंत्री और जनजातीय विकास मंत्री ने सम्मानित किया। भारतीय टीम में हिमाचल प्रदेश से शामिल एकमात्र खिलाड़ी तंजिन टशी ने प्रतियोगिता में कई शानदार गोल किए और चीन के खिलाफ मैच में मैन ऑफ द मैच का खिताब भी हासिल किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने तंजिन टशी को उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए 2 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि तंजिन टशी जैसे खिलाड़ी प्रदेश के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं और सरकार आइस हॉकी सहित शरदकालीन खेलों को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास करती रहेगी। इस दौरान ये भी बताया गया कि मुख्यमंत्री के प्रयासों से काजा में लगभग 75 करोड़ रुपये की लागत से आइस हॉकी स्टेडियम और 8 करोड़ रुपये की लागत से क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। दोनों

0: परियोजनाओं को केंद्र सरकार से स्वीकृति मिल चुकी है और इस वर्ष कार्य शुरू होने की संभावना है। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के जिला मुख्यालय केलंग में जिला स्तरीय रेडक्रॉस दिवस बड़े उत्साह और भागीदारी के साथ मनाया गया। पुराने सर्किट हाउस में आयोजित इस कार्यक्रम में उपायुक्त किरण भड़ाना ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मानवता की सेवा, स्वास्थ्य जागरूकता और समाज में सहयोग की भावना को बढ़ावा देना रहा। स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और कुल 39 यूनिट रक्तदान किया गया। वहीं पुलिस विभाग की ओर से नशा निवारण पर आयोजित कार्यशाला में युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों और उससे बचाव के उपायों की जानकारी दी गई। लंबे इंतजार के बाद 12 मई को मनाली लेह राष्ट्रीय राजमार्ग 3 को आधिकारिक रूप से यातायात के लिए बहाल कर दिया गया। प्रोजेक्ट हिमांक की स्नो क्लियरेंस टीम द्वारा चलाए गए विशेष अभियान के तहत सरचू तक सड़क संपर्क सफलतापूर्वक बहाल किया गया, जिससे लद्दाख और देश के अन्य हिस्सों के बीच संपर्क दोबारा स्थापित हो गया है। अभियान के दौरान टैंगलंगला, लाचुलुंगला, नाकिला और गाटा लोप्स जैसे दुर्गम क्षेत्रों में भारी बर्फ हटाने का कार्य किया गया। कई स्थानों पर शून्य से नीचे तापमान, हिमस्खलन का खतरा और बर्फीले तूफानों के बीच मशीनरी और जवानों ने दिन रात मेहनत कर सड़क को डबल लेन स्वरूप में तैयार किया। उपायुक्त लाहौल स्पीति किरण भड़ाना ने ग्राम पंचायत तांदी स्थित राजकीय प्राथमिक पाठशाला का औचक निरीक्षण कर विद्यालय की शैक्षणिक और प्रशासनिक व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिला लाहौल स्पीति में प्रवासी मजदूरों के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जिला प्रशासन द्वारा सराहनीय पहल की जा रही है। जिला बाल संरक्षण इकाई अधिकारी हीरानंद ने जानकारी देते हुए बताया कि मार्च 2026 से जिला बाल कल्याण समिति और चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम लगातार विभिन्न निर्माण स्थलों और मजदूर बस्तियों का निरीक्षण कर रही है। अभियान के तहत बीआरओ, लोक निर्माण विभाग और जल शक्ति विभाग में कार्यरत प्रवासी मजदूरों के बच्चों को स्कूलों से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। टीम द्वारा उदयपुर से कोकसर और दारचा तक कई बार सर्वेक्षण किया गया, जिसमें कुल 16 ऐसे बच्चों की पहचान हुई जो शिक्षा से वंचित थे।
1: अभी आप सुन रहे थे लाहौल स्पीति जिले की चिट्ठी। लेखक थे सुरेंद्र कुमार और वाचक थी राजकुमारी चंदेल। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

आप ट्यून इन है 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला पर। जी आइए सुनते हैं फिल्म संगीत ओल्ड हिट्स। यह है एफएम शिमला का अंदाज और एफएम शिमला की आवाज खास आपके लिए। तो कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं, फिल्म है इश्क पर जोर नहीं। आवाजें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की, आनंद बख्शी के बोल हैं और संगीत एसडी बर्मन का।

0: एफएम शिमला पर आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत ओल्ड हिट्स। अगला गीत आपकी नज़र, फिल्म है आनंद, आवाज़ है मनाडे की, बोल योगेश के और संगीत सलील का।
1: कैसी है पहेली हाय, कभी तो

0: चले जाए अकेले कहां जिंदगी कैसी है बहेली।
1: आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत ओल्ड हिट्स एफएम शिमला पर। आइए सुनते हैं फिल्म सफर का गीत, आवाज किशोर कुमार की, इंडीवर के बोल हैं और संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

आप ट्यून इन है 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला पर और प्रोग्राम चल रहा है फिल्म संगीत ओल्ड हिट्स। अगला गीत आपकी नज़र, फिल्म है महबूब की मेहंदी, आवाज़ किशोर कुमार की, आनंद बख्शी के बोल हैं और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

एफएम शिमला पर फिल्म संगीत ओल्ड हिट्स में आज इतना ही। आप सुन रहे हैं 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला। आइए सुनते हैं युववाणी कार्यक्रम।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं युववाणी और मैं हूं आपकी अपनी दोस्त सोनिया। ज्ञान वो प्रकाश है जो जीवन के अंधकार को दूर करती है। शिक्षा केवल पढ़ना लिखना नहीं सिखाती, बल्कि सही और गलत की पहचान कराकर हमें एक अच्छा नागरिक बनाती है। आज इस विशेष कार्यक्रम में चर्चा करेंगे शिक्षा का महत्व विषय पर। शिक्षा वो दीपक है जो अंधकार को मिटाती है, ज्ञान की किरण बनाकर जीवन को सजाती है। उसका हर सपना एक दिन साकार होता है। तो आइए इसी सुंदर पंक्तियों के साथ सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत।

दोस्तों, मनुष्य के जीवन में शिक्षा का विशेष महत्व है। शिक्षा व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करती है और उसे समाज में सम्मान दिलाती है। शिक्षित व्यक्ति न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाता है, बल्कि समाज और राष्ट्र के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। आज के आधुनिक युग में शिक्षा सफलता की सबसे बड़ी कुंजी बन चुकी है। चाहे विकास हो, खेल हो, चिकित्सा हो या प्रशासन, हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए शिक्षा आवश्यक है। तो आइए इसी के साथ सुनते हैं अगला गीत।

दोस्तों, शिक्षा हमें केवल नौकरी प्राप्त करने के लिए नहीं होती, बल्कि एक जिम्मेदार और जागरूक नागरिक बनने के लिए भी तैयार करती है। शिक्षित समाज ही प्रगतिशील समाज कहलाता है। आज भारत में नई शिक्षा नीति, डिजिटल शिक्षा और कौशल विकास जैसी योजनाएं युवाओं के उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर रही है। ना धन चाहिए, ना शोहरत का ताज चाहिए, जीवन में बस शिक्षा के हर मुश्किल आसान नज़र आती है जब हमें शिक्षा प्राप्त होती है। तो आइए इसी के साथ सुनते हैं अगला गीत।

दोस्तों, एक गरीब लड़का था जो सड़क के लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई करता था। संसाधनों की कमी के बावजूद उसने अपनी मेहनत नहीं छोड़ी। वर्षों की कठिन मेहनत के बाद वही बालक देश का सफल बालक बना। यही कहानी हमें सिखाती है कि सफलता का रास्ता परिस्थितियों से नहीं बल्कि शिक्षा और परिश्रम से तय होता है। शिक्षा समाज में समानता, जागरूकता और प्रगति लाती है। एक शिक्षित व्यक्ति अपने अधिकारों और कर्तव्यों को बेहतर ढंग से समझता है। तो आइए इसी के साथ सुनते हैं अगला गीत।

दोस्तों, यदि एक लड़की शिक्षित होती है तो उसका पूरा परिवार शिक्षित होता है और जागरूक बनता है। इसी कारण कहा जाता है, यदि एक पुरुष शिक्षित होता है तो केवल एक व्यक्ति शिक्षित होता है, लेकिन यदि एक महिला शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। ज्ञान की राह पर जो चलता है, हर मंजिल को वो आसानी से पा लेता है। शिक्षा से बढ़कर कोई धन नहीं होता, यही इंसान को महान बनाता है। तो आइए इसी के साथ सुनते हैं कार्यक्रम का

दोस्तों, इसी संदेश के साथ कि शिक्षा जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है, आज के युववाणी कार्यक्रम में मैं सोनिया विदा लेती हूँ आपसे। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार।

आप ट्यून इन है 103.7 मेगाहर्ट्स एफएम शिमला पर। ये समय हो गया है फिल्म संगीत का, स्थानीय सूचनाओं के साथ।

ये आपको बताना चाहेंगे कि शिमला में प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय समर फेस्टिवल 8 जून से 12 जून 2026 तक आयोजित किया जाएगा। रिज मैदान पर यह फेस्टिवल होगा और इसके जो मुख्य आकर्षण होंगे वो होंगे हिमाचली नाटी, लोक नृत्य, प्रसिद्ध गायकों कलाकारों की प्रस्तुतियां जो हैं यहाँ पर प्रस्तुत की जाएंगी। और विशेष आयोजन की बात करें तो शिमला स्वाद महोत्सव यहाँ पर मनाया जाएगा, डॉग शो और फ्लावर शो भी जो है यहाँ पर होगा, वॉइस ऑफ माउंटेन का आयोजन भी यहाँ पर किया जाएगा और पहली बार हेलीकॉप्टर जॉय राइड की शुरुआत इस फेस्टिवल में होगी।

आप ट्यून इन है 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला के साथ। शिमला के मौसम की बात करें तो कल शाम से मौसम ने अपना मिजाज बदला है, थोड़ी करवट ली है। और मौसम जो बदला है तो वर्षा की फुहारें इस मौसम में देखने को मिली हैं, और आज सुबह से वर्षा बाहर चल रही है शिमला के मौसम में। और वर्षा के कारण गर्मी में कमी आई है और मौसम थोड़ा ठंडा, थोड़ा कूल हो गया है, यानी कि गर्मी से निजात मिली है। और अभी मौसम में बादलों के साथ हल्की हल्की धूप भी देखने को मिल रही है शिमला के मौसम में।

आपको सुनवाते हैं फिल्म है कयामत से कयामत तक का गीत। आवाजें हैं उदित नारायण और साथियों की, मजरूहू सुल्तानपुरी के बोल हैं और संगीत आनंद मिलंद का। सुनते रहें, मुस्कुराते रहें, बने रहें 103.7 FM शिमला के साथ।

दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली, आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

आप ट्यून इन है 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला के साथ। आपको बताना चाहेंगे कि गेटी थिएटर शिमला में पेंटिंग प्रदर्शनी शुरू हो गई है। इस प्रोग्राम का लास्ट सॉन्ग आपकी नजर फिल्म है आशिकी। आवाजें हैं अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की, समीर के बोल हैं और नदीम श्रवण का संगीत। बने रहें एफएम शिमला के साथ।

एफएम शिमला पर अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत स्थानीय सूचनाओं के साथ। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

अज आकाशवाणी के शिमले केंद्र काबुले करते हैं शामी दे 4:20 हो चुके हैं। पेश है तुसों दा अपना मनपसंद चंब्याली कार्यक्रम। चंब्याली कार्यक्रम सुनने वाले सारे लोगों जो सुभाष ठाकुर दा प्यार भरिया नमस्कार।

है ना जी। ते अस अंदर जेड़े नौजवान हैं से कोई भी कम करने जो तैयार हैं, लेकिन तिना जो हरेक कम दे विच मौका जरूर देना पौना। अज दे जेड़े नौजवान हैं से नवी तकनीक अपनाया करते हैं, देश जो डिजिटल बनाया करते हैं, है ना जी, ते देश जेड़ा है से अपने पैरां पर खड़ा होया करता है। देश दा नौजवान साफ सफाई इस पर तो बड़ा भारी ध्यान देंदा है ना जी। अपने आसे पासे पर्यावरण वास्ते भी असां दा नौजवान जेड़ा है से बिल्कुल

है ना जी, तो देश जिहड़ा है से अपने पैरां पर खड़ा होया करता है। देश का नौजवान साफ सफाई इस पर तो बड़ा भारी ध्यान देता है ना जी, अपने आसे पासे पर्यावरण वास्ते भी असां दा नौजवान जिहड़ा है से बिल्कुल जोर लगाया करता है। असी देखते जगह जगह शिविर लगे दे होंदे है ना, हस्पतालां दे विच या कुते होर बाहर खूनदान होंदा बखरे बखरे मौकियां पर, तो तिथे भी असां दे नौजवान जिहड़े है से अपना खूनदान करके जिहड़ा है से लोगों की जिंदगियां जिहड़ी से बचाया करते हैं। पढ़ाई लिखाई दे इलाके दे विच भी पूरी दुनिया दे विच अगे वध्या करदे हन। तो हरेक असां दा जिहड़ा तुसीं बोल सकते कम दा क्षेत्र है, तिस दे विच असां दे नौजवान कुते पिछे नहीं हन। देखा जी, देश दा नौजवान जिहड़ा ऐसे देश दी नींह है। अगर नींह कमज़ोर होंगे तो से पूरा घर जिहड़ा ऐसे धड़ाधड़ गिरी जाना, चाहे से तुसने उपर जितनी मंजिल उठाया दा है, चाहे कितना जिहड़ा सा रंग रोगन कीता दा तिस पर। तिस वास्ते असां जो अपने नौजवानों की जिहड़ी ऐसे खरी पढ़ाई लिखाई करवानी पौनी, तेने जो सही रस्ता दसना ते तरक्की दे बराबर मौके जिहड़े हैं से देने, है ना जी। तां ही असी ये जिहड़े हैं से नारे लगाए के कुछ नहीं होना कि असी नौजवान हैं, असां दा देश नौजवान है, ते असां दा देश नौजवान है, इस दे विच कोई शक नहीं है। लेकिन इन नौजवानों की ताकत का भरपूर इस्तेमाल करना पौना, जिहड़े कि असां दे समाज के हरेक माणू है, तिन्हां ने भी देखना है, माँ बाप ने भी देखना है, ते जिहड़े असां दे नीति निर्माता हैं तिन्हां ने भी देखना है ना जी। ते अब देखा जी, टाइम होया करदा अगले लोकगीत का, तो अब सुना दे तुसां जो सोमदत्त बट्टू ते इंद्रपाल छाबड़ा की आवाज़ के बड़ा ही वधिया चंबियाली लोकगीत।

सभिनी सुनने वारे जो राकेश सकलानी री नमस्कार। आज तो साजो लोकगीत भी सुनाने कने जी भाई पर्यावरण प्रदूषण और राष्ट्रीय एकता इदी बारे देखा तो साजो दसना जी। ताजी देखा कार्यक्रम मारी शुरुआत जी आसा एक गीता दे करनी, ताजी सुना जी तुसे ए

जी तुसें सुनया ब्याह रा गीत, आवाज थी ज्वाला प्रसाद शर्मा जी। तई देखा भाई होना सा भाई गलबात करनी, आसे सब जाना है भाई देखा आ सारे मुल्क कट्ठे राष्ट्रीय एकता बहुत ज़्यादा जरूरी। राष्ट्रीय एकता आसे जो आ सारा मुल्क हा भाई से मुल्क हरी आत्मा है भाई। कहने राष्ट्रीय एकता रा मतलब भाई सब माणुआ जो मिली जुली कने रहना, और भाई कहने चाहे से भाई किस भी भाषा रहे हो, कोई भी बोली हो भाई, चाहे धर्म कोई भी हो, जाति अपनी संस्कृति कुछ भी हो भाई, भाई आसे सब एक है भाई। कहने राष्ट्रीय एकता रहा हाँ भाई आसा कट्ठे बहुत जरूरी है। आसारा मुल्क बहुत बड़ा भाई, ये जो देखा कई कई प्रकार देखा रीति रिवाज है आसारे मुल्क हा। कहने भाई ये रीति रिवाज और संस्कृति दे भर रहा मुल्क हा। अलग अलग राज्य और अलग अलग भाषा बोलियाँ पहनावा कने देखा जी खान पान आसे सब जाना है। कने आ सारी परंपरा भाई देखने लायक हो भाई। कने भाई एड़ा इतनी सारी भाई रीति रिवाज परंपरा होने के बावजूद भी आसान भाई देखा भाई एकता बनी रही। कने आ सारा मुल्क भी राष्ट्रीय भाई जो एकता ही इधे भाई आ सारा मुल्क आगे बढ़ी सका भाई अगर आसा अंदर एकता होगी। कने अगर भाई आसे भाई मानू एकजुट होंगे ता दे देखा मुल्क मजबूत बना। कने आसे भाई आगे भी बढ़ सकें। राष्ट्रीय एकता आसारी भाई पहचान ही कने और भाई मुल्क हरी सुरक्षा विकास और शांति कट्ठे काफ़ी जरूरी। कने भाई स्वतंत्रता संग्राम मंच राष्ट्रीय एकता के कारण एकजुट होने रे देखा भाई भाई आ सारे मुल्क पहले गुलाम जो गुलाम था कने भाई सब एको ही कने भाई देखा आज़ादी मिली थी। सब धर्म रे माणु मिली जुली कने भाई आज़ादी री लड़ाई लड़ी थी ते भाई देखा भाई आ सारा मुल्क आज़ाद होया था। कने देखा जी भाई महात्मा गांधी भगत सिंह सुभाष चंद्र बोस एड़े महान नेता हुए इन्हें भाई देखा माणु एकजुट कराए। कने एकता ज भाई देखा शक्ति हुई। कने भाई यदि एकता के कारण अंग्रेजा जो भाई देखा बाहर छड़ना पाया था से भारत छड़ने जी मजबूर हो गए थे। कने इड़ा भाई देखा राष्ट्रीय पर्व जेड़े स्वतंत्रता दिवस गणतंत्र दिवस रे मौके पर

देखा भाई ऐसे अपनी एकता जो दसाएं कहने आज के देखा भाई नौ जमाने में राष्ट्रीय एकता की काफ़ी ज़्यादा जरूरत हो गई कहने भाई के बे देखा धर्म जाति क्षेत्र पर देखा समाज में भाई विभाजन की बात हो जाई तो देखा आशा जो भाई अड़े टाइम भाई अपने सही ढंग कने चलना और जीना सीखना जरूरी है कने अड़ा भाई समझदारी कने आशा जो भाई समझना जरूरी है कने जरूरी भी आ भाई देखा आज का नौजवाना सोशल मीडिया पर देखा गलत जानकारी और अफवाह फैली जाई भाई अड़ा आशा जो अड़ी अफवाह का विश्वास नहीं करना भाई मुल्क हरे नौजवान राष्ट्रीय एकता जो मजबूत बनाने मंज भाई आशा जो भाई देखा अगे आना काफ़ी जरूरी है नौजवाना जो भाई अड़ा जरूरी है भाई से अपने देखा जो भी भेदभाव आ जो भाई ख़त्म कर सकें ये ऊपर उठी कने भाई आसे सभी जो एक होना जरूरी है भाई एक बारी अड़ा भाई देखा अड़ा देखना जरूरी है भाई आसारा मुल्क भाई तरक्की क्या करगा आस अंदर भाई ये सोच होनी जरूरी भाई शिक्षा खेल संस्कृति और सामाजिक कामकाज रे माध्यम दे भाई देखा असे एक ही दूजी कने मेल जोल रखाएं कने भाई और मिला जुलाएं किते ब्याह कार्य लग रहे भाई और किते कोई समारोह होना लग रहे भाई ये आसारे एकता रे प्रतीक है कने और भाई असे इड़ा भाई मिलजुली कने रहेंगे ता असे अपने मुल्क जो भाई देखा आगे भी बधाई सकें और कहने भाई देखा और आशा जो सब जो आसारी संस्कृति परंपराई कहने भाई भाषा बोली आशा जो भाई सम्मान देना इज्जत देनी भाई बहुत जरूरी कहने आपसी भाई देखा छोटी छोटी बातें जो भाई तनाव झगड़े हो जाएं भाई आशा जो इड़े बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं रखना भाई कहने भाई और मुल्क हरे जो आसारे जो नियम कानून है भाई आशा जो इधर ही पालन करना भाई बहुत जरूरी है कहने भाई आशा जो एक जिम्मेवार नागरिक बनना बहुत जरूरी है आज के नौजवान कहने भाई राष्ट्रीय एकता एक विचार कने सौगी एक भावना ही जो एक भाई टबरा जो जोड़ाई कहने भाई देखा दे पूरा जो आसारा राष्ट्र से एक हुआ भाई एड़ी भावना दे आशा जो सब जो देखा भाई मिली जुली कने और रहना कने मुल्क हरी एकता जो मजबूत बनाना कने और आसे भाई देखा सशक्त समाज रा देखा होना भी जरूरी है भाई राष्ट्रीय एकता कट्ठे ताजी देखा ये ताजी तुसे जानकारी सुनी ताजी आशा सुनना जी एक लोकगीत ताजी सुना ये लोकगीत।

तुसें सुनेआ लोकगीत अवाज़ थी किशोरी लाल और साथी दी। तां जी तुसें फिर लोकगीत सुनेआ जी। तो हुण भाई असां होर गलबात करनी, भाई असें सब जाना है पर्यावरण प्रदूषण एक भाई ज़्यादा समस्या होई गई कने पर्यावरण प्रदूषण भाई एक मुल्ख हरी समस्या नी, ये पूरे समाज री समस्या ही कने पूरी दुनिया रे माणू हरी समस्या होई गई भाई। प्रकृति आसा जो बढ़िया हवा साफ पानी हरे भरे बण और एक भाई बढ़िया वातावरण दे, आधुनिकता और विकास री दौड़ में माणू द्वारा देखा प्रकृति रा देखा काफ़ी ज़्यादा भाई नुकसान भी होना लग रहा कने किते भाई देखा बड़े बड़े राजमार्ग बनना लग रहे, सड़क बनना लग रही भाई और फैक्ट्रियाँ खुलना लग रही। तई देखा भाई आसा जो भाई पर्यावरण का ध्यान रखना भी जरूरी है। आज भाई देखा बड़े बड़े शहरों मंज और हवा पानी नदियाँ भाई गंदी हो गई कने और काफ़ी ज़्यादा भाई बण भी कट गए रे कने धरती का तापमान भी बढ़ना लग गया कने किते बरखा हुई तो ज़्यादा हुई जाई ता किते दा देखा सूखा हुई जा कने ज़्यादा बरखा और बेमौसमी बरखा भाई हो जाए पर्यावरण के कारण भाई देखा कने एड़ा भाई यदि कारण कृषि बागवानी की फसल मंजे देखा काफ़ी ज़्यादा कमी आना लग रही कने इधरा भाई आने वाली पीढ़ियाँ जो भाई ज़्यादा नुकसान हो सका कने भाई आसा जो भाई पर्यावरण संरक्षण और आसा सबूरी जो आसे माणू है भाई सभी जिम्मेवारी भाई आसा जो भाई आसारा फर्ज आ कि आसा भाई पर्यावरण की रक्षा करनी भाई कने भाई जेबे प्राकृतिक वातावरण में हानिकारक पदार्थों की मात्रा बढ़ी जाए और भाई इधरा बुरा प्रभाव माणू और भाई पशु और पंछी और देखा भाई जानवर भाई इन्हों का सभी का भाई बुरा प्रभाव हुआ कने इधर जो पर्यावरण प्रदूषण बोला है कहने जी भाई देखा प्रदूषण भी देखा कई

करार हुए और भाई जो भी प्रदूषण हुआ तीदे देखा मानव जाति जोता देखा सबसे ज़्यादा बुरा प्रभाव हुआ। कहने हवा दे देखा सारी जिंदगी चलाई और भाई बिना भोजना देता देखा भाई ऐसे मानू कई दिहाड़े तक रह सकाए। कहने बिना हवा दे देखा मानू एक दो मिनट भाई दिखाए नहीं रह सकता। और देखा भाई तुसे मुल्खा ही देखा उद्योग धंधे फैक्ट्रिया काफ़ी ज़्यादा होना लग रही। कहने इधरा धुआं कहने गाड़िया बसा ट्रका दे भी देखा निकलने वाला धुआं रसायन भाई और बना रही कटाई इधे भी देखा ज़्यादा प्रदूषण लग रहा होना। कहने वायु प्रदूषण के कारण भाई एड़ा भाई देखा इधे कारण मानुआ जो भाई खराब हवा के कारण सांसारी बीमारियाँ दमा एलर्जी और हृदय रोग जड़ी समस्या भाई ज़्यादा होना लग रही। कहने एड़ा भाई याने कहने सियाने जो भी देखा इधरा सबसे ज़्यादा बुरा प्रभाव होना लग रहा भाई। कहने एड़ा वायु प्रदूषण जो भाई कम करने कठे ज़्यादा से ज़्यादा डाल बूटे लगाने होंगे। और एड़ा भाई देखा पर्यावरण प्रदूषण के कारण भाई जो आ सारा पीने का पानी आ कहने भाई ये जो पानी आ यही जीवन आ भाई आ सारा। कहने आसे भाई कई बार एड़ा कराएं खड्डा तालाब जिला भाई आसे मानू भाई देखा ये जो प्रदूषित लग रहे करना। कहने फैक्ट्रिया का गंदा पानी भाई प्लास्टिक का कचरा और घरारा कूड़ा कचरा भाई आसे सटी भी दें कई बारी। कहने भाई देखा आसो वेड़ा नहीं करना भाई। कहने पानी रे स्रोता रे नेड़े भाई आसे और खड्डा नालिया रे नेड़े भी देखा कूड़ा कचरा सटी दें इधे कारण भाई काफ़ी ज़्यादा जो पीने का पानी आ से भाई गंदा होना लग रहा। कहने इधे गंदे पानी दे भाई कई सारी बीमारियाँ लग जाए मानू जो टाइफाइड हो गया हैजा और पीलिया एड़ी जड़ी बीमारी आई से भाई होना लग रही मानू जो। कहने अड़ा भाई देखा प्रदूषण देखा ये तो काफ़ी ज़्यादा हो गिरा। कहने अड़ा भाई देखा जो आवाज़ ही आवाज़ रहा प्रदूषण ये समस्या भी काफ़ी ज़्यादा हो गई रही। गाड़िया रहा हॉर्न लाउड स्पीकर मशीन रहा शोर तेज संगीत भाई इध जो भाई ध्वनि प्रदूषण बोला है। कहने अस्पताल रे नेड़े शोर शराबा और परेशानियों का कारण भाई बनी सका है। कहने पढ़ने वाले बच्चे भाई जिन्हारे पेपर लग रहे हुए हैं और कहने से जे पढ़ाई लिखाई जो व्यस्त हुए हैं भाई ये जो ध्वनि प्रदूषण हुआ इधरा बुरा प्रभाव हो सका। कहने भाई आज आ सारा मुल्क हाँ देखा प्लास्टिक काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होना लग रहा आसे सब जाना है आसरे जिंदगी का हिस्सा बनी गया भाई। ये प्लास्टिक पर्यावरण कठे भाई सबसे बड़ा खतरा बनी गया। प्लास्टिक भाई छोड़े खत्म होने वाला नहीं आ बल्कि ये कई साल तक एड़ा रहे आ कहने गलता नहीं आ भाई। प्लास्टिक दे भाई नालियाँ जो भाई ये जो नालियाँ हुई सर ये जाम हुई जाई। कहने ये जो आवारा पशु हैं कई बार ये भी खाई लें। कहने दीजिए भाई बीमार हुई जाए। कहने भाई देखा आ सारे जो ग्राम तालू हैं और भाई खड़ा हुई इधम भी देखा जीव हैं से भी देखा इधरे जो प्लास्टिक का जो कूड़ा कचरा इधे इना जो भी देखा भाई नुकसान हो जा। कहने भाई एड़ा ये जो कूड़ा कचरा प्लास्टिक का आसा जो भाई देखा इधरा खास ध्यान रखना जरूरी है। कहने और धरती का तापमान बदलना लग रहा ग्लेशियर पिघलना लग रहे और मौसम भी हो गया भाई बाढ़ सूखा और कितने ज़्यादा ही देखा भाई गर्मी हो जाई। कने कई सारे जीव जंतु पर भी इधरा बुरा असर होना लग रहा। कने पर्यावरण संरक्षण कठे आसा जो भाई जागरूक होना बहुत जरूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा डाल बूटे लगाने होंगे और पानी और बिजली की बचत और प्लास्टिक का कम इस्तेमाल कूड़ा कचरा नदी नालियाँ जो और पीने के पानी नेड़े नहीं भाई सटने। कने स्वच्छता अभियान में देखा हिस्सा लेना जरूरी है। पर्यावरण के प्रति मानव जो जागरूक होना भी भाई बहुत जरूरी है। तई देखा भाई ये तो थोड़ी जी गल बात थी जी तो हूँ सुनना जी आसा लोकगीत ती सुना जी ये लोकगीत।

तुसां सुणिया लोकगीत आवाज़ थी हेमराज चंदेल री। इदी सौकी मंडियाली कार्यक्रम वाला वक्त पूरा न लग रहा। आज्ञा देवा, नमस्कार।

हाँ लोगों आकाशवाणी शिमले के बोल बेल दी 5 बजकर 20 मिनट था 16 सेकंड भूंगे रस्ते घिन कई रात में पू मन पसंद पंगवाड़ी बोली कार्यक्रम सुने जी पंगवाड़ी बोली कार्यक्रम सुनने वाले सुबह जनों महेंद्र कुमार तरफा बेल दी नमस्ते जी सुनने वाले हाजरा अखबार फिर तुम अपू मन पसंद पंगवाड़ी बोली कार्यक्रम घिन करियो महेंद्र कुमार ता सुभ्या क्या पहले तो जतरे भी अभियान पंगवाड़ी बोली कार्यक्रम सुन गोरे रस्ते से आकाशवाणी शिमलेपुर सुन गोरे एफएम शिमलेपुर सुन गोरे तेने सुभ्यान कहीं जैसे पंगवाड़ी बोली कार्यक्रम अंतर स्वागत करता सुन बाड़ियो है ना जे पंगवाड़ी बोली कार्यक्रम में आऊँ दोनों गल करूँ दिहाड़ी गल करूँ है ना बारे गल करूँ कि कस कस रोज जैसे है ना पंगवाड़ी बोली कार्यक्रम है सुनने वाले सुन सकते ता से समारे सुन सकते बसते सुन सकते ठाशण चरे टेमी गल करूँ तो बिल दी 5 बजकर 20 मिनट क्या जैसे है ना पंगवाड़ी बोली कार्यक्रम जैसे शुरू होता तो 5 बजकर 50 मिनट करे है ना 30 मिनट जैसे है ना पंगवाड़ी बोली कार्यक्रम है सुनने वाले सुन सकते हाँ सब पंगवाड़ी बोली कार्यक्रम अंतर डक बोखला ते कुछ पैंगे घाटे जे जुड़े रही है ना है जे खास चीज कोई रीत है रकम है ना को तठनी बोले कोई संस्कृति तहनी बारे कोई हरिज गए हैं उराने बारे तहनी बारे देशे प्रदेशे खबरें भी जैसे आपू सुनने वाले जे सुनाते गीती कहीं गल करूँ तो बदिया बदिया गीत भी जैसे ताड़ी थेरे बुते तहने भी जैसे आपू सुनने वाले सुनाते आजम वक्त जे डकबो खिलाने से जे आपू सुनने वाले जैसे नैतिक शिक्षा दसे महत्व बारे होर जे लाने से लाने से अपनी बोली अपनी पिछाने बारे डकबोक से ब्याह क्या पहले मैं आख बदिया जनू गीत जैसे राकेश कुमार पंगवाए गल अंतर जैसे तैयार थे रस्तु एस छूटे अस गीत सुने जी

जी अत्रुभ देजनु गीत से सह सुनने वाले सुनो राकेश कुमार शर्मा पंगवाए गाले अंतर अबे जे मु जे डकबो खिलाने अस्ती सिलाने अस्ती जे हैं नैतिक शिक्षा अस्ती तसे फेदे बारे ता नैतिक शिक्षा ही गल करें तो एज ए पढ़ाई लिखाई होती है ना जे पढ़ाई लिखाई करते जैसे किताब या अंतर जैसे पढ़ाई लिखाई करते तो ऐसा आखता जैसे भिन्नी होती है ना नैतिक शिक्षा ही अगर कहीं मैंने जैसे खारी समझ जैसे थाता है ना खारे जैसे सोच थाता जैसे जैसे नैतिक शिक्षा तैसे अंतर की भूतु की दवाई कची जैसे खारी अस्ती है ना ऐप दी भी आई तो मैं मतलब मैं आँदी भी समाज की भी क चीज़ खारी आई क चीज़ जैसे खारी नहीं है ना कसे बली जैसे नुकसान भूता से जैसे नैतिक शिक्षा भूती है ना ऐसा अंतर खास करी मैं जे भूता तैसे अख बोते उन्होंने वैसे जैसे खरा हिंदी के गल करें वैसे जैसे खरा चरित्रस्ता है ना बोलने गल तैड़ी पूछ गई थी कि भाई कसे टबर अंतर है ना तने जे गबर जमोरस तू तैसा अगर तसे ये जो बढ़ाने है ना दादी दैद या नानी नैन खरे जैसे तस संस्कार द तो रस्ते संस्कार एक गल है कि खर उसे चालो रस्तु है ना तो भाई मोटाए तसे जैसे तसे कनी डकवो कनी मठले जे कनी डकवो कनी अस्ती है ना ता तसे आपू जे उम्री अति भूणे तंजे कनी डकवो कनी से अगर कनी चालो रस्ती ता से जैसे तसे तसे बोल सकते कि अख नैतिक शिक्षा जैसे तसे गया लें जैसे तस्तु तोरी अस्ती है ना जे अस किताबी अंतर है ना पढ़ाई लिखाई जे भूण लगो अस्ती से किताबी कें वै किताबी कें ज्ञान करके कि भाई अबे कहीं पढ़ो रहे लिखो रहे भाई तनी फलाने है ना फलाने इतरू

और तो तस्तनी जैसे कागज हती थे, है ना, डिग्री हती थी, डिप्लोमे हती थे, से भूई तसे पढ़ाई लिखाई दे यानी जैसे इतर पढ़ो रस्ता। जो नैतिक शिक्षा की गल करूँ ऐसे कागज तो किचना हती थे, है ना, तस्कें कोई नहीं हुराल नहीं दिन भूती कि ये मुँह नैतिक शिक्षा ही जैसे मैं अन्य करूँ ना, पर तस्में हणु जे बोल चाल अंतर, है ना, बोल है ना डकबोक अंतर, तसे उठले बिछले अंतर से सब चीज़ें जैसे के घेती जैसा सब होते नो ना कि भाई एक्वा जैसे खारा से जब जैसे खारे संस्कार तोर तसे संस्कार रीते क्या करी। पहले तो अब जे मठ गया ब्रस्तु है ना सिख जनू टबर अंतर जम तू तस क्या पत्या से बाले बाले जनू में टी थे तू तसे टबरे क्या शिश तू, है ना, अपू जो बाब क्या अपू दादी दैद क्या टबर अंतर जत्री बे ताऊ ता ये चाचा चाची हस्ते, है ना, तसे मोटे भाई बहन हस्ते, तसे कस साहब डक फोक कन लग रे कस साहब तने उठून बिछुण अस्तु ते साहब जैसे जे मठ गए बुरस्तु से जैसे शिचतु ता अगर ता टबर अंतर जैसे खारे तसे जे बुढ़ाउड़ हस्ते, है ना, जी बाबा दाद दादी तने खारे डक फोक कने, है ना, खारे से सोच थाते खारे समझ थाते ता गबुर एपू तस हो मतलब इन्हू नहीं कि तस को जबरदस्तियाँ करवाने ना से खुद है जैसे खारो जैसे मैं बने गए तू। तो आज के टाइम जे नैतिक शिक्षा हस्ती ऐसे जैसे ये बोल सकते थे कि भाई हर एक महनु जैसे आख जरूरत बोल सकते हैं किस किस की अगर अस कोड़ी हेरे तो आज के टाइम में कई सियाणा है ना मैन बेचारा अगर तस बात जैसे इरो रहे नहीं टपिए रहे ना तो तैड़ी अगर नौजवान तसे मदद न करे लिया तैसे थोड़ी जनी और निकल तैड़ी भी जेंगे तो कि भाई किस किस की कोड़ी कोड़िया चीज़ें हेरी थी तो भाई ऐस महनु जैसे कैतरी दया आस्ती, है ना, कैतरी जैसे हुरी प्रति ईमानदार आस्ता कैतरी जैसे ऐसे सहानुभूति था था मतलब तैड़ी भी रोड अंतर अगर बुजुर्ग अस्ता बेचारा तसे भी हो रहे तरिए नहीं तैसे किनारे हुरी किनार घेणे तो तैड़िए तस जे भी हो रहा अगर कहीं नौजवान तैन में गिरा अगर तैनी तसे मदद नहीं की रही तो तैड़ी भी जेंगे तू कि भाई यार है ना सब आपू आपू हिसाब तो जीते जीते पर यह कि थोड़ी भरी आसे अगर जैसे कख बढ़िया जना है ना समाज अंतर बढ़िया समाज बनाना है खारी ईमानदार या जे है ना एक हरी भलियाई करनी हस्ती एक हर जे रड़ी मी करी कम काज करना हस्ता तसे कम काज तह बोन हस्ता जिखे तैस अंतर जैसे तैन से चीज़ शिचुए रिश्ती है ना तैनी के रही हस्ती से इन्होंने कि भाई आप कोई बुतू कोड़ी न कोड़ी से अगर कहीं मैन खारा हस्ता तसे उठने बिछने अंतर है ना तसे डकबो के अंतर तसे चाल चलने अंतर के गेती तो आज के टाइम भूती कैन करी है ना हर एक मैन खारी जिंदगी जीनी हस्ती है ना खारी सोच थे करी ता तस जैसे नैतिक शिक्षा ही जैसे बड़ा फेद भी बूता तो होर मैन भी जैसे तैसे गुणगान करते कि भाई रे फलाना जैसे खारास्ता है ना ऐसे भी लिख बूतू क्या तैस अंतर में बोलूँ कि समाज री गल करे तो तैस अंतर जैसे आपसी भाईचारा बने रहता है ना सब मिली करी जैसे एक ही हो रही अगर खरे मैन अंतर संस्कार बोला कि ग्रां अंतर खरे मैन बोल तैठनी ग्राएं मैन जैसे कोई भी अगर तहने कुछ तफली खीर बोलो उन्हें खड़ी गाल बोलता झट पटे जैसे रड़मी करी कम काज करते था जे आख अनुशासन बोते उन्हें जिनके अंतर बोलने तो बड़ा आखी ना वस्ता कि अनुशासन है ना जे ऐसे पुठ भी जैसे अनुशासन अनुशासन एक अपू जिंदगी जियाल है ना तस ध्यान थे अनुशासन के अपू जिंदगी से भी जैसे आखारी जिंदगी जी सकता खेर मौके गल थी मैं जैसे लाई छड़ी आखो होरू बैदेज घीत तैयार थे रस्तु सुनते गीत सुने जी।

जी राज प्रभाकरे गल अंतरात्री बदेजनो गीत से सह शुण बाने शुणु मौके देशे प्रदेशे खबरें व्यस्ती पहले शुणते ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुभ भाग्य 11 बजे आकाशवाणी पुठमन की बुक कार्यक्रम में अंतरपो बचार जैसे साझा करने अस्ती है मासिक रेडियो कार्यक्रम में अक्सर चैतवी काली जैसे भूणी अस्ती इस कार्यक्रम में प्रसारण आकाशवाणी पुट तथा दूरदर्शन ने समूचे नेटवर्क पुट जैसे भूण आस्ता ऐसे सदा प्रसारण भूणस्ता से AIR न्यूज़ DD न्यूज़ प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय यूट्यूब चैनल पुट विजय से भूणस्ता आकाशवाणी किनारा जैसे क्षेत्रीय भाषाएँ अंतर विजय से मन की बोक कार्यक्रम है जैसे सदा प्रसारण जैसे भूणस्ता। अच्छा खहोरी खबर स्थित मौके प्रदेशे मतिज गया जैसे भ्यागे पुथा रुकी रुकी कर गए जैसे थोड़ थोड़ा मेघ तठा तेज़ हवाएं जैसे चलने वाली तापमान अंतर जैसे गिरावट दर्ज किए रिस्ती तठा गर्मियां क्या वजह से महनवा राहत है तेरी रिस्ती प्रदेशे के इज गया जैसे ओलावृष्टि भूने विजय से खबर अस्ती अणी बली जे स्यावे तठा होरी फसली जैसे मता नुकसान जैसे भोर रास्ता मौसम महकमे इन बारे 24 घंटे प्रदेशे के गया हल्की मध्यम जैसे बारिश मेघ तथा बर्फबारी होने जैसे अंदाजा लाओ रास्ता महकमे कुछ गया जैसे होरी ओलावृष्टि है ना भूने तथा 50-60 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार जे हवा जैसे हवा चलने भी जैसे चेतावनी जारी की रिश्ती तय तथी कुछ खास खास खबरें अबे होरी जे थोड़ी जनी रखबो खलाने इसती सलाने इसती अपनी बोली अपनी पहचान है ना बोलने गल अस्ती कि जे मैं जैठनी है जमोर बूता है ना जे तहसीला के अंतर जे से बोली अस्ती से अगर आपू पैंगे री गल करें तो आज कने टाइम है ना पैंगे भी इन्होंने कि बोली अपू जे पंगवाड़ी बोली अस्ती तस बोलनार जैसे घाटते गेरे किसकी आखता या तब हो सकते कि जे तैठनी मैन आस्ते है ना तने जे आपू मठ गै बुरजे जमोर आस्ते तिखनी पुथा से बैर छल छोरे या तने जे से आपू बोली इस चाल और नहीं या आपू टब्बर अंतर है ना कई टब्बर अंतर इन्हें भूं सकते किसी पढ़ो लिखो रस्ते हो सके तेने लग तो कि असें आपू जे से गैबू रस्तू ऐसी हिंदी इस चाल नस्ती अंग्रेजी इस चाल नस्ती है ना पर कुड़ी न कुड़ी जैठनी अस जमोर आस्ते जड़ी लंगोर आस्ते है ना जैठनी रीत हस्ती तैठनी बारे अगर सपू घबरा न बताल ता इन्हें बारे टाइम जैसे तने तैठनी जे बोली बोनी इसती है ना से जैसे मुक्की गए किस किस की तने अगर से आपू घबरा इस चालू है ना कि अस पंगवा भी थैन पंगवाड़ी बोली इसती है ना हैंड पैंगे जैसे इन्ना रहन सहन हस्ता इन्हें जैसे लान अस्तू इन खीण अस्तू है ना एनी जैसे हैंड पैंगे रीत हस्ती है ना जग प्याज भूति तैसे बारे बताओ नहीं धाव धामी जैसे बताओ नहीं है ना जे भी मतलब

खरीद थस्ती जे हैं ठनी बोल सकते कि आख जे हैं स्याणे थे पुरखे ते जे आख लाओ रिश्तो अगर तैसे बल्ले बताल नू हाँ सपू इन बाड़े गया बनवा तो इन बाड़े टेम अंतर जैसे भूली गए ने जे हैं हो रे जे जे तेने अगर दी हो रे गैब यूनियन इसते तेन तो पता नहीं बोना कि हाँ सहने जे हंस को ठनी थे है ना कि खनी खनी मन अंतरे भूतू नू ना कि भाई यार हंस पैंगे तो बस हो रस्ते है ना जे अब मोटे जे थोड़े सोच समझ था ते या कुड़े अने दो चार में डक वो कन लग गए थे है ना जे थोड़े जानकार होते हैं जे है ना पुरखे ये रे कुठनी है ना भला कुठनी भूलनास तो तेने जे इन बाड़े टेम जे भूणसता जे है ना गैबर भूणसते तेने गैबरू क्या अगर गैबर भूणसते अगर तेने अस खारू बताओ नहीं तेन जे आपू पंगवाड़ी बोली है ना चालो नहीं या पंगवाड़ी बोली अंतर डकबोक नहीं तेन जे केरी तो कुड़ी कुड़ी से भूलते गए रहने से है ना तेने जे इसे घटते रहने तो अगर तेने घबरा तो अगर पता नहीं आपू नहीं तेने पता होना है ना तो अगर से घबरा जे अगर डकबोक ना करे लो तखें तो ऐसे बाले बाले की बुतू कैन करी कोई ऐ चीज़ जैसे मुकी जाती तो कुड़ी कुड़ी ऐसे ऐसी चीज़ ही कहीं ध्यान थाने जरूरी हस्ती अपनी जे हैं बोली हस्ती है ना जे हैं तठनी रीत है रकम हस्ती कुड़ी कुड़ी जे थोड़े पढ़े लिखे हस्ते है ना सब इन तो इन आज ने टाइम हर एक पढ़ो लिखो रहे कुड़ी इन कुड़ी तेन चीज़ें थोड़ी लिखी दे है ना आपू टबर अंतर भी डक वोख जे मठ कबरे लै कि भाई फलानी चीज़ इन्नी भूतित है ना है जे ग्रां गोठे अंतर ये हैं बोली वह है ना इन्नी जे सहन अगर कि जग प्याज जैसे भूतित है ना जग प्याज अबे ग्रां अंतर भूतो की काय भी गल भूई ती थे भूतो पेल तन की रुतु प्याजे भूतित है ना जैसा से प्रजा कमेटे अंतर पू कि भाई फलानी चीज़ गलत हस्ती है नहीं करनी फलानी चीज़ है जैसे है नहीं तो सिकुड़ी नुकुड़ी हाँ लाने री गल करो जे हैं पैंगे अबे जे जे लैने कहीं लाण अस्तु है ना जो जी भूती मुड़के ले झने भूते है ना तो मुसाफरी कहीं गल करो अबे हाँसी टोपी हस्ती उनाड़े री झने लाते उनाड़े री जैसे है ना सुतुन भूतित गाच भूतित खुड़िया पीले भूतित तो आज कुड़ी नुकुड़ी ने हालांकि मुँह लग तू लाते तो लाते पर घट लाते किसकी हत की कौन कहते या तो जैसे चीज़ जैसे अबे बनाना आर भी मुक्त गिरे है ना तो लाना आर भी जे पुराने थे है ना से अबे थोड़े जैसे घटते गिरे तो नवे तने हाँ इन कि बच बच लाते जरूर है पर कुड़ी कुड़िया से हो तने कनार जे हैं पुराने लान अस्तु जे पंगवाड़ी है ना लान जस्तु है ना जैसे जे हैं पिछाण अस्ती भी हाँ भी जे लाई करी कुड़ी पैंगे बह नस्ता तो रियानी मैंने कहीं जैसे तीर तस्ती लागी है तो है ना जे पैंगे जलैन जे मल्ड बह रही बुते प्यूरी जे हैं पंगवाड़ी जे अख झने है ना जे तठनी अख बोल सकते कि जे अख बढ़दी बोल सकते कि जे अस्ती जैसे हैं पंगवा कहीं पिछाण अस्ती तब जे बैर ही मैन बुते से कुड़ी कुड़ी हेते जे कि वैसे भै तो कस गए भी यार खारे लान कान भी से नहीं कि भाई खारे नहीं लगते खारे लगते पर आज के टाइम कुड़ी कुड़ी तसे बचाने जैसे हाँ से सख्त जरूरत हस्ती है ना ता प्यूली रे कहीं गल करें है ना पहले ये भी हाँ भी अगर सियाने जे बिछले डकबोक लाल कि भाई चे पहले तो आपू टाइम की बोतू तसे साफ बते भी ठीक है तो नवे ने कहते थे है ना अख्तर शायद तक इन्हें भी थी कि मतलब तस्के यहाँ सोन कर सकते कि रुपये कहीं भी थोड़ा जैसे घाटा भूत है ना ता टब्बर अंतर जे जलैन भूती थे से जैसे माड़ी सीती थे ना खाश बनाती तो तखें जैसे प्यूले में तो से टब्बर से भी हाँ और अपनी गल भी करूँ तो पहले मैं आपू आपू भी जैसे गया है जे मन माता जिस से बनाती तो मैं आपू आपू खूने जैसे प्यूले लैवरी हस्ती है ना बाबी जी तेने तो मैं माता टाइम करके दे कि आदत भी बनी गई थी बते जिखें प्यूले लैवरी हुई है ना शेरे जिखें इन लोठे टाइम भूतत लिशकने कने भी डरने रहता है ना जे डंग शनोर भूत पाकि छाड़ भूती थी ता आज के टाइम जैसे घाटी थी अगर बैरते कैसे मैं ये भी हाँ भी से चीज़ की थी तो तैसे जैसे से खारी मूल भी देते और तेने से खारे भी लगते वह कूड़े लगते कुनी कुनी बनते ताज तेने चीज़ें बल्ले बल्ले इन करे मुकाने रही करे है ना कि उन्हें भैनी कहीं जे अस तेरी पंगवासते हैं सो भैनी कहीं जैसे तेरे ध्यान देने जैसे जरूरत हस्ती है ना कि है ना बोली बची रहे है ना जे तठनी रीत हस्ती अगर कर चलती रहे जे लान अस्तु से भी अगर कर चलतू रहे है ना जे भी हैं खारी जे चीज़ अस्ती से कुड़ी न कुड़ी हैं इन बाड़ी जे अगरी जे पीढ़ी अस्ती तस्तगर जे से बचाने हैं जे से फर्ज अस्ता तो मौके गल भूती बच बच्चे ऐसे हंस लाया कते आख होरु जे से मैं भजन तैयार थे रुस्तु सुनते अस्ता सुने जे

लोकगीत अभी आप सुन रहे थे। मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलो हर्ट्स पर यह आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें। मीडियम वेव पर यह आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। 6 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्र के साथ साथ FM शिमला पर भी सुना जा सकता है।

0: प्रादेशिक समाचार डीटीएच सेवा पर भी उपलब्ध हैं।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के तीसरे व अंतिम चरण के लिए मतदान आज शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। तीसरे चरण के तहत प्रदेश की 1189 पंचायतों में वोट डाले गए। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार तीसरे चरण में कुल 6615 वार्डों में मतदान हुआ और इस समय प्रधान, उप प्रधान और वार्ड सदस्यों के मतों की गणना का कार्य चल रहा है। लाहौल स्पीति जिले के लाहौल विकास खंड की 10 ग्राम पंचायतों में तीसरे चरण के मतदान को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा गया। मतदान कुल 69.60% दर्ज किया गया। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे लाहौल स्पीति जिला संवाददाता।
2: लाहौल स्पीति जिला के 10 ग्राम पंचायतों में शनिवार को पंचायती राज चुनावों के तीसरे चरण का मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। इस चरण में कुल 69.60% मतदान दर्ज किया गया। जानकारी के अनुसार कुल 4036 पंजीकृत मतदाताओं में से 2809 मतदाताओं ने मतदान किया। मतदान प्रतिशत की बात करें तो मठग्राम पंचायत में सबसे अधिक 76.20% मतदान दर्ज किया, जबकि मालंग में 58% मतदान दर्ज किया गया। प्रशासन की ओर से सभी मतदान केंद्रों पर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई। चुनाव ड्यूटी में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों ने मतदान प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न कराया, जबकि सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी तरह चाक चौबंद रही। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
1: उधर हमीरपुर जिला के बिजली ब्लॉक में 74.96%, जबकि हमीरपुर ब्लॉक में 76.24% मतदान हुआ। वहीं मंडी जिला के करसोग विकास खंड में अंतिम चरण में 82.86% मतदान दर्ज किया गया। पंचायती राज चुनाव के अंतिम चरण में मतदान प्रक्रिया को लेकर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में युवा मतदाता जहां उत्साहित नजर आए, वहीं बुजुर्ग मतदाता भी वोट डालने पहुंचे।
3: तो मेरा नाम भव्या है और मैं गांव सैनवाला की रहने वाली हूँ। आज मेरा फर्स्ट वोट था, काफी मतलब अच्छा लगा। आई थिंक सब यूथ को आगे आना चाहिए वोट देने के लिए और एक अच्छे लीडर को चूज करना चाहिए।
4: मेरा नाम मोहन सिंह है, मेरी उम्र 82 साल है और मैं यहाँ पे वोट डालने आया हूँ। और मैंने सभी से ये निवेदन है कि पहले तो निर्विरोध चुनने की कोशिश करो, लेकिन अगर फिर भी लेकिन टकराव की स्थिति ना रखो कर। और सभी से ये निवेदन है कि 18 साल से ऊपर सभी को अपना मत का प्रयोग करना चाहिए।
1: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि प्रजातंत्र की मजबूती जनता की सहभागिता से ही संभव है और लोकतंत्र की मजबूती के लिए हर नागरिक को अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। वे आज अपने गृह जिला बिलासपुर के झंडुता विधानसभा क्षेत्र की विजयपुर सुंगला पंचायत में मतदान करने के अवसर पर बोल रहे थे। नड्डा ने कहा कि पंचायती राज संस्थाएं लोकतंत्र की बुनियाद हैं और ग्रामीण विकास में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि मतदान के अधिकार के माध्यम से नागरिक अपने गांव, क्षेत्र और प्रदेश के विकास की दिशा तय करते हैं।
5: प्रजातंत्र की मजबूती के लिए हमें हमेशा मत का अधिकार का प्रयोग करना चाहिए। प्रजातंत्र की नींव इसी बात पर टिकी है जिसमें प्रजा की सहभागिता हो, और आज मुझे भी ये सौभाग्य मिला कि मैं अपने पैतृक गांव में आकर इस कार्य को पूरा किया है।
1: इस बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला परिषद, पंचायत समिति सदस्यों और 4 नगर निगमों धर्मशाला, पालमपुर, मंडी और सोलन में हुए चुनाव के मतों की गणना के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। प्रदेश के 91 विकास खंडों में कल 31 मई को सुबह 9 बजे से मतगणना शुरू होगी। जिला परिषद वार्डों की मतगणना के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं और पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए कुछ स्थानों पर मतगणना की वेबकास्टिंग भी की जाएगी। जिला परिषद और पंचायत समितियों की मतगणना को लेकर सिरमौर जिला में सभी विकास खंड मुख्यालयों पर मतों की गिनती की जाएगी। सहायक निर्वाचन अधिकारी राजीव सांख्यान ने बताया कि नाहन में जिला परिषद के 2 वार्डों और 15 पंचायत समिति के वार्डों की गणना की जाएगी। उन्होंने कहा कि पहले चरण में पंचायत समितियों की और उसके बाद जिला परिषद की मतगणना होगी।
6: मतगणना केंद्र जो है हमारा बिल्कुल तैयार है। नाहन में जो हमारा DPRC है, डिस्ट्रिक्ट पंचायत रिसोर्स सेंटर है, यहाँ नाहन ब्लॉक की जो 15 पंचायत समिति के वार्ड उनकी काउंटिंग होगी और उसके बाद हमारे जो जिला परिषद के 2 वार्ड बनकला और त्रिलोकपुर हैं उनकी काउंटिंग होगी। 12 टेबल्स जो हैं हमने तैयार किए हैं, 12 टेबल्स पे काउंटिंग होगी। सर्वप्रथम हमारे जो पंचायत समिति वार्ड्स हैं उनकी काउंटिंग होगी, उनके रिजल्ट

0: होंगे, उसके बाद हमारे जिला परिषद के वार्ड पहले बनकला की और फिर त्रिलोकपुर की काउंटिंग की जाएगी। जितने भी हमारे काउंटिंग स्टाफ है सुबह 7:30 बजे यहाँ हमारे रिपोर्ट कर देंगे और एक ब्रीफ ट्रेनिंग सेशन के बाद ठीक 9 बजे जो है हमारी काउंटिंग शुरू हो जाएगी।
1: इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 7:45 पर। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं।

आकाशवाणी दे शिमला केंद्र है। समा होया है 6:07 कने समा है कांगड़ी कार्यक्रम दा। श्रोते कांगड़ी कार्यक्रम च अज जहां गलबात लानी है जल ही जीवन है विषय पर। इस दे अलावा उक्त रक्तचाप पर भी कार्यक्रम च अगे गलबात करनी है। आदे श्रोते जड़े लोक गीत सुनने हन तिना दे नाम यहां दसिंदे हन गायक कलाकारां दे अनीता परमार, भगत राम मुसाफिर, अतुल शर्मा दे गाए लोक गीत जड़े हन सहां दे श्रोते अज सुन सकते हैं। श्रोतता कार्यक्रम च पहले गलबात लांदे हन जल ही जीवन पर। पानी प्रकृति दी तरफा ते आयो मिलिया एक अनमोल उपहार है। पृथ्वी पर जिंदड़ी जीने ताए पानी होने दी महत्ता बड़ी है। हर एक जिंदा प्राणी चाहे से माणु हन, पख पकेरू, डंगरे, वनस्पति, सारे जड़ा है पानी दी जरूरत हुंदी है। पानी बगैर तो हाँ जिंदड़ी दी कल्पना ही नहीं करी सकते हैं। यही वजह है कि पानी जो जिंदड़ी ताए जड़ा है सै बड़ा ही जरूरी मन्या गया है। पानी जड़ा है सै अहां दी जिंदड़ी दी एक बुनियादी जरूरत है। अगर अहां गल करन कि घरां च भी जड़ा है रोजाना दे जड़े काम हन, खाना बनाना, कपड़े धोना, नहाना धोना, घरे दी साफ सफाई, इन सारे काम जड़े हन सै पानी बगैर तो हो ही नहीं सकते। इन सारे कम्मां करने ताए जड़े है सै पानी दी जरूरत हुंदी है। इस दे अलावा खेतरिया च कारखानिया च भी पानी दा इस्तेमाल तो हुंदा ही है। फसलां ताए, बेल बूटियां ताए पानी दी जरूरत हमेशा रहिंदी है। अगर दिखा पानी नहीं होगा तो जड़ियां फसलां हन आंदियां तिना दी सिंचाई नहीं होगी तो जड़ा है सै खाने भी अहें नहीं मिलना। वनस्पति जड़ी है अहां दी सै भी सुकी आनी, सै भी खत्म हो जानी, जीव जंतु भी जिंदा नहीं रहने। फसलां दी सिंचाई बगैर फसलों की सिंचाई जड़ी है सै पानी नहीं मुमकिन है। पानी नहीं होगा तो सिंचाई नहीं होनी, अगर सिंचाई नहीं होगी तो फसल नहीं होनी है, कने अनाज भी जड़ा है सै पैदा नहीं होना। बिजली बनाने ताएं भी दिखा बड़े बड़े जड़े प्रोजेक्ट लगते हैं तो तिना ताएं भी सै भी पानी बगैर तो मतलब सोच ही नहीं सकते कि पानी ना हो तो सै प्रोजेक्ट लग गए कने तिस्ते जड़ा है सै बिजली बनगी। अहां दे शरीर च लगभग 70% पानी है जिहड़ा आंदे शरीर दा जिहड़ा तापमान हुंदा है तिस जो सै ठीक ठाक रखदा है। कने शरीर दे जिहड़े शरीर जिहड़े अलग अलग काम करने हुंदे हन, अलग अलग शारीरिक क्रियां जिहड़ियां हुंदियां हन तो तिना जो भी सै ढंगे ने काम करने च मदद करदा है।

करिए, सेहतमंद जिंदड़ी अगर हाँ जीनी है तो इस तरह हाँ जो सारे हाँ जो साफ पानी एक खूब सारा जड़ा है से पीना भी जरूरी है। खेतीबाड़ी की गल करें तो दिखा इतों तो पानी का मतलब है ही, खास महत्वता इस है ही है। फसलों की सिंचाई जड़ी है सह पानी बगैर नामुमकिन है। अगर जरूरत मुताबक कने टाइमे पर अगर बरखा ना हो पानी की कमी होवे तो फसलों पर भी जड़ा है सह इसका असर होंगे है। कने हाँ तो जो किसान होंगे तेना जो भी सिक जड़े जिन्हें रोजी रोटी ये है कि भाई फसल होंगी तो इसते जोड़ी आमदनी होनी है तिना ने तिना के घर बार चलने हैं तो तिना जो भी इसते नुकसान होंगे है, उत्पादन घट हो जाता है, खाने पीने का अनाज जड़ा है सह पैदा नहीं होना तो सारे जो ही खाने पीने दीज़ा भी नहीं मिलनी है। इसके अलावा कारखानिया बिजली बनाने सारे कम्मा ताएं जड़ा है सह पानी की जरूरत जड़ी है सह रहती है। दुनिया के कई हिस्सों च ये जड़ी जल संकट है पानी की समस्या जड़ी है सह एक भयानक समस्या जड़ी है अजकने तरीका से बनी हुई है। बढ़ती आबादी, उद्योगिकरण, शहरीकरण ये पानी के ज़्यादा इस्तेमाल जड़ा हाँ करते हैं तो इसकी वजह से जड़िया जमीन च मिट्टिया रेत चट्टाना थले जड़ा पानी कट्ठा पानी है तो इस सह भी जड़ा है सह हूँ घट हों ज़्यादा है तो इसका स्तर जड़ा है सह थले जाता ज़्यादा है। अगर यही हालात रह इस कोई सुधार नहीं होया तो आने वाला दिखा टाइम जड़ा होना है तैलू तो हाँ जो पीने वाले पानी की भी भारी कमी हो सकती है। ये समस्या जी है सह कोई आहदे एक कोई एक ही मुल्के की नहीं है बल्कि पूरी दुनिया च जड़ा है सह ये चिंता का कारण है। पानी की विपदा से बचने ताएं इसियो बचाना इसका संरक्षण करना बड़ा जरूरी है। आ सारे ही पानी का इस्तेमाल जड़ा है सह सोची समझी ने करना चाहिए, पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए। पानी की जी एक एक बूंद है तिस जो बचाने की हाँ जो सारे जो कोशिश करना चाहिए। जालू भी दिखा मकान बनाते हैं तो इस टाइमे जड़ा है सह गरे बखें एक टैंक जरूर बनाना चाहिए। क्या हूँ तो यह जरूरी भी हुई है कि जालू भी कोई मकान बनाने की सोचते हैं तो टैंक बनाना तो जरूरी है ही ताकि जड़ा बरखा का पानी है तो इस इकट्ठा किया जा सके। जालू भी पानी की अगर कोई कमी पेशी होंगी है तो इस पानी का इस्तेमाल कुछ ही घर के कामों च किया जा सके। इसके अलावा जड़ा जमीना थले पानी है तीसरे सर जो भी बचाने ये जड़ा हाँ टैंक बनाते हैं इस जड़ा बरखा का पानी इकट्ठा होंगे तो तीसरे जमीन थले पानी भी जो तीसरे सर जो बधाने भी मदद मिलती है। दरिया तालाब झीलों च इन्ह च कचरा कने प्लास्टिक हाँ जो नहीं पाना चाहिए। क्या करते भी कुछ भी अगर बाहर भी घूमना जा रहे हैं तो तिथु भी जोड़ा कुछ भी समान कुछ ले आते हैं खाने पीने का या होर चीज़ा ले आते हैं तो तिथु अखे बखे सट आते हैं तो सह क्या होंगे कि सारा जोड़ा कूड़ा कचरा है सजाई ने दरियाँ कने पानिया च मिली आता है तो इसते क्या होना कि हाँ जो पीने का पानी भी मैला कुचैला ही मिलना साफ सुथरा पानी हाँ जो नहीं मिलना। तो अगर घर पानी जड़ा है सह साफ पीने जो मिले इस तरह कचरा जड़ा है सह कुछ भी बाहर नहीं सटना चाहिए खासकर पानी इस तो बिल्कुल नहीं पाना चाहिए। घर स्कूलों दफ्तर च भी पानी की बर्बादी च रोकने तै खास ध्यान देना चाहिए। पानी कने पर्यावरण का मजबूत संबंध है। जल स्रोतों की सुरक्षा खातिर जड़े बण हैं आते तिना जो भी बचाना जरूरी है। बेल बूटे रुख होंगे तो बरखा भी होनी, रुखा ते जमीन थले जो पानी है तो जो बचाए रखने च भी तिना दी खास भूमिका रहती है। इस तरह ज़्यादा तो ज़्यादा बूटे लाना चाहिए। आज पानी जो बचाना एक जरूरत नहीं बल्कि अहां दी नैतिक जिम्मेदारी भी है। अगर अज हाँ पानी जो बचाने खातर कोशिश करते हैं तो आदिया जड़िया आने वाली पीढ़ियां हैं तिना जो एक सुरक्षित समृद्ध भविष्य दे सकगे। इस तरह अहें इस हमेशा याद रखना चाहिए कि

अगर जल है तो कल है, इस च कोई दो राय नहीं है कि सच च ही अगर पानी नहीं होवे तो जिंदड़ी मुमकिन ही नहीं है। तो श्रोते ये थी कुछ गलबात जल ही जीवन पर। हुण चलदे हन मनोरंजन पासे, सुनदे हन लोक गीत, आवाज़ है अनीता परमार दी।

श्रोते कुछ खास खास खबरां लगांदे न। प्रदेश च पंचायती राज संस्था दे त्रीए कने आखरी चरण ताएं अज मतदान शांतिपूर्ण तरीके पूरा होया। त्रीए चरण दे तहत प्रदेश दी 1199 पंचायतां च वोट पाए गए। राज्य निर्वाचन आयोग दे मुताबक त्रीए चरण च कुल 6615 वार्डां च मतदान होया। नौजवान मतदाता ते लई बजुर्ग मतदाता वोट पाए। प्रदेश के ज्यादातर इलाकों च ब्यागा ते ही रुकी रुकी बरखा होने तेज हवा चलने ते तापमान घट होया है, जिसते लोगों तों दी ते थोड़ा आराम मिलया है। राज्य के कई इलाकों च सनाट पौने की भी खबर है, जिसते सेब के अलावा दूईया फसलों भी नुकसान होया है। मौसम महकमे ने अगले 24 घंटे के दौरान प्रदेश की कई जगह पर बरखा होने बर्फ पौने बारे बोलिया है। महकमे ने कुछ जगह पर सनाट पौने 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार ने हवा चलने बारे भी खबरदार किया है। श्रोते थियाँ कुछ खास खबर। कार्यक्रम के आखिर च हुण पेश है अतुल शर्मा की आवाज़ च ये लोकगीत।

महास्वी कार्यक्रम सुनने वाले के चंपा शर्मा रा नमस्कार। भई तुसे सब जने अपने घरे ठीक ठाक रहो, यही मंगल कामना भगवान आप करूँ। तो देखो अबे आज की जो मेरे तुसा सती गल बात करनी हो सो से करनी हिंदी पत्रकार।

महास्वी कार्यक्रम सुनने वाले के चंपा शर्मा रा नमस्कार। भई तुसे सब जने अपने घरे ठीक ठाक रहो, यही मंगल कामना भगवान आप करूँ। तो देखो अब आज की जो मेरे तुसा साथी गलबात करनी हो सो से करनी हिंदी पत्रकारिता दिवस रे बारे दा, और आसा तई करनी गलबात मेले और त्यौहार मारी संस्कृति री पहचान और कुछ खास खास खबरें भी हो सो तुसा के लिए दी। साथ ही साथ ही कार्यक्रम का मनोरंजन करना तुसा रा लोकगीता साथी। तो देखो आजकल ये जो आसारी संस्कृति हो सो और आसारी जो पहचान हो सो ये मेले फाबी बनो हो सो। भारत सरकारे जो सो से भी जो मेले हो सो और त्यौहार हो सो तिनारी हिमाचल प्रदेश दा भारत सरकार के मान्यता मिली दी हो सो। ये जो मेले हो सो से कुछ सामाजिक और कुछ सांस्कृतिक और धार्मिक हो सो। इना मेले दा समाज रे नागरिकों के सामाजिक जो चीज़ा हो वस्तुओं और जरूरतारी जो चीज़ें हो ते तेरे मुताबिक करवाई जाओ सो। ज़्यादातर मेले तब करवाओ सो जब जो सो माणू अपने घर रे जो घरेलू काम फा थोड़े जे जो व्यस्तता हो से तीनारी कम हो जाओ सो। और इना मेले दा माणू के जो समान होते ते खरीदने और बेचने रा मौका भी मिलो सो। इनरा जो ये जो दुकानदार हो सो ते तेरी दूरा दूरा फा अपनी दुकान लगाने आओ सो। और जो नेड़े रे जो व्यापारी हो सो तीसो अपनी बिक्री के अपनी जो वस्तुओं सो तेते के जिसे कि तिनारे टाले हो ऊनो और पश्मीना रे कपड़े हो चमड़े रे वस्तुओं सो और इसे कई सारी चीज़ें हो तो फूल सब्जियां और बहुत सारी चीज़ें सो जो आसारे में इतने मेले दा बेचने के माणू लियाओ सो और आप के काफ़ी फायदा भी कमाओ सो। तो तिनारी इतने दा बिक्री भी बढ़िया हुई जाओ सो। मेले रा जो जो समाज का एक बहुत ही बड़ा महत्व भी हो सो। हिमाचल प्रदेश जो सो से देवता और भूमि रे नावा फा जाना जाओ सो। बैशाखी मेला हिमाचल प्रदेश दा बड़े धूमधाम साथी मनाया जाओ सो। ये जो मेला हो सो ये प्रदेश रे कई क्षेत्र दा मनाया जाओ सो। माणू अपने गाँव रे देवते के एक ही स्थान फा दूजे स्थान के ले जाओ सो और ऊपरी और पहाड़ी क्षेत्र रे इस मेले दा माला नृत्य करो सो। एक दूजे रे हाथ पकड़ी रो एक बड़ा गोला बनाओ सो और नृत्य करो सो। तिशाई मिंजरा रा मेला सो जो कि चंबा रा मशहूर मेला सो। ये जो मेला सो अगस्ता दा जो सो से दूजे त्वारा के मनाया जाओ। ये मेला एक हफ्ते तई खे चलो और ये मेला चौगान नावा रे स्थान दा करा जाओ सो जो कि चंबा रा एक कस्बा हो सो। इस मेले दा वरुण देवता री पूजा अर्चना करी जाओ सो और इत्ते दा फूल फल पैसे भगवाना के चढ़ाए जाओ सो। और तिशाई मेला जो सो से नैना देवी मेला हो सो अगस्त महीने दा ए मेला मनाया जाओ सो जो कि बिलासपुर जिले रे बिलासपुरा रे गुंगल पवारे हाउस फा 8 किलोमीटर दूर हो सो। ये जिले रा बहुत ही महत्वपूर्ण मेला हो सो। कुल्लू दशहरा बहुत ही प्रसिद्ध मेला हो सो जो कि कुल्लू दा बहुत ही धूमधाम और उल्लास साथी मनाया जाओ सो। हिमाचल प्रदेश री कई सारे इसे मेले हो सो देखने के मिलो सो जो जिशा की दशहरा पर्व सो से पूरे भारत दा बड़ी खुशी साथी माणू मनाओ सो।

सुना तो से बढ़िया जा लोकगीत और गाने वाले थे मुनीश कुमार। तो एबे मैं कह के हिंदी पत्रकारिता दिवस सारे बारे कुछ ऐसा गल बात करनी। ये जो हिंदी पत्रकारिता दिवस सो से आज के दिन 3 मई भारत का हिंदी पत्रकारी रूपा का मनाया जाओ सो इस दिन।

करते हुए जुगल किशोर शुक्ल ने लिखा था, जो यथावत वस्तुओं सो ए उदंत मारतंड, अब पहले जो पहल हिंदुस्तानियों रे तैंखे आज तक कसी भी नहीं चलाया था। अंग्रेजों रे पारसी और बंगाली दा जो समाचार रा कागज छपा था, तेतरा तिने तिना बोलियों खे जन्ने ओ समझने वाले खे ही ओ, और सब मानु पराए सुख सुखी ओ सो, जिसे पराया धन धनियों ने ओना और अपने रौंदे पराए आंखें देखना, तिशे ही जिस गुणा खे जिसरी बैठनाओ तितखे तिते रसारा मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाओ सो, और हिंदुस्तानियों रे बहुते रे इशे हो सो। तो पैसे री तंगी री बजा भाई उदंत मार्टिन डेरा जो सो से छापना बहुत दिन तक नहीं हुई सका, और आखिरकार जो सो 4 दिसंबर 1826 के तरह प्रकाशन बंद हुई गुआ। शुक्लो खे जो सो से बादाफा जो सो तीने के अंका दा लिखना पड़ा सो, जब दिवस लो उग चुक्यो मारतंडे उदंत अस्ताचल को जाते, दिन करे दिन अब अंत, लेकिन जो सो से 1.5 साल दाई तीने डूबने वाले इस मारतंडा खे जो रोशनी आने वाले वक्ता दा आने वाली पीढ़ी के दिखाई, ते तेरा लाभ जो सो से जो आशा रहे आंदोलन के एक के मिला सो। बंद होने भाव पहले एते के एते दा हिंदी पत्रकारिता रे सूर्य के जो सो से उदित करा गुआ था। तो ये जो प्रकाशन उसो से पत्रकारिता री क्रांतिकारी रा रंग गणेश शंकर विद्यार्थी भी भरा था, और ये जो सिलसिला उसो से बढ़ता रहा, और कुछ ही दिन बाद जो सो यशोदानंद और नारायण प्रसाद भी अलग करा सो, शिव नारायण मिश्रा और गणेश शंकर विद्यार्थी प्रताप अपनी कर्म भूमि बनाया, और विद्यार्थी रे समाचार पत्र प्रताप क्रांतिकारी खे जो सो से काफ़ी बल दिया सो। तो इसे मुश्किल रा सामना करने भा बाद भी जो सो हिंदी पत्रकारिता के छपाने री तें खे इतना साहस आसरे क्रांतिकारी दिखाया सो, और आज जो सो से आसरी जो हिंदी पत्रकारिता सो स्थित था आगे माणू के एक सीख भी दो सो। तो इत कुछ गलबात हिंदी पत्रकारिता रे बारे दा एक लोकगीता से तई चुन लो मैं।

भैया शुणा तो से लोकगीत और गाने वाले थे बिमला चौहान। तो कुछ खास खबर भी उस समय गा गए। प्रदेश रे ज़्यादातर क्षेत्रा दा ब्यागा फजू रुकी रुकी रो अड़की बरखा व तेज हवा चलने फा तापमान दा गिरावट आई गई व माणुओं के गर्मी फा राहत मिली गई। राज्य रे कई स्थानों दा ओलावृष्टि यानी कि शुरू रा समाचार भी उसो जेते फा सेब साथी कई फसलों के नुकसान हुआ। मौसम विभाग ए आने वाले 24 घंटे दा प्रदेश रे कई स्थानों दा अड़की फा मध्यम बरखा व बर्फबारी री आशंका जताई रखी। विभाग रे कुछ स्थानों दा ओलावृष्टि व 50-60 किलोमीटर प्रति घंटे रो रफ्तारा फा हवा चलने के चेतावनी जारी करी रखी। उसो तो एक थी कुछ खास खबर। तो ए वैसे जाते जाते एक लोकगीत तई सुन लो मैं।

0: महास्वी कार्यक्रम अभी आपने सुना, ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। कुछ ही पलों में आप आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे, प्रतीक्षा करें।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणु कटारिया।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान और बागवान भाई बहनों को हमारा
1: नमस्कार।
0: किसान भाइयों, आज के संक में मैं हूं अश्वनी।
1: और किसान भाइयों, मैं हूं रीता। हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम कृषि जगत लेकर के। तो हमें उम्मीद है कि आप भी बैठ गए होंगे फुर्सत के चंद लम्हों में रेडियो सेट ऑन करके। हम आपके साथ हैं। अश्वनी जी, कार्यक्रम शुरू करने से पहले थोड़ी सी समय की जानकारी अपने किसान बागवान भाई बहनों को देते हैं। इस समय कौन कौन सी सब्जियां हमारे खेतों में लगी हुई हैं और आने वाले समय में कौन कौन सी सब्जियां हमें लगानी चाहिए, इस बारे में?
0: काट कर और सुरक्षित रूप से उसका भंडारण भी कर लिया है। और जहाँ तक आने वाली फसलों की बात है, तो देखिए आज बारिश भी काफ़ी अच्छी हुई है। ऐसे में अगर खेतों में नमी पर्याप्त मात्रा में आ जाती है तो किसान भाइयों के पास बिल्कुल सही समय है ये कि वो आजकल कद्दू वर्गीय, बेल वर्गीय जो सब्जियां होती है उन्हें लगाएं।
1: हाँ जी,
0: जैसे कि कद्दू, बैंगन, शिमला मिर्च, खीरा, करेला
1: जी,
0: ये सब्जियां हमारे किसान भाई अभी लगा सकते हैं। इसके अलावा फ्रांस बीन और आलू भी बरसात के लगाए जा सकते हैं। और जो कंद वर्गीय फसलें हैं
1: जी,
0: जैसे कि आपका अरबी, अदरक, हल्दी, ये भी हमारे किसान भाई आजकल जो है खेतों में लगा सकते हैं।
1: जी, तो अश्वनी, आज जिस विषय पर हम अपने किसान बागवान भाई बहनों को जानकारी देंगे, काम की बातों में सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती में देसी गाय की उपयोगिता, इस विषय पर हम आपको जानकारी देंगे। इसके अलावा लोकगीतों से आपका मनोरंजन करवाया जाएगा और हर रोज की तरह हम आपको विभिन्न तरह की जानकारियां देते हैं। आज जानकारी का विषय रहेगा पशुओं के रोग बचाव व नियंत्रण। डॉक्टर कर्णिका से जानकारी हासिल करेंगे यशपाल
0: जी। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं काम की बातों से। जो सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती है, इसमें देसी गाय की क्या उपयोगिता रहती है? किसान भाइयों, जहां तक सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती की बात है, इसके संचालन के चार प्रमुख चक्र माने जाते हैं, जिसमें जीवामृत, बीजामृत, आच्छादन और वापसा, ये चार चक्र मुख्य है। जीवामृत की अगर हम बात करें तो किसी भी भारतीय यानी देसी नस्ल की गाय के गोबर, मूत्र तथा अन्य स्थानीय उपलब्ध सामग्रियों जैसे गुड़, दाल का आटा या अदूषित या सजीव मिट्टी के मिश्रण से बना हुआ घोल भूमि में सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या में बढ़ोतरी करता है। परंपरागत खेती से यह प्राकृतिक खेती भिन्न है, क्योंकि इसमें गाय का गोबर और मूत्र जैविक खाद के रूप में नहीं बल्कि एक जैव जामन के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह जामन भूमि में लाभदायक सूक्ष्म जीवाणुओं और स्थानीय केंचुओं की संख्या एवं गतिविधियों को सर्वश्रेष्ठ स्तर तक बढ़ाकर जीवन में पहले से
1: जमीन में
0: पहले से अनुपलब्ध आवश्यक पौष्टिक तत्वों की पौधों को उपलब्धता सरल कराता है। इससे पौधों की हानिकारक जीवाणुओं से सुरक्षा तथा भूमि में जैविक कार्बन की मात्रा में बढ़ोतरी होती है।
1: जी, इसके अलावा किसान भाइयों, बात करते हैं बीजामृत की। बीजामृत की देसी गाय के गोबर, मूत्र और बुझा हुआ आधारित घटक से बीज और पौध जड़ों पर सूक्ष्म जीवाणु आधारित लेप करके इनकी नई जड़ों को बीज या फिर भूमि जनित रोगों से संरक्षित किया जाता है। बीजामृत प्रयोग से बीज की अंकुरण क्षमता में अप्रत्याशित वृद्धि देखी गई है। इसके अलावा बात करते हैं किसान भाइयों आच्छादन की। भूमि में उपलब्ध नमी को सुरक्षित रखने में इसकी ऊपरी सतह को किसी अन्य फसल या फिर फसलों के अवशेष से ढक दिया जाता है। इस प्रक्रिया से ह्यूमस की वृद्धि, भूमि की ऊपरी सतह का संरक्षण, भूमि में जल संग्रहण क्षमता, सूक्ष्म जीवाणुओं तथा पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की मात्रा में बढ़ोतरी के साथ खरपतवार भी नियंत्रण होता है।
0: जी, बात करें वापसा यानी कि भूमि में वायु प्रवाह के विषय पर, तो यह वापसा भूमि में जीवामृत प्रयोग तथा आच्छादन का परिणाम है। जीवामृत के प्रयोग तथा आच्छादन करने से भूमि की संरचना में सुधार होकर त्वरित गति से ह्यूमस निर्माण होता है। इससे अंततः भूमि में अच्छे जल प्रबंध की प्रक्रिया आरंभ होती है। फसल ना तो अधिक वर्षा तूफान में गिरती है और ना ही सूखे की स्थिति में डगमगाती है।
1: किसान भाइयों, प्राकृतिक खेती के चार सिद्धांतों की अगर हम बात करें, ये है सह फसल, मेड़े तथा कतारें, स्थानीय केंचुओं की गतिविधियां और गोबर। सह फसल की बात करें तो मुख्य फसल की कतारों के बीच ऐसी फसल लगाना जो भूमि में नत्रजन यानी नाइट्रोजन की आपूर्ति तथा किसान को खेती लागत कीमत की प्रतिपूर्ति करे, इसे हम सह फसल कहते हैं। मेड़े तथा कतारों की बात करें तो खेती के बीच कतारों में मेड़े तथा नालियां बनाई जाती हैं, जिनमें वर्षा का पानी संग्रहित होकर लंबे समय तक खेत में नमी की उपलब्धता बरकरार रखता है। लंबे वर्षा काल के समय ये नालियां तथा मेड़े खेतों में जमा हुए अधिक पानी की निकासी करने में मदद करती है।
0: जी, बात करें स्थानीय केंचुओं की गतिविधियों की।

0: विषय पर, तो इस खेती विधि द्वारा जमीन में स्थानीय पारिस्थितिकी का निर्माण होता है, जिससे निंद्रा में गए हुए स्थानीय केंचुओं की गतिविधियां बढ़ जाती है। और अब बात करते हैं गोबर की, जो कि सबसे महत्वपूर्ण घटक है। भारतीय नस्ल की किसी भी गाय का गोबर और मूत्र इस कृषि पद्धति में उत्तम माना गया है, क्योंकि इसमें लाभदायक सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या किसी भी पशु या गाय की अन्य प्रजातियों में से कई गुना ज्यादा अधिक होती है। और सुभाष पालेकर, प्राकृतिक खेती का मूल सिद्धांत है कि वायु, पानी तथा जमीन में सभी आवश्यक पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, इसलिए फसल या पेड़ पौधों के लिए किसी भी बाहरी रासायनिक खादों की आवश्यकता नहीं है। यह प्राकृतिक खेती विधि मित्र कीट पतंगों की संख्या में वृद्धि एवं अनुकूल वातावरण का निर्माण करके फसलों को कीट पतंगों और बीमारियों से सुरक्षित रखती है। इस तरह किसी भी कीटनाशक या फफूंद नाशक की आवश्यकता को भी समाप्त कर देती है।
1: जी किसान भाइयों, इस प्राकृतिक खेती की मूल आवश्यकता पहाड़ी या फिर कोई भी भारतीय नस्ल की गाय है। इन नस्लों की गाय के गोबर में लाभदायक जीवाणुओं की संख्या दूसरी विदेशी किस्म की गायों या अन्य जानवरों की तुलना में 300 से 500 गुना अधिक है। अतः इस विधि में अधिकतम लाभ लेने के लिए विभिन्न आदान पहाड़ी या किसी भी भारतीय नस्ल की गाय के गोबर तथा मूत्र से बनाए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में इस प्राकृतिक खेती के प्रचार, प्रशिक्षण और क्रियान्वयन हेतु एक व्यापक योजना से कार्य प्रारंभ हो चुका है।
0: जी किसान भाइयों, बात करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी किस्में हैं हमारे देश की देसी गायों की, जिनका हम सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती में उपयोग भी कर सकते हैं और जो अच्छी और उत्तम किस्में मानी गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं थारपारकर की। इस नस्ल की गाय में कम लागत से उच्च दूध का उत्पादन होता है, इसलिए इसे कामधेनु भी कहा जाता है। इसमें उच्च कीचड़ प्रकोप प्रतिरोधक क्षमता होती है। यह हमारे प्रदेश के गर्म इलाकों जैसे ऊना, कांगड़ा, बिलासपुर, हमीरपुर, सोलन, मंडी और सिरमौर के वातावरण में अच्छा दूध दे सकती है। प्रति म्यांत यह औसतन 305 दिनों तक दूध देती है।
1: जी इसके किसान भाइयों, अन्य जो कुछ विशेष लक्षण हैं वो हम आपको बता दें। इसका शरीर का भार व्यस्क मादा 350 से 400 किलोग्राम होता है और व्यस्क नर का 475 से 500 किलोग्राम। प्रथम ब्यांत के समय आयु 36 से 52 माह होती है। दो ब्यांत के मध्य अंतराल 13 से 19 माह का होता है।
0: जी बात करें साहिवाल की, तो साहिवाल बहुत ही अच्छी दुधारू नस्ल है। इसमें चीचड़ों से होने वाली बीमारियों के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उच्चतम होती है। यह पंजाब और राजस्थान के इलाकों में बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। यह हमारे प्रदेश में गर्म इलाकों जैसे ऊना, कांगड़ा, बिलासपुर, हमीरपुर, सोलन, मंडी और सिरमौर के वातावरण में उच्च दूध उत्पादन देती है।
1: किसान भाइयों, प्रति ब्यांत ये औसतन 305 दिन तक दूध देती है और व्यस्क मादा का जो शरीर का भार है वो 300 से 350 किलोग्राम है। दूध उत्पादन औसतन 2750 लीटर प्रति म्यांत के हिसाब से ये देती है और ये मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान में पाली जाती है। हमारे प्रदेश के गांव की स्थिति में इसका दूध उत्पादन 1700 लीटर और बहुत अच्छे आहार की स्थिति में 2100 लीटर तक प्रति म्यांत प्राप्त किया जा सकता है। साहिवाल में औसतन दूध वसा 4.8 से 5.1 प्रतिशत होता है और थार पारकर गाय की तरह ही इसका दूध प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन और उच्च पोषण से भरा होता है।
0: जी बात करें रेड सिंधी की, तो रेड सिंधी गाय थार पारकर और साहिवाल नस्ल गाय के मुकाबले कद काठी में छोटी होती है, इसलिए इसे कम आहार उपलब्धता वाले क्षेत्रों में अच्छी तरह से पाला जा सकता है। यह हमारे देश के सबसे अच्छे पशुओं की नस्लों में से एक है। इसमें उच्च कीचड़ प्रकोप प्रतिरोधक क्षमता है। इसे गर्म इलाकों के अलावा पहाड़ी क्षेत्रों में लगभग 7500 फुट यानी 2500 मीटर तक की ऊंचाई तक आसानी से पाला जा सकता है। प्रति म्यांत यह औसतन 265 दिनों तक दूध देती है।
1: किसान भाइयों, रेड सिंधी बात करें तो व्यस्क मादा का भार 300 से 350 किलोग्राम होता है और नर व्यस्क का भार 400 से 500 किलोग्राम। प्रथम ब्यांत के समय आयु 39 से 50 माह और दो ब्यांत के मध्य अंतराल 12 से 18 माह होता है। दूध उत्पादन इससे औसतन 2600 लीटर प्राप्त कर सकते हैं। ये मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और उड़ीसा में पाई जाती है। हिमाचल प्रदेश में हरे चारे की उपलब्धता के अनुसार इस नस्ल की गाय से 1400 से 2400 लीटर प्रति ब्यांत दूध उत्पादन ले सकते हैं। इसमें औसतन दूध वसा 5 से 5.5% होती है।
0: जी दुधारू नस्ल की गायों में गिर नस्ल की गाय सबसे अधिक पाले जाने वाली गाय है। इसके दूध में सोने के तत्व पाए जाते हैं, इस कारण इसका दूध पीने से रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास

0: होता है। यह नस्ल मुख्य रूप से दक्षिण काठियावाड़ के गीर वन क्षेत्रों के अलावा गुजरात के जूनागढ़, भावनगर और अमरोली जिलों में पाई जाती है। देसी नस्ल की गायों में यह सबसे अधिक शांत और सहनशील मानी जाती है।
1: इसके अन्य विशेष लक्षणों की बात करें तो इसके वयस्क मादा का भार 350 से 400 किलोग्राम होता है और वयस्क नर का भार 450 से 500 किलोग्राम प्रथम ब्यांत के समय आयु रहती है 36 से 48 मास और दो ब्यांत के मध्य अंतराल 12 से 15 मास का होता है।
0: जी, तो किसान भाइयों, ये तो बात हुई सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती में देसी गाय की उपयोगिता के विषय पर। अब कार्यक्रम में समय हो चला है मनोरंजन का।
1: तो किसान भाइयों आइए समूह स्वरों में सुनते हैं ये लोकगीत।

0: सुनाते हैं एक जानकारीपूर्ण बातचीत का पुनः प्रसारण। बातचीत का विषय है पशुओं में रोग बचाव और नियंत्रण। बातचीत में भाग ले रही हैं डॉक्टर कणिका और उनसे जानकारी हासिल कर रहे हैं यशपाल।
1: किसान श्रोताओं नमस्कार। कार्यक्रम की इस श्रृंखला में आज हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर कणिका। डॉक्टर कणिका जी, कार्यक्रम के संक में आपका हार्दिक स्वागत है।
2: धन्यवाद जी।
1: डॉक्टर कणिका से आज हमारा चर्चा का विषय रहेगा पशु रोग बचाव व नियंत्रण के बारे में। किसान श्रोताओं, हम सभी जिस तरह से जानते हैं कि पशुपालन हमारी आजीविका का एक मुख्य स्रोत है, तो ऐसे में हमें अपने पशुओं में लगने वाले रोग, उनके बचाव और नियंत्रण के बारे में समय रहते जागरूक होने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में सबसे पहला सवाल डॉक्टर कणिका जी मेरा आपसे इस कार्यक्रम के माध्यम से यही रहेगा कि पशुओं में होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं और वो कितने प्रकार के होते हैं?
2: पशुओं में होने वाले रोग तीन प्रकार के होते हैं। जीवाणु जनित रोग, एक होते हैं विषाणु जनित रोग, एक होते हैं परजीवी रोग और एक कृमि युक्त रोग होते हैं जो पेट के कीड़ों की वजह से होते हैं। एक पोषण ना होने की वजह से, कमजोर पशुओं में पोषणों की कमी हो जाती है, उसकी वजह से भी कुछ रोग पाए जाते हैं पशुओं में।
1: बिल्कुल जी, आपने जिस तरह से बताया कि पशुओं में देखिए बहुत तरह से रोग होते हैं, हम मुख्य तौर पर प्रकाश डालना चाहेंगे कि संक्रामक रोगों के बारे में। आपने संक्रामक रोगों की बात की, तो इन रोगों के बारे में आप हमारे पशुपालक भाई बहनों को विस्तृत तौर से समझाइए कि इनके कौन कौन से लक्षण हैं और आपको समय रहते उन लक्षणों का निदान किस तरह से करना होता है।
2: देखिए, पशुओं में जो संक्रामक रोग होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है विषाणु जनित रोग। विषाणु जनित मतलब वायरस की वजह से जो रोग होते हैं, जो पशुओं में प्रमुख रोग हैं वो है FMD वायरस की वजह से होता है, वो है खुरपका और मुंहपका रोग, जिसे मुंह खुर का रोग भी कहा जाता है। ये रोग, ये एक वायरस पिकोरना विरिडी वायरस की वजह से होता है और ये पशुओं में उत्पादकता को बहुत कम कर देता है। इसकी वजह से हमारे किसान भाइयों को आर्थिक हानि होती है और इसके प्रमुख लक्षण ये हैं कि पशुओं में बुखार होता है, बहुत तेज बुखार आता है, 104 से 106 डिग्री फारेनहाइट तक बुखार आता है और मुंह में और खुर के बीच में छाले हो जाते हैं। बाद में ये छाले फूटकर जख्म बन जाते हैं और पशु कुछ भी खा नहीं पाता, ना ही जुगाली कर पाता है। इसमें पशुओं को भूख कम लगती है और दूध कम हो जाता है और जो गर्भ अवस्था में पशु होते हैं उनमें गर्भपात भी देखने को मिला है। जो छोटी बछड़े और बछड़ियां होती हैं उनकी मृत्यु भी होती है। ये बहुत ही संक्रामक रोग है, एक बीमार पशु से बहुत जल्दी स्वस्थ पशुओं में फैलता है। और उसके अलावा एक संक्रामक रोग गलघोटू रोग होता है, जिसको हिमोरेजिक सेप्टिसीमिया भी कहा जाता है। ये एक जीवाणु जनित रोग है। इस रोग में पशु के गले के नीचे हमें सूजन देखने को मिलती है, सांस लेने में दिक्कत आती है और सांस लेते वक्त आवाज आती है, जिसकी वजह से पशु को बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसमें भी तेज बुखार 104 से 106 डिग्री फारेनहाइट तक जाता है। इस रोग से मृत्यु होने का बहुत ही खतरा रहता है। ये बहुत ही किसान भाइयों को बहुत ही आर्थिक हानि पहुंचाता है
1: जी।
2: और इसके बाद जो एक संक्रामक रोग है वो है थिनेला। थनेला जो है मुख्यतः जो हमारे पशुओं के थन, जो गाय और भैंसों के थनों में संक्रामक रोग है। इसमें क्या होता है कि जो थनों में सूजन आ जाती है, पशु के दूध उत्पादन में कमी आती है, पशु अच्छे से दूध नहीं दे पाता। ये जो है ये बैक्टीरिया जीवाणु जनित रोग है, इससे बहुत ही ज़्यादा आर्थिक हानि होती है। थनेला बहुत ज़्यादा पशुओं में पाया जाता है, ज़्यादातर उन जगहों पे पाया जाता है जहाँ पे साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता, खासकर बरसात के टाइम जो है ये ज़्यादा देखने को मिलता है। जो मुख्य जो दूध का स्रोत है जो है वो थन है, जो इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से पशु और किसान दोनों को ही दिक्कत आती है
1: जी।
2: इसके अलावा जो हमारे संक्रामक रोग हैं वो है ब्रुसेलोसिस। ब्रुसेलोसिस भी एक जीवाणु जनित रोग है। ये इस रोग में पशुओं में गर्भपात देखा जाता है। शुरू शुरू में इसके लक्षण नहीं आते, लेकिन जब पशु गर्भ अवस्था में होता है तो पांचवें और छठे और सातवें महीने में गर्भपात देखने को मिलता है। इसका संक्रमण जेर होती है पशु की और जो भी द्रव्य निकलते हैं गर्भपात के समय और जो बच्चा निकलता है, जो पूरी तरह से भ्रूण निकलता है, से भी एक दूसरे इन्फेक्शन होती है
1: जी।
2: ब्रुसेला जो है वो बहुत ही आर्थिक हानि पहुंचाता है किसानों को, क्योंकि इससे जो है गर्भपात बहुत देखने को मिलता है। जो हमारी गायें हैं जो गर्भ अवस्था में होती हैं उसके बाद वो दूध में आती हैं,

0: लेकिन वो अपने गर्भावस्था के दौरान ही उनका गर्भपात हो जाता है, जिसके कारण दुग्ध उत्पादन में प्रभाव पड़ता है।
1: बिल्कुल जी। डॉक्टर साहब, आपने इसके अलावा हमारे पशुपालक भाई बहनों को असंक्रामक रोगों के बारे में भी आरंभ में बताया था। विस्तृत तौर पर अब आपसे कार्यक्रम के इस अंक के माध्यम से जानना चाहूंगा कि असंक्रामक रोग हमारे पशुओं में किन किन तरह के लग जाते हैं और इनके लक्षणों का निदान समय रहते पशुपालक भाई बहनों को किस प्रकार से करना होगा।
0: असंक्रामक रोग जो है वो ज्यादातर जो है हमारे परजीवी और कृमियों से होते हैं
1: जी।
0: असंक्रामक रोग जो है, जैसे परजीवी जो पैरासाइट्स होते हैं, जैसे चीचड़ पिथड़ जो पशुओं में बरसात के समय और गर्मी के समय पशुओं में पाए जाते हैं, जो कि एक प्रमुख समस्या है पशुओं में
1: जी,
0: उनकी वजह से जो असंक्रामक रोग हैं, जैसे है बवेशियोसिस और थलेरिया। बवेशियोसिस जो है, इसमें जो है पशुओं के पेशाब में भूरे रंग का खून आता है, पेशाब जो है वो कॉफी कलर का आपको देखने को मिलेगा, तेज बुखार आता है, 106 डिग्री फारेनहाइट तक जो है बुखार चला जाता है, पशु कमजोर होता जाता है और की भूख कम होती है, पशु की उत्पादकता में भी कमी आती है। बवेशियोसिस जो है वो अगर सही समय पर उसका अगर उपचार नहीं किया जाए तो पशु की मौत भी हो सकती है।
1: जी,
0: तो बवेशियोसिस मुख्य कारण जो है वो है पैरासाइट,
1: जी
0: हमारे रक्त के जो सेल्स होते हैं उनमें फाड़ देता है या तोड़ देता है,
1: जी
0: जिसके कारण जो है पेशाब में हमें भूरे रंग का खून देखने को मिलता है।
1: जी डॉक्टर साहब, कार्यक्रम के मध्य में हम पहुंच चुके हैं, तो इस चर्चा के माध्यम से मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि जैव सुरक्षा क्या है, हमारे पशुपालक भाई बहनों को इसे किस तरह से अमल में लाना चाहिए।
0: जैव सुरक्षा जो है वो नियम है जो हमें अपनाने चाहिए, जिससे कि हम पशुओं में होने वाले संक्रामक और असंक्रामक रोगों को खत्म कर सकें और उनसे बच सकते हैं।
1: जी,
0: जो सबसे पहला जैव सुरक्षा का जो पहला नियम है वो है सबसे पहले क्वारंटाइन, जिसको हम अलगाव भी कहते हैं। अगर आप कोई भी पशु कहीं से खरीद कर ला रहे हैं तो, या फिर कहीं और से आपने पशु लिया है, तो उसको 21 से 30 दिनों तक स्वस्थ पशुओं के साथ ना रखें, उसे अलग रखें, ताकि अगर उसमें कोई बीमारी है वो आपके स्वस्थ पशुओं पे ना फैलें। दूसरा नियम ये होता है कि साफ सफाई का नियम, हमें अपने गौशाला में स्वच्छता अपनानी चाहिए। रोज हमें गोबर और जो गीला कचरा होता है, जैसे गीला घास है, जो पशुओं का पेशाब है, गोबर है, उसे रोज हटाना चाहिए और अपने जो पशुशाला है उसको साफ रखना चाहिए।
1: जी,
0: जिसके कारण अगर हम साफ सफाई नहीं रखते हैं तो गीला होने की वजह से वहाँ पर चीचड़ पिथड़ पनपते हैं और उनसे, जैसे मैंने पहले बताया, असंक्रामक रोग जैसे हमारे बवेशियोसिस, थलेरिया, ये बहुत ज्यादा फैलते हैं।
1: जी,
0: तीसरा है पानी, साफ सुथरा पानी, हमें पशुओं को साफ सुथरा पानी देना चाहिए, ताकि उनमें जो दस्त होते हैं, दस्त करने वाले जो जीवाणु हैं वो ना पनपे, जो ई कोलाई वगैरह है वो ना आए और पशु हमारे स्वस्थ रहें।
1: जी,
0: जो चौथा है वो है टीकाकरण, हमें अपने पशुओं को जितने भी संक्रामक रोग हैं, जैसे मुंह खुर रोग है, खुरपका रोग है, गलघोटू रोग है, ब्रुसेला रोग है, इनके लिए हमें टीकाकरण करवाना चाहिए, इनसे बचाव के लिए हमें टीकाकरण जरूर करवाना चाहिए। ये मुंह खुर रोग और खुरपका रोग का साल में 2 बार टीकाकरण किया जाता है, एक टीकाकरण किया जाता है मई जून में जो बरसात से पहले, और एक होता है सितंबर अक्टूबर के महीने में जो है बरसात के बाद,
1: जी,
0: और ये हमें ज़रूर करवाना चाहिए। उसके अलावा जो ब्रुसेला वायरस है, जो ब्रुसेलोसिस बीमारी करता है, उसका जो संक्रामक रोग है, इसका भी टीकाकरण हमें अपने पशुओं में करवाना चाहिए।
1: जी,
0: ये जो टीकाकरण है ये बच्चियों में 4 से 8 महीने की जो बच्चियां हैं उनमें हम करते हैं।
1: जी,
0: गलघोटू रोग का भी टीकाकरण साल में 1 बार किया जाता है, खासकर मई जून के महीने में।
1: जी,
0: और इसके अलावा जो अगर आपके पशुओं में कोई संक्रामक रोग है तो हमें कीटाणुनाशक दवाइयों का छिड़काव करना चाहिए अपने पशुशाला में,
1: जी,
0: ताकि जो जीवाणु हैं, विषाणु हैं और भी परजीवी हैं वो मर जाएं और हमारे पशुओं को अफेक्ट ना कर सकें।
1: बिल्कुल जी। डॉक्टर साहब, बात चली है पशु रोग बचाव और नियंत्रण की, इस चर्चा के माध्यम से हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे जो इस समय हमारे किसान और बागवान भाई बहनों के जहन में भी आ रहा होगा कि अक्सर हमारे पशुपालक भाई बहनें जब नए पशुओं को खरीदते हैं तो उस समय उन्हें कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए ताकि उनके पशु

0: स्वस्थ बने रहें।
1: देखिए, जब हम पशु कहीं से खरीद कर ला रहे हैं, तो जिस भी वाहन में हम खरीद कर ला रहे हैं, तो पहले तो उस वाहन का हमें कीटाणुनाशक, कीटाणु शोधन करना चाहिए, कीटाणुनाशक कोई भी दवाई का छिड़काव करके। दूसरा, हमें स्वास्थ्य प्रमाण पत्र मांगना चाहिए कि वो पशु स्वस्थ है या नहीं है। उसमें वो ये सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी पशु जो किसी को बेच रहे हैं, तो उस पशु में कोई बीमारी है या नहीं है। और साथ ही साथ हमें ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उस पशु में जितने भी संक्रामक रोग होते हैं, जो प्रमुख संक्रामक रोग हैं, जैसे मुंह खुर का रोग है, गलगोटू रोग है, ब्रुसेला रोग है, इनकी टीकाकरण किया हुआ होना चाहिए उस पशु में।
0: जी
1: जिस वाहन में पशु को ला रहे हैं, अगर हमारे दो तीन से ज़्यादा पशु हैं, उचित स्पेस होना चाहिए पशुओं के बीच में,
0: जी
1: और ज़्यादा हवादार होना चाहिए। और पशु को अगर यात्रा लंबी है, तो हमें पानी भी उपलब्ध करवाना चाहिए यात्रा के दौरान।
0: जी
1: उसके बाद जब आप पशु को अपने घर पे लाते हैं, तो हमें उसे अपने पशुशाला में

0: अगर हमारे दो तीन से ज़्यादा पशु हैं, उचित स्पेस होना चाहिए पशुओं के बीच में,
1: जी
0: और ज़्यादा हवादार होना चाहिए, और पशु को अगर यात्रा लंबी है तो हमें पानी भी उपलब्ध करवाना चाहिए यात्रा के दौरान।
1: जी
0: उसके बाद जब आप पशु को अपने घर पे लाते हैं तो हमें उसे अपने पशुशाला में बाकी स्वस्थ पशुओं के साथ नहीं बांधना चाहिए। उसे हमें स्वस्थ पशुओं से अलग रखना चाहिए 21 से 30 दिनों तक।
1: जी
0: अगर उसमें अगर कोई बीमारी है तो 21 से 30 दिनों तक हमें पता चल जाएगा, उसमें वो लक्षण आ जाएंगे
1: जी
0: और हम उसका उपचार कर सकते हैं। और दूसरा, ये जो बीमारी है ये हमारे स्वस्थ पशुओं में नहीं फैलेगी।
1: जी डॉक्टर कनिका जी, कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं। इस अंक के माध्यम से विशेष तौर पर आप हमारे किसान और बागवान भाई बहनों को, मुख्य तौर पर पशुपालक भाई बहनों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: पशुओं में जो 70% से जो बीमारियां हैं वो हम रोक सकते हैं। उसमें पहला ये है कि हमें अपने पशुओं को अच्छा पोषण देना चाहिए, संतुलित आहार देना चाहिए, समय समय पर पेट के कीड़े की दवाई देनी चाहिए। पेट के कीड़े की दवाई हमें 4 महीने के अंतराल पर पशुओं को देते रहना चाहिए। उसके अलावा हमें समय समय पर पशुओं का जो संक्रामक रोग हैं उनके विरुद्ध जो टीकाकरण है वो करवाने चाहिए। उसके अलावा हमें साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, हमें अपने पशुशाला साफ सुथरा रखना चाहिए, उन्हें साफ पानी और साफ चारा उपलब्ध करवाना चाहिए। और जो पशु जो बेसहारा, आजकल हम पशुओं को बेसहारा छोड़ रहे हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। हमें पशुओं को अपने पशुशाला में ही रखना चाहिए, और जो इसके लिए टैगिंग की जाती है हम
1: जी
0: उसको लगवाना चाहिए।
1: तो डॉक्टर कनिका जी, आप कार्यक्रम के इस अंक में हमसे जुड़े और आपने पशु रोग बचाव और नियंत्रण के बारे में हमारे किसान और बागवान भाई बहनों को बहुत ही लाभप्रद जानकारी मुहैया करवाई। आपका आकाशवाणी के स्टूडियो आने के लिए और हमारे किसान और बागवान भाई बहनों को इस महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: किसान भाइयों, अभी आपने पशुओं के रोग बचाव व नियंत्रण इस विषय पर पुनः प्रसारण सुना। डॉक्टर कणिका से जानकारी हासिल कर रहे थे यशपाल, और हमें उम्मीद है कि आप इस जानकारी से अवश्य ही लाभान्वित हुए होंगे।
3: तो किसान भाइयों, कार्यक्रम में समय हो चला है फिर से मनोरंजन का।
2: आइए सुनते हैं किशोर कुमार के आवाज में ये लोकगीत।

0: किसान भाइयों, अभी आपने सुना किशोर कुमार की आवाज़ में ये पहाड़ी लोकगीत। अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय भी संपन्न हो चला है, आपसे अनुमति चाहेंगे।
1: नमस्कार।
0: कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता दीपक कुमार।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत, 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM शिमला। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी शिमला के साथ साथ आप हमारा प्रसारण FM शिमला पर भी सुन रहे हैं। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्र भी रिले करेंगे। प्रादेशिक समाचार DTH सेवा पर भी उपलब्ध हैं।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, सरकारी सेवा में नियुक्ति से पहले डोप टेस्ट होगा अनिवार्य। पंचायती राज संस्थाओं के तीसरे व अंतिम चरण के लिए 1189 पंचायतों में मतदान शांतिपूर्ण संपन्न। प्रधान, उप प्रधान व वार्ड सदस्यों के मतों की गिनती जारी। 4 नगर निगमों सहित जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्यों के मतों की गणना कल। सभी तैयारियां पूरी, सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में कल सुबह लोगों से साझा करेंगे विचार। और प्रदेश की ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी व

0: अन्य क्षेत्रों में वर्षा से तापमान में गिरावट, कल भी अनेक स्थानों पर वर्षा, बर्फबारी व ओलावृष्टि की संभावना। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सरकारी सेवा में नियुक्ति से पहले अभ्यर्थियों का डोप टेस्ट अनिवार्य करने और इसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने के निर्देश दिए हैं। शिमला में प्रशासनिक सचिवों के साथ आयोजित बैठक में उन्होंने चतुर्थ श्रेणी के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लंबित ग्रेच्युटी व अवकाश नकदीकरण के भुगतान शीघ्र सुनिश्चित करने को भी कहा। मुख्यमंत्री ने विभागाध्यक्षों को करुणामूलक आधार पर नौकरी के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों का पूरा विवरण उपलब्ध करवाने को कहा, ताकि प्रदेश सरकार इन मामलों में उचित निर्णय ले सके। मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों को रिक्त पदों की जानकारी उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए, ताकि इन्हें शीघ्र भरा जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में तूफान के कारण वन भूमि पर गिरे और उखड़े पेड़ों को हटाने के लिए 1 जून से विशेष अभियान शुरू किया जाएगा। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के तीसरे व अंतिम चरण के लिए मतदान आज शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। तीसरे चरण के तहत प्रदेश की 1189 पंचायतों में प्रधान, उप प्रधान, वार्ड सदस्यों और जिला परिषद व ब्लॉक समिति सदस्यों के चुनाव के लिए वोट डाले गए। मतदान करीब 80% दर्ज किया गया और इस समय प्रधान, उप प्रधान व वार्ड सदस्यों के मतों की गणना का कार्य चल रहा है। लाहौल स्पीति जिले के लाहौल विकास खंड की 10 ग्राम पंचायतों में तीसरे चरण के मतदान को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा गया। मतदान कुल 69.60% दर्ज किया गया। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे लाहौल स्पीति जिला संवाददाता।
1: लाहौल स्पीति जिला के 10 ग्राम पंचायतों में शनिवार को पंचायती राज चुनावों के तीसरे चरण का मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। इस चरण में कुल 69.60% मतदान दर्ज किया गया। जानकारी के अनुसार कुल 4036 पंजीकृत मतदाताओं में से 2809 मतदाताओं ने मतदान किया। मतदान प्रतिशत की बात करें तो मठग्राम पंचायत में सबसे अधिक 76.20% मतदान दर्ज किया, जबकि मालंग में 58% मतदान दर्ज किया गया। प्रशासन की ओर से सभी मतदान केंद्रों पर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई। चुनाव ड्यूटी में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों ने मतदान प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न कराया, जबकि सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी तरह चाक चौबंद रही। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
0: उधर कांगड़ा जिला में आज 277 पंचायतों में मतदान करवाया गया, जिसमें करीब 70% मतदान दर्ज किया गया। सोलन जिला में 83.85%, चंबा में 85.21%, कुल्लू में 84.66%, ऊना में 79.67% मतदान दर्ज किया गया। पंचायती राज चुनाव के अंतिम चरण में मतदान प्रक्रिया को लेकर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में युवा मतदाता जहां उत्साहित नजर आए, वहीं बुजुर्ग मतदाता भी वोट डालने पहुंचे।
2: मेरा नाम भव्या है और मैं गांव सैनवाला की रहने वाली हूँ। आज मेरा फर्स्ट वोट था, काफी मतलब अच्छा लगा। आई थिंक सब यूथ को आगे आना चाहिए वोट देने के लिए और एक अच्छे लीडर को चूज करना चाहिए।
3: मेरा नाम मोहन सिंह है, मेरी उम्र 82 साल है और मैं यहाँ पे वोट डालने आया हूँ। और मैंने सभी से ये निवेदन है कि पहले तो निर्विरोध चुनने की कोशिश करो, लेकिन अगर फिर भी लेकिन टकराव की स्थिति ना रखो कर। और सभी से ये निवेदन है कि 18 साल से ऊपर सभी को अपना मत उसका प्रयोग करना चाहिए।
0: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि प्रजातंत्र की मजबूती जनता की सहभागिता से ही संभव है और लोकतंत्र की मजबूती के लिए हर नागरिक को अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। वे आज अपने गृह जिला बिलासपुर के झंडुता विधानसभा क्षेत्र की विजयपुर सुंगला पंचायत में मतदान करने के अवसर पर बोल रहे थे।
4: प्रजातंत्र की मजबूती के लिए हमें हमेशा मत का अधिकार का प्रयोग करना चाहिए। प्रजातंत्र की नींव इसी बात पर टिकी है जिसमें प्रजा की सहभागिता हो, और आज मुझे भी ये सौभाग्य मिला कि मैं अपने पैतृक गांव में आकर इस कार्य को पूरा किया है।
0: इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आज सराज विधानसभा क्षेत्र की गृह पंचायत मुरहाग मतदान केंद्र में वोट डाला और सभी मतदाताओं से ग्रामीण विकास के लिए योग्य प्रतिनिधियों को चुनने का आग्रह किया। उन्होंने प्रदेश सरकार पर सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर कई तरह के षड्यंत्र अपनाकर पंचायत चुनाव को देरी से करवाने का आरोप लगाया। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने घुमारवीं विकास खंड के तहत अपने गृह पंचायत के पनौल मतदान केंद्र में पंचायत चुनाव के लिए मतदान किया। उन्होंने कहा कि देश व प्रदेश की उन्नति के लिए जनता के प्रति समर्पित उम्मीद

0: उम्मीदवारों का चयन जरूरी है। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला परिषद, पंचायत समिति सदस्यों और 4 नगर निगमों धर्मशाला, पालमपुर, मंडी और सोलन में हुए चुनाव के मतों की गणना के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली है। प्रदेश के 91 विकास खंडों में कल 31 मई को सुबह 9 बजे से मतगणना शुरू होगी। जिला परिषद वार्डों की मतगणना के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। सिरमौर जिला के सहायक निर्वाचन अधिकारी राजीव सांख्यान ने बताया कि नाहन में जिला परिषद के 2 वार्डों और 15 पंचायत समिति के वार्डों की गणना की जाएगी। उन्होंने कहा कि पहले चरण में पंचायत समितियों और उसके बाद जिला परिषद की मतगणना होगी।
1: मतगणना केंद्र जो है हमारा बिल्कुल तैयार है। नाहन में जो हमारा DPRC है, डिस्ट्रिक्ट पंचायत रिसोर्स सेंटर है, यहाँ नाहन ब्लॉक की जो 15 पंचायत समिति के वार्ड उनकी काउंटिंग होगी और उसके बाद हमारे जो जिला परिषद के 2 वार्ड बनकला और त्रिलोकपुर हैं उनकी काउंटिंग होगी। 12 टेबल्स जो हैं हमने तैयार किए हैं, 12 टेबल्स पे काउंटिंग होगी। सर्वप्रथम हमारे जो पंचायत समिति वार्ड हैं उनकी काउंटिंग होगी, उनके रिजल्ट अनाउंस होंगे। उसके बाद हमारे जिला परिषद के वार्ड पहले बनकला की और फिर त्रिलोकपुर की काउंटिंग की जाएगी। जितने भी हमारे काउंटिंग स्टाफ है सुबह 7:30 बजे यहाँ हमारे रिपोर्ट कर देंगे और एक ब्रीफ ट्रेनिंग सेशन के बाद ठीक 9 बजे जो है हमारी काउंटिंग शुरू हो जाएगी।
0: उधर कांगड़ा जिला में नगर निगम धर्मशाला व पालमपुर के चुनावों की मतगणना के लिए सभी प्रबंध पूरे कर लिए गए हैं। ADM कांगड़ा शिल्पी बेगटा ने बताया कि मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं।
2: कल यानी कि 31 मई को हमारे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन धर्मशाला और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पालमपुर में भी मतगणना होनी है और मतगणना EVM के माध्यम से होनी है, जिसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। साथ ही में हमारे 18 ब्लॉक हेडक्वार्टर्स पे BDC और जिला परिषद, इनकी भी मतगणना होनी है। सिक्योरिटी हमारी प्राइमरी इम्पोर्टेंस पे रहेगी क्योंकि यहाँ पे बहुत क्लोजली कंटेस्टेड चुनाव कहा गया है। डबल टायर्ड सिक्योरिटी इसमें रहेगी और साथ में फ्रिस्किंग स्पेशली की जाएगी।
0: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने दावा किया है कि प्रदेश के 4 नगर निगमों मंडी, धर्मशाला, पालमपुर व सोलन के चुनाव परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आएंगे। आज शिमला में उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है, जबकि भाजपा का प्रदेश विरोधी चेहरा पूरी तरह उजागर हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने नव निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों से गांव में सौहार्द, सहभागिता और सुशासन का वातावरण सुनिश्चित करने का आह्वान किया है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन सके। वे आज समीरपुर में उनसे मिलने आए दाढ़ी व बीड़ बगेहड़ा के नव निर्वाचित प्रतिनिधिमंडलों से बातचीत कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना व प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। प्रदेश की ऊंची चोटियों पर आज हल्की बर्फबारी, जबकि अन्य क्षेत्रों में वर्षा व तेज हवाएं चलने से तापमान में गिरावट आई है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। बारिश व बर्फबारी से राजधानी शिमला सहित अन्य पर्यटन स्थलों में मौसम सुहावना हो गया है, जिसका आनंद लेने के लिए मैदानी क्षेत्रों से बड़ी संख्या में सैलानी यहां पहुंच रहे हैं। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश व बर्फबारी की भावना जताई है। विभाग ने कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि व 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, सरकारी सेवा में नियुक्ति से पहले डोप टेस्ट होगा अनिवार्य। पंचायती राज संस्थाओं के तीसरे व अंतिम चरण के लिए 1189 पंचायतों में मतदान शांतिपूर्ण संपन्न। प्रधान, उप प्रधान व वार्ड सदस्यों के मतों की गिनती जारी। 4 नगर निगमों सहित जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्यों के मतों की गणना कल। सभी तैयारियां पूरी, सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में कल सुबह लोगों से साझा करेंगे विचार। और प्रदेश की ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी व अन्य क्षेत्रों में वर्षा से तापमान में गिरावट।

0: अनेक स्थानों पर वर्षा, बर्फबारी व ओलावृष्टि की संभावना। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। आइए सुनते हैं देशगान।

देशगान अभी आप सुन रहे थे, ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें। ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। 8 बज चुके हैं, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम धारा रे गीत।

103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम शिमला। सुरों से सजी इस शाम में रीमा ठाकुर का आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। समय की रफ्तार चाहे कितनी भी तेज क्यों ना हो जाए, कुछ गीत ऐसे होते हैं जो कभी पुराने नहीं होते। वो गीत हमारे दिलों की धड़कनों में बस जाते हैं, हमारी मुस्कुराहटों में घुल जाते हैं और कभी कभी हमारी आंखों को भी नम कर जाते हैं। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत और हम खोलेंगे यादों की वही पुरानी संदूकची जिसमें सजे हैं हिंदी सिनेमा के कुछ अनमोल नगमे। तो आइए सुनते हैं दीवाना फिल्म का गीत शारदा की आवाज़ में, शंकर जयकिशन की संगीत रचना और बोल लिखे हैं हसरत जयपुरी ने।

मिस्टर एंड मिसेस 55 इस फिल्म का गीत आपको सुना रहे हैं गीता दत्त और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। संगीत से सजाया है ओपी नैयर ने और बोल लिखे हैं मजरू सुल्तानपुरी ने।

0: हिमाचल प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण हेतु वचनबद्ध है। आइए सुनते हैं माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का संदेश।
1: नमस्कार। विश्व पर्यावरण दिवस हमें प्रकृति के संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास करवाने का महत्वपूर्ण अवसर है। हिमाचल प्रदेश को प्रकृति ने सुंदर पहाड़, साफ पानी और शुद्ध हवा का अनमोल उपहार दिया है। आइए हम सब मिलकर अपने पर्यावरण को स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित बनाने का संकल्प ले, पेड़ लगाएं, पानी बचाएं और प्रकृति की रक्षा में अपना योगदान दे। स्वस्थ पर्यावरण ही आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। आइए प्रकृति से प्रेम करें और हिमाचल को हरियाली और स्वच्छता का आदर्श बनाएं। जय हिंद, जय हिमाचल।
2: हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जनहित में जारी।
3: भूले बिसरे गीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं FM शिमला के साथ। कभी रेडियो की धीमी आवाज, कभी बरामदे में बैठी शाम, कभी चांदनी रातों की तन्हाई, इन गीतों ने हर एहसास को सुरों में पिरोया है। लता मंगेशकर की आवाज में आइए सुनते हैं वो कौन थी। इस फिल्म का गीत मदन मोहन की संगीत रचना और शब्द रचना राजा मेहंदी अली खान की।

जी बिल्कुल, क्या बात है। पुराने गीतों की सच में कुछ बात और ही है। वो दौर, वो समा, वो बेहतरीन नगमे और कभी ना भुलाया जा सकने वाला वो संगीत, उन गीतों के बोल और उनमें जान डालते संगीतकारों की वो धुनें, वो आवाज़ें जो आज भी हमारे दिलों को छू जाती है। आइए सुनते हैं भाई भाई फिल्म का गीत, गीता दत्त की आवाज़, मदन मोहन की संगीत रचना, राजेंद्र कृष्ण की बोल।

वक्त की दरिया में बहुत कुछ बह गया, पर कुछ गीतों का जादू आज भी रह गया। जब भी सुनते हैं वो पुराने तराने, दिल फिर से उन्हीं सुनहरे दिनों में खो गया। आइए सुनते हैं मधुमती फिल्म का गीत मुकेश की आवाज़ में, सलिल चौधरी की संगीत रचना और शब्द रचना शैलेंद्र की।

कार्यक्रम में आइए सुनते हैं जिद्दी फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में, एसटी बर्मन की संगीत रचना और बोल लिखे हैं हसरत जयपुरी ने।

0: भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में आज बस इतना ही। आप बने रहिए FM शिमला के साथ, सुनते रहिए।
1: हिमाचल प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण हेतु वचनबद्ध है। आइए सुनते हैं माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का संदेश।
2: नमस्कार। विश्व पर्यावरण दिवस हमें प्रकृति के संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास करवाने का महत्वपूर्ण अवसर है। हिमाचल प्रदेश को प्रकृति ने सुंदर पहाड़, साफ पानी और शुद्ध हवा का अनमोल उपहार दिया है। आइए हम सब मिलकर अपने पर्यावरण को स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित बनाने का संकल्प लें। पेड़ लगाएं, पानी बचाएं और प्रकृति की रक्षा में अपना योगदान दें। स्वस्थ पर्यावरण ही आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। आइए प्रकृति से प्रेम करें और हिमाचल को हरियाली और स्वच्छता का आदर्श बनाएं। जय हिंद, जय हिमाचल।
3: हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जनहित में जारी।
0: FM शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ के साथ हैं आप। 8:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। कहते हैं कि किसी की फिक्र करो तो उस

से ज़िक्र ज़रूर करना, क्योंकि अनकहे अल्फाज अक्सर अनसुने रह जाते हैं। जोड़ी ब्रेकर्स फिल्म का गीत आपको सुना रहे हैं शफकत अमानत अली की आवाज़ में, संगीत से सजाया है सलीम सुलेमान ने और वो लिखे हैं इरशाद कामिल ने।

कहते हैं कि एक नफ़रत ही है जिसे दुनिया चंद लम्हों में जान लेती है, वरना चाहत का यकीन दिलाने में तो ज़िंदगी बीत जाती है।

0: फिल्म संगीत में आज बस इतना ही। आप बने रहिए एफएम शिमला के साथ। कुछ ही देर में आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र समाचार संध्या और न्यूज एट नाइन के लिए। कीजिए बस कुछ ही पलों का इंतजार।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। कर्नाटक में डी के शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन के डबल्स फाइनल में पहुंचे। और ब्रिस्टल में दूसरे महिला T20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डी के शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धरमैया और डॉक्टर जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। हमारे संवाददाता ने बताया।

0: है कि डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।
1: जब मीटिंग आरंभ हुई तो सिद्धरामैया द्वारा एक लाइन का रेजोल्यूशन दिया गया कि सीएलपी नेता का चयन का कार्य एआईसीसी को सौंप देना चाहिए। इसके बाद एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सिद्धरामैया से अलग मुख्यमंत्री के कक्ष में बातचीत की। तब तक सीएलपी मीटिंग रुकी रही। जब फिर से मीटिंग आरंभ हुई तो ये रेजोल्यूशन पारित किया गया कि डीके शिवकुमार नेता के रूप में चुने गए हैं। इसके बाद सभी विधायक राज्यपाल से मिले और डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाने के लिए वक्त मांगा। अब डीके शिवकुमार और अन्य मंत्रिमंडल के सदस्य जून 3 तारीख को 4:05 पर शपथ ग्रहण करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी के सचेतक एग्री एसएस कृष्णमूर्ति ने आज राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लीकर से मुलाकात की और उनसे सत्तारूढ़ टीवी के द्वारा कथित तौर पर 4 विधायकों की खरीद फरोख्त के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि ये चारों विधायक ऑल इंडिया अन्ना डीएमके से इस्तीफा देने के तुरंत बाद टीवीके में शामिल हो गए। श्री कृष्णमूर्ति ने कहा कि इन विधायकों ने व्हिप का उल्लंघन करते हुए टीवीके सरकार के पक्ष में मतदान किया। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: किसानों की खेती और मिट्टी को सुरक्षित रखने के लिए खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा और यह 30 जून तक पूरे देश में चलाया जाएगा। इस अभियान में कृषि विज्ञान केंद्र सभी भाग लेने वाली संस्थाओं के मुख्य समन्वय की भूमिका निभाएंगे। इस अभियान के लिए 1600 से अधिक टीमें बनाई गई हैं। इसके अलावा जिन 100 जिलों में रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग होता है वहाँ विशेष रूप से 500 टीमें गठित की गई हैं। इस अभियान के दौरान खेतों को बचाने और किसानों को समय पर सही सलाह देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के लगातार हो रहे उपयोग को कम करना है। किसानों को मिट्टी की जांच के आधार पर उर्वरकों और अन्य कृषि संसाधनों के संतुलित उपयोग के बारे में जागरूक किया जाएगा। साथ ही उन्हें जैविक खाद और जैव उत्पादों के अधिक उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि समाधान दीदी वर्तमान में सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में काम करता है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि एआई और तकनीक के उपयोग के कारण लोक शिकायतों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई है।
3: सन 2014 से पहले केवल यहाँ पर 2,00,000 शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25-30,00,000 होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव, और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
0: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में स्टार्टअप लोहम का दौरा किया। श्री वैष्णव ने कहा कि लोहम लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों और उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा है।
4: एक यंग स्टार्टअप लोहम, इन्होंने कंप्लीट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद में वहां से प्रोडक्शन का लेवल लेके आए। आज उस प्लांट को देखने का मौका मिला। लिथियम कार्बोनेट बनाने की मशीन है जो कि आगे सीधा बैटरी बनाने में काम में आए, और परमानेंट मैग्नेट बनाने की मशीन है जो कि बहुत ही एक अच्छे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से डेवलप किया।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। इसका प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी ये कार्यक्रम प्रसारित करेगा। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन भारत की 5 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज शाम श्री ऊ मिन से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने के प्रति म्यांमार के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। उन्होंने कहा कि वे शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सोमवार को उनकी मुलाकात का इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले दिन में म्यांमार के राष्ट्रपति बिहार में गया गए और महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि चिकित्सा वस्त्र, तकनीकी वस्त्र और स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी क्षेत्र भारत की आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने की अपार क्षमता रखते हैं। विशाखापट्टनम में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार भारत को वैश्विक विनिर्माण और नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि ये प्रयास मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है। सरकार ने सोमवार से 31 अक्टूबर तक कपास के आयात पर सीमा शुल्क में अस्थायी रूप से छूट दी है। कपड़ा मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि ये निर्णय कपास किसानों और संपूर्ण कपास मूल्य श्रृंखला के हितों को सर्वोपरि रखते हुए लिया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान लागू किया गया ये उपाय कपड़ा उद्योग के लिए कपास की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर हैं और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे चरण के लिए तैयार हैं। पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में पासिंग आउट परेड में जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि ये अभियान अब भी जारी है।
1: As far as Operation Sindoor is concerned,
2: जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, ये अभियान अभी जारी है। इसमें फिलहाल केवल अस्थायी रूप से संघर्ष विराम है, इसलिए भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.2 की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर है, साथ ही हम भविष्य के युद्धों के लिए खुद को और अधिक सक्षम बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आने वाले समय के युद्ध केवल जमीन, समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहेंगे।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में पहले हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट और प्रथम दिन का कवर जारी किया। इस अवसर पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष राम बहादुर राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बधाई संदेश पढ़ा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हिंदी पत्रकारिता की द्विशताब्दी भारत की चेतना, विचार और जन जागरूकता का उत्सव है। श्री सिंधिया ने कहा कि पत्रकारिता का इतिहास भारत का इतिहास भी है। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि ये राष्ट्रीय जागृति का एक आंदोलन है। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने डिजी यात्रा ऐप के माध्यम से 10 करोड़ से अधिक निर्बाध यात्राएं संपन्न कराने के लिए डिजी यात्रा टीम को बधाई दी है। श्री नायडू ने कहा है कि ये उपलब्धि निर्बाध और कागज तथा संपर्क रहित प्रक्रिया पर यात्रियों के बढ़ते भरोसे को दर्शाती है। वर्तमान समय में डिजी यात्रा ऐप पर 38 हवाई अड्डे हैं और अगले वर्ष इनमें 27 और हवाई अड्डे जुड़ जाएंगे। पश्चिम बंगाल में

स्वच्छता में सुधार और नागरिक समस्याओं का तेजी से समाधान करने के लिए एक नया स्वच्छ मोबाइल ऐप जारी किया गया है। आवासन और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने आज कोलकाता में इस ऐप को जारी किया। इस ऐप के जरिए नागरिक अपनी समस्याओं जैसे रुका हुआ पानी, कचरा या नालियों का फोटो अपलोड कर सकते हैं। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम आईटीआई क्लस्टर के लिए एक निजी कंपनी आर्सेलर मित्तल निपॉन स्टील इंडिया की रणनीतिक निवेश योजना एसआईपी को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली एसआईपी है। आंध्र प्रदेश इस योजना के अंतर्गत उद्योग साझेदारी को क्रियान्वित करने वाला पहला राज्य बन गया है। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की है। कल आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, माहे, लक्षद्वीप और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में तेज वर्षा की संभावना है। अगले दो दिनों में ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारिकाल और मध्य प्रदेश में भी तेज बारिश हो सकती है। कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में तेज हवाओं के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने का अनुमान है। और अब बात खेलों की। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में उन्होंने दक्षिण कोरिया के सीओ सेउंग जाए और किम बॉन हो को हराया। ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो मिक्स डबल्स सेमीफाइनल में हार गए। ब्रिस्टल में दूसरे महिला टी20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने पांचवें ओवर में एक विकेट पर 34 रन बना लिए हैं। तीन मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। भारतीय हज मिशन ने सऊदी अरब में आयोजित इस वर्ष के खितमाहू मिस्क समारोह में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते हैं। ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। सऊदी हज मंत्रालय द्वारा तीर्थयात्रियों की उत्कृष्ट सेवाओं को मान्यता देने के लिए प्रतिवर्ष दिए जाने वाले लब्बैतुम पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ हज समन्वय और संचार श्रेणी के तहत भारतीय हज मिशन को प्रदान किए गए हैं। इस वर्ष लगभग 175,000 भारतीय हज के लिए गए थे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कर्नाटक में डी के शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन के डबल्स फाइनल में पहुंचे और ब्रिस्टल में दूसरे महिला टी20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

अगर बात करें तो कहानी एक अमीर और सफल बिजनेसमैन ईश्वर ठाकुर और उनके लापरवाह बेटे आदित्य के इर्द गिर्द घूमती है। आदित्य अपनी ज़िंदगी को मज़े में उड़ाता रहता है और अपने पिता की मेहनत को नहीं समझता है। जब आदित्य अपनी मर्जी से पूजा के साथ शादी कर लेता है तो ईश्वर उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिलाने के लिए घर से निकाल देते हैं। इसी बीच ईश्वर को ये भी पता चलता है कि वो एक लाइलाज बीमारी से पीड़ित है और उनके पास जीने के लिए समय बहुत कम है।

जिस वक्त ईश्वर को अपनी बीमारी का पता चलता है, तब उनके लिए ये और भी ज़रूरी हो जाता है कि उनका बेटा अपनी जिम्मेदारी को समझे, जिसके लिए वो एक गुप्त मिशन की तरह अपने बेटे को एक जिम्मेदार इंसान बनाने की दौड़ शुरू करते हैं, ताकि उनके जाने के बाद उनका परिवार सुरक्षित और खुश रह सके। समय बीतता है, संघर्षों से जूझते हुए आदित्य जीवन का असली अर्थ समझता है, और जब उसे अपने पिता की बीमारी का पता चलता है तो वो पूरी तरह से टूट जाता है और समझ पाता है कि उसके पिता ने उसे घर से क्यों निकाला था। पिता पुत्र का रिश्ता और भी गहरा हो जाता है। ईश्वर अपने बेटे को जाने से पहले एक जिम्मेदार बेटा बना कर जाते हैं। ये फिल्म हमें ये भी सिखाती है कि समय से बड़ा शिक्षक कोई नहीं होता है। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि हर उस परिवार की कहानी है जहां माता पिता अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कभी कभी कठोर फैसले लेने को मजबूर हो जाते हैं। वक्त हमें सिखाती है कि समय की कद्र करना और अपने रिश्तों को समझना जीवन की सबसे बड़ी सीख है।

एफएम शिमला के साथ हैं आप, आइए सुनते हैं कार्यक्रम दिल की आवाज भी सुन। कि खूबसूरत सा एक पल किस्सा बन जाता है, जाने कब कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। कुछ लोग जिंदगी में ऐसे मिलते हैं जिनसे कभी ना टूटने वाला रिश्ता बन जाता है। सोनू निगम और पलक मुच्छल की आवाज़ों में आपको सुना रहे हैं बॉर्डर टू फिल्म का गीत, अनु मलिक और मिथुन की संगीत रचना, जावेद अख्तर और मनोज मुंतशिर के बोल।

मेरी ज़िंदगी की कहानी का सबसे खूबसूरत किस्सा हो तुम। हाँ चलो माना, साथ कहानी के अंत तक नहीं हो तुम, लेकिन मेरी कहानी का प्यार भरा हिस्सा हो तुम। जिस सफ़र में तुम साथ नहीं, उन यादों का गुलिस्ता हो तुम।

मैं प्यार लिखूं तो ख्याल तुम हो, दर्द लिखूं तो सवाल तुम हो, खुद को लिखूं तो भी तुम मिलोगे क्योंकि मेरी ज़िंदगी का मुकाम तुम हो।

दिल की आवाज़ भी सुन कार्यक्रम आप एंजॉय कर रहे हैं एफएम शिमला के साथ। तलाश सिर्फ दिल को सुकून की होती है, तलाश सिर्फ दिल को सुकून की होती है, फिर नाम रिश्तों का चाहे कुछ भी हो।

कि अल्फाजों के दीवाने तो बहुत मिलेंगे, अल्फाजों के दीवाने तो बहुत मिलेंगे, तलाश उसकी करना जो खामोशी को पढ़ सके।

रिश्ते वो बड़े नहीं होते जो जन्म से जुड़े होते हैं। रिश्ते वो बड़े नहीं होते जो जन्म से जुड़े होते हैं। रिश्ते वो बड़े होते हैं जो दिल से जुड़े होते हैं।

एफएम शिमला के साथ हैं आप, आइए सुनते हैं गजलें। गजल सिर्फ शब्दों का संगम नहीं, बल्कि दिल की गहराइयों से निकली हुई वो आवाज़ है जो सीधे रूह को छू जाती है। भूपेंद्र की आवाज़ में आइए सुनते हैं ये गजल।

कुछ अल्फाज जब एहसासों का लिबास पहन लेते हैं तो वही गज़ल बनकर दिलों में उतर जाते हैं। आइए सुनते हैं जगजीत सिंह और चित्रा सिंह को।

दिल की बातें लफ्ज़ों में बयां हो जाए, दिल की बातें लफ्ज़ों में बयां हो जाए तो गज़ल बनकर फिज़ाओं में बिखर जाएं। आइए सुनते हैं मेहंदी हसन को।

काश से लेकर खैर तक का सफ़र, काश से लेकर खैर तक का सफ़र रोज़ तय करती है ये ज़िंदगी। जगजीत सिंह की आवाज़ में आइए सुनते हैं ये गज़ल।

संगीत की दुनिया में गज़ल एक ऐसी विधा है जो दिल की गहराइयों में उतरकर भावनाओं को शब्दों का रूप देती है। गज़ल कभी मोहब्बत की दास्तान सुनाती है, कभी जुदाई का दर्द बयां करती है, तो कभी ज़िंदगी के अनछुए पहलुओं को हमारे सामने रखती है। आइए सुनते हैं भूपेंद्र सिंह को।

हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। आइए सुनते हैं हरिहरन को।

10:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं पुराने फिल्मी गीतों से सजा कार्यक्रम सदाबहार नगमे। किशोर कुमार की आवाज़ में आपको सुना रहे हैं परवाना फिल्म का गीत, मदन मोहन की संगीत रचना और कैफी आज़मी के शब्द रचना।

सुरों का ये खूबसूरत कारवां यूं ही चलता रहे, हर दिल संगीत की धुन में यूं ही ढलता रहे। जो गीत कभी भूले नहीं जाते, वो महफिलों में हमेशा गूंजते रहे। पराया धन फिल्म का गीत आपको सुना रहे हैं किशोर कुमार की आवाज़, आर डी बर्मन की संगीत रचना और बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने।

दिल को आज भी पुराने रास्तों की खुशबू याद है, वो मिट्टी, वो आंगन, वो बेफिक्र हंसी और वो लोग जो अब सिर्फ यादों में रहते हैं। शायद इसीलिए इंसान लाख आगे बढ़ जाए, दिल आज भी अक्सर पीछे छूटे हुए दिनों में ही सुकून ढूंढता है। सूरज और चंदा फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की संगीत रचना और बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम में आइए सुनते हैं सौदागर फिल्म का गीत, लता मंगेशकर की आवाज़ और संगीत रचना रविंद्र जैन की।

पुराने गीतों की बात ही निराली है, हर धुन में छुपी एक कहानी है, कभी हंसी तो कभी आंखों में पानी है, यही तो संगीत की असली निशानी है। कल आज और कल इस फिल्म का गीत आइए सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में, शंकर जयकिशन की संगीत रचना और बोल लिखे हैं हसरत जयपुरी ने।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज़ों में गुलामी फिल्म का गीत। संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और बोल लिखे हैं गुलजार ने।

0: पुराने फिल्मी गीतों से सजा कार्यक्रम सदाबहार नगमे यहीं पर समाप्त होता है। आप बने रहिए एफएम शिमला के साथ, सुनते रहिए। कुछ ही देर में आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र हिंदी और अंग्रेजी समाचार के लिए। कीजिए बस कुछ ही पलों का इंतजार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डी के शिवकुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया है। विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धारमैया और डॉक्टर जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। डी के शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि सोमवार से शुरू हो रहे अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: किसानों की खेती और मिट्टी को सुरक्षित रखने के लिए खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा और यह 30 जून तक पूरे देश में चलाया जाएगा। इस अभियान में कृषि विज्ञान केंद्र सभी भाग लेने वाली संस्थाओं के मुख्य समन्वय की भूमिका निभाएंगे। इस अभियान के लिए 1600 से अधिक टीमें बनाई गई हैं। इसके अलावा जिन 100 जिलों में रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग होता है वहां विशेष रूप से 500 टीमें गठित की गई हैं। इस अभियान के दौरान खेतों को बचाने और किसानों को समय पर सही सलाह देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के लगातार हो रहे उपयोग को कम करना है। किसानों को मिट्टी की जांच के आधार पर उर्वरकों और अन्य कृषि संसाधनों के संतुलित उपयोग के बारे में जागरूक किया जाएगा। साथ ही उन्हें जैविक खाद और जैव उत्पादों के अधिक उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉइस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवाददात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि समाधान दीदी वर्तमान में सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में काम करने में सक्षम है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि एआई और तकनीक के उपयोग के कारण लोक शिकायतों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा।

इसका प्रसारण AIR न्यूज़, DD न्यूज़, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित करेगा। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में पहले हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड के सम्मान में एक स्मारक टिकट और प्रथम दिन का कवर जारी किया। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम ITI क्लस्टर के लिए एक निजी कंपनी ऑर्सिलर मित्तल निपॉन स्टील इंडिया की रणनीतिक निवेश योजना SIP को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली SIP है। ब्रिस्टल में दूसरे महिला T20 क्रिकेट मैच में मेजबान इंग्लैंड ने भारत को 26 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में भारतीय टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 142 रन ही बना सकी। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में ओलावृष्टि के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।